सुप्रभात। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 जनवरी साल 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हो चुके हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को है। अब आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक

0: और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आज का चिंतन।
2: दृढ़ता क्या है और व्यक्तित्व के लिए इसका क्या महत्व है, इसे समझने के लिए हमें पहले 2-3 बातों को समझना होगा। दृढ़ होने का कतई ये अभिप्राय नहीं है कि आप दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव रखें या उन्हें डराने धमकाने का कार्य करें। दृढ़ होने का अभिप्राय है दूसरों के अधिकारों का हनन किए बगैर अपने अधिकारों के लिए डटे रहना। इसका तात्पर्य ये है कि आप स्पष्ट रूप से ये संदेश देते हैं कि आप अपने और दूसरे दोनों की भावनाओं और अधिकारों के प्रति सम्मान रखते हैं। ये व्यक्ति के आत्मसम्मान और आत्म छवि का अभिन्न अंग है। दृढ़ता को एक तरह से व्यक्ति के मतों और आवश्यकताओं की ईमानदार अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। हम में से अधिकांश की सोच और काम करने का तरीका उन प्रभावों पर निर्भर करता है जो जीवन के शुरुआती वर्षों में हमारे मन पर पड़ते हैं। इन प्रभावों का एक बड़ा हिस्सा हमारे परिवार और आसपास के माहौल का होता है। अगर किसी को बचपन से ही बोलने पर निरुत्साहित किया गया हो तो बोलने या कुछ भी पूछने से घबराना उसके व्यक्तित्व का स्थायी गुण बन जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि अक्सर ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों या हितों की अनदेखी होती है और वो चाहने पर भी कुछ नहीं कह पाते। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं तो दृढ़ता से अपनी बात कहने की आदत विकसित करें। किसी काम के लिए नहीं कहने में घबराएं नहीं और जरूरत पड़ने पर सहायता मांगने में संकोच न करें। अपने दिमाग से नकारात्मकता को हटाने का प्रयास करें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो काम की शुरुआत ही हिचकिचाहट के साथ करते हैं। जब भी वे किसी बात पर अपना मत व्यक्त करते हैं तो उनकी आवाज बहुत हल्की हो जाती है और शारीरिक हाव-भाव में भी एक तरह की अनिश्चितता आ जाती है। इससे निपटने के लिए आवश्यक है कि किसी भी कार्य का आरंभ दृढ़ निश्चय के साथ करें। अगर दूसरा किसी कार्य के लिए कहता है और आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो साफ तौर से ना कहने में हिचकिचाएं नहीं। साथ ही ऐसा करके मन में अपराध बोध महसूस न करें बल्कि दूसरे को स्पष्ट रूप से इसका कारण भी बता दें। दृढ़ता का अर्थ यह है कि अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप अपनी बात पर कायम रहें, फिर भले ही आप पर किसी भी प्रकार का सांसारिक दबाव हो। दृढ़ता और आत्मसम्मान का आपस में गहरा संबंध है। आत्मसम्मान की कमी दृढ़ता की अनुपस्थिति के लिए जिम्मेदार होती है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए अपने रुख पर कायम नहीं रह पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं इससे दूसरा नाराज ना हो जाए। इस तरह के दृष्टिकोण के कई नुकसान हो सकते हैं। इससे दूसरे आपकी असाधारण क्षमताओं या योग्यताओं को भी बहुत गंभीरता से नहीं लेते। ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। दृढ़ता संभवतः मानवीय व्यक्तित्व की परिचायक है। यद्यपि दृढ़ता से किसी अवसर पर आपको या दूसरों को सक्षमता का अभाव हो सकता है, किंतु दीर्घावधि में ये सदैव लाभदायक होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। वाचन स्वर थे अनिल कुमार भारती के। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओ, आइए अब आपको सुनवाते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसकी शुरुआत करते हैं मातृ वंदना से।

माथे पर चंदन, हाथों में मोदक की मिठास, गणपति बप्पा के चरणों में बसता है हर विश्वास। उनकी कृपा से हर सपना साकार हो जाए, हर घर आंगन सुख शांति और समृद्धि से भर जाए।

ईश्वर को पाने के लिए ऊंची आवाज नहीं, सच्चे मन की पुकार चाहिए, क्योंकि वे शब्दों से नहीं, भावनाओं से परिचित होते हैं।

ईश्वर से कभी ये मत कहिए कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, बल्कि मुश्किलों से कहिए कि मेरा ईश्वर सबसे बड़ा है।

जब मन शांत हो, विचार पवित्र हों और कर्म सच्चे हों, तब समझिए ईश्वर आपके सबसे करीब है।

इसी भक्ति गीत के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 हो चुके हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम के नाम की महिमा अपरंपार है। नाम के प्रसाद से ही शंभु अविनाशी हैं और अमंगल वेशधारी होकर भी मंगलकारी हैं। नारद मुनि ने नाम की महिमा को जाना और हरे तथा हर दोनों के प्रिय हो गए। विमाता के दुर्व्यवहार से दुखी होकर ध्रुव ने प्रभु का नाम जपा और ध्रुव लोक प्राप्त किया। राम के नाम स्मरण से ही हनुमान ने आराध्य को अपने वश में करके उनकी कृपा प्राप्त की। कलयुग में प्रभु के नाम को कल्पतरु अर्थात मनचाहा फलदायी बताया गया है। इसी नाम का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसी की पवित्रता प्राप्त की। नाम की महिमा गाकर जीव चारों युगों

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, गायन स्वर थे भूपेंद्र सिंह के। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:50 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कार्यक्रम स्पॉटलाइट आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। यह कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 10 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम खेल दर्पण। शैल संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर आपको सुनवाएंगे सौरव मैठानी के गाए गढ़वाली लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आप सुन सकेंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 9 आप सुनेंगे आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति जिले की चिट्ठी। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:35 पर आप सुनिएगा विविध कलाकारों के स्वर में गुजराती लोकगीत।

कार्यक्रम महिला जगत में आज आप सुनेंगे सोशल मीडिया महिलाओं के लिए सशक्त डिजिटल क्रांति विषय पर श्रीमती निर्मला नेगी की वार्ता। समय रहेगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हेमंत कुमार पाठक के गाए गीत।

0: दोपहर 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे राष्ट्रीय पंत का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत करेंगे राग मुल्तानी। युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा 5:10 पर। पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत में आज आप सुनेंगे आजकालीन शिक्षा व्यवस्था और सुधार का प्रयास विषय पर डॉक्टर राकेश गेरोला, डॉक्टर कृपाल भंडारी और सुश्री निकिता भंडारी की परिचर्चा। समय 5:45 पर। शाम 7:00 किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत आप सुनेंगे, जिसमें आज आप सुनेंगे घराट श्रृंखला और जीर्णोद्धार कार्यक्रम पर श्री विश्वेश्वर प्रसाद से विकास चमोली की बातचीत। एक बार फिर आपको बता दें कि 7:00 किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज आप सुनेंगे घराट श्रृंखला और जीर्णोद्धार कार्यक्रम पर श्री विजयेश्वर प्रसाद से विकास चमोली की बातचीत। 7:50 पर आरएनयू देहरादून का विशेष कार्यक्रम सप्ताह सार आप सुनेंगे। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे संस्कृत वार्ता, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे संसदः जनानाः आकांक्षाणाः मंच विषय पर डॉक्टर राम विनय सिंह की वार्ता। रात्रि 8:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सोनाली राठौर के स्वर में छंद गजलें। रात्रि 9:30 पर भारत के निर्माण में संसदीय प्रक्रियाओं और संवाद की भूमिका विषय पर आप सुनेंगे परिचर्चा, जिसमें प्रतिभागी होंगे श्री अनुप वाजपेयी, श्री मुन्ना सिंह चौहान और काजी निजामुद्दीन। तो श्रोताओं, ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने ह्यः 26,2000 द्वितीय रक्षा अलंकरण समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्य पुरस्काराः रक्षा सैन्य बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, केन्द्र शासित आरक्षकाणां, कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्र बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षि बलानां, अन्य सुरक्षा अभिकरणानां च कार्मिकाणां असाधारण शौर्य कार्यान् उद्दिश्य प्रदीयन्ते। राष्ट्रपतिना समारोहे 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदकानि, 30 परम विशिष्ट सेवा पदकानि, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदकानि, 55 अतिविशिष्ट सेवा पदकानि च वितरितानि। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीय मंत्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाः अधिकारिणः च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः मुर्मुः वर्या इतः पूर्वम् अस्मिन् मासे 8 राष्ट्रपति भवने रक्षा अलंकरण समारोहे प्रथम चरणस्य शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः अवदत् यत् तस्य सेशेल्स देशस्य यात्रा महत्वपूर्णैः परिणामैः पूरितम् आसीत्, येन भारत सेशेल्स देशयोः मैत्री प्रवर्धिता भविष्यति। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् विगत 15 वर्षेषु उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सुदृढविश्वासेन संयुक्तप्रगतिना च चिह्नितः अस्ति, यदा तु आगामि 50 वर्षाणि नवान्वेषणेन सुस्थिरतया संयुक्तसमृद्ध्या च निर्धारिताः भविष्यन्ति। सः सेशेल्स देशस्य स्वातन्त्र्यस्य 50 वर्षे राष्ट्रियदिवसस्य समारोहे भागग्रहणाय हर्षं प्रकटितवान्। श्रीमोदी सेशेल्स

0: देशस्य राष्ट्रपतये डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यस्मै सेशेल्स देशस्य सर्वकाराय जनानां च स्नेहाय धन्यवादम् अददात्। राष्ट्रीय निवेशावसंरचना कोषस्य नीफ इत्यस्य कृते सर्वकारस्य समग्र प्रतिबद्धता अधुना 60,000 कोटि रूप्यकाणि अभवत्। एतदुपक्रमं मूलसौकर्याणां कृते अन्येषु राष्ट्रीय महत्वपूर्णेषु क्षेत्रेषु च केन्द्रस्य निवेशप्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन गतसप्ताहे आधारभूत संरचना निवेशस्य गतिं वर्धयितुं देशे संस्थागत मूलधनम् उत्प्रेरयितुं च निधौ 30,000 कोटि रूप्यकाणां अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धतानुमोदिता। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अद्य आरभ्य पूर्वोत्तरस्य द्विदिवसीय यात्रायां भविष्यति। श्री चौहान असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरे उच्चस्तरीय समीक्षा सभायाः आयोजनं करिष्यति। सभायां असम राज्यस्य समीपस्थेषु क्षेत्रेषु सस्येषु ग्रामेषु महत्वपूर्ण जलसंरचनायां च जलप्लावस्य प्रभावस्य समीक्षा भविष्यति। वर्तमान सहायोद्धार कार्याणां प्रगतेः समीक्षापि भवितुं शक्नोति। असम राज्यस्य समीक्षायाः अनन्तरं श्री चौहानः श्वः अरुणाचल प्रदेशस्य जलप्लावित क्षेत्राणां निरीक्षणं विधास्यति। सः जलप्लावितानां ग्रामाणां कृषिक्षेत्राणां सहायोद्धार शिबिराणां च स्थित्याः मूल्यांकनं कर्तुं वायुमार्गेण भूमार्गेण च सर्वेक्षणं करिष्यति। जुलाई मासस्य तृतीय दिनांकादारभ्यमानस्य 57 दिवसात्मिकायाः वार्षिक अमरनाथ यात्रायाः प्राक् सुरक्षा संस्थाः पंजाबतः जम्मू कश्मीर पर्यन्तं तीर्थयात्रा मार्गे सज्जतां तीव्रीकृतवन्तः। मोक ड्रिल इति आचरन्ति, निरीक्षण प्रणालीं सक्रियं कुर्वन्ति। सहस्रशः तीर्थयात्रिणां सुरक्षित गमनागमनं सुनिश्चेतुं अन्ता संस्था समन्वयं सुदृढं कुर्वन्ति च। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

0: खान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक एक गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है, जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Minister of Petroleum and Natural Gas said that with effect from tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets or public sector oil marketing companies. According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. Union Information and Broadcasting Ministry has announced 2 major decisions aimed at boosting the Indian film industry. The decisions were taken at a high-level review meeting chaired by Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav in New Delhi yesterday. We have a report.
3: The meeting focused on measures to enhance film production, improve distribution networks and integrate emerging technologies into the Indian cinema ecosystem. The ministry said the initiatives are intended to make Indian cinema more globally competitive while encouraging investment in cinema infrastructure, particularly in smaller towns and rural areas. A high-level study group under the chairmanship of Prasar Bharati chairman Prasoon Joshi has been formed, which will study the opportunities and challenges before Indian cinema. It will suggest ways to strengthen the sector and recommend measures to make Indian films more competitive globally. The ministry has also prepared a model state cinema regulations for adoption by the states. The rules have been sent to all state governments with a request to adopt them. This move will help build a strong, modern and globally competitive Indian film industry. With Soumya and Aman, this is Chirag Jha from News Desk.
2: West Bengal government has decided to implement the Uniform Civil Code UCC in the state. Chief Minister Subhendu Adhikari announced in the assembly that a draft proposal of the bill will be presented at the scheduled state cabinet meeting on Thursday. Following the models of Gujarat, Uttarakhand and Assam, a committee has been formed under the leadership of retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Desai. Chief Minister stated that the committee will conduct a study on a total of 9 subjects, including marriage, divorce and adoption, and submit its report within 4 weeks, based on which the state government will formulate the court. However, he clarified the scheduled tribes, Adivasis, Kurmis and ancient indigenous communities will be kept outside the purview of this law. Delhi Cabinet has approved the Delhi Electric Vehicle EV policy, set for a phased 4-year rollout starting from the 1st of July. The ambitious framework commits a massive fiscal outlay of 15,000 crore rupees to completely transition the national capital towards zero emission transit by 31st March 2030. Addressing a press conference in New Delhi, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that the policy focuses entirely on electric vehicles, especially zero-emission vehicles, with the ultimate goal of gradually transforming Delhi into a pollution-free city for the benefit of its residents. India has strongly condemned Pakistan's airstrikes on Afghan territory that have resulted in several civilian casualties, including women and children. In a statement, External Affairs Ministry said, this blatant act of aggression by Pakistan is an assault on Afghanistan's sovereignty and a direct threat to regional peace and stability. The United States and Iran will hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve the dispute over the Strait of Hormuz. The meeting comes amid renewed tensions between the US and Iran over the waterway through which 20% of the world's crude oil flows. The dangerous period of violence that began on Thursday disrupted U.S. President Donald Trump's attempt to end hostilities with Iran and negotiate a settlement that addresses Tehran's nuclear program. Ahead of the 57-day-long annual Amarnath Yatra beginning on Friday, security agencies have intensified preparations across the pilgrimage route from Punjab to Jammu and Kashmir, conducting mock drills, activating surveillance systems and strengthening inter-agency coordination to ensure the safe movement of thousands of pilgrims. In football, Gabriel Martinelli scored the winning goal late in injury time to give 5-time champion Brazil a 2-1 win over Japan in a round of 32 clash of the FIFA World Cup at Houston Stadium in Texas, US last night. And that is the end of this news bulletin.
4: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:10 हो रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं लोक रसधार कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्म संगीत।

0: The UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और अंतिम गीत फिल्म नौकर से. आवाज़ है आशा भोंसले और किशोर कुमार की.

0: इसी गीत के साथ लोक रसधार का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर या आकाशवाणी का देहरादून केंद्र स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को एमआरआई, डिजिटल मेमोग्राफी और एआई आधारित पोर्टेबल एक्सरे मशीन कराई जाएंगी उपलब्ध। मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन तैयारियों के आकलन के लिए 2 जुलाई को प्रदेश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। इसकी तैयारियों के तहत आज देहरादून में टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित होगी। अल्मोड़ा जिले के लमगाड़ा थाना क्षेत्र में एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मृत्यु। और हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने विभिन्न अखाड़ों के संतों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत प्रधानमंत्री निधि के माध्यम से प्रदेश को 4 एमआरआई मशीनें, 5 डिजिटल मेमोग्राफी मशीनें और 75 कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्सरे मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। इन आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के उपलब्ध होने से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जांच सुविधाओं का विस्तार होगा तथा रोगों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निदान में सहायता मिलेगी। विशेष रूप से पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में एआई आधारित पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्सरे मशीनों के माध्यम से मरीजों को उनके निकट ही बेहतर जाँच और उपचार की सुविधा मिल सकेगी। मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और आपदा प्रतिक्रिया तंत्र की क्षमता का परीक्षण करने के लिए 2 जुलाई को प्रदेश के सभी जिलों में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। मॉक ड्रिल की तैयारियों के तहत आज राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून में सुबह 10 बजे से टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित होगी। इसमें विभिन्न विभाग और जिलों में संभावित आपदा परिदृश्यों के आधार पर अपनी कार्य योजना और समन्वित प्रतिक्रिया का अभ्यास करेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधान

0: मंत्री कृषि सिंचाई योजना के जल ग्रहण विकास घटक के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे पत्र में योजना की प्रगति और सहायता राशि की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए उत्तराखंड में 15 जल ग्रहण विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 84,000 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया जाएगा। परियोजनाओं की कुल लागत 232 करोड़ 26 लाख रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 209 करोड़ 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। अब तक राज्य को 106 करोड़ 5 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता मिल चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए उत्तराखंड को 31 करोड़ 58 लाख रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है। इसमें 15 करोड़ 79 लाख रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है, जिसमें परियोजनाओं का कार्य निर्बाध रूप से जारी रह सकेगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से विनोद पोखरियाल।
0: अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा थाना क्षेत्र में कल एक कार के गहरी खाई में गिरने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लमगड़ा पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने बताया कि वाहन में सवार सभी लोग विशौद बैगनिया गांव से अपने गांव बलिया लौट रहे थे। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने प्रतिभाग किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। सम्मेलन में देशभर के ग्रामीण विकास मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास योजनाओं, नवाचारों और चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर भरत सिंह चौधरी ने कहा कि सम्मेलन में प्राप्त अनुभवों और विभिन्न राज्यों की श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों का उपयोग उत्तराखंड में भी किया जाएगा, ताकि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने विभिन्न अखाड़ों के संतों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान कुंभ से जुड़े निर्माण कार्यों की प्रगति और संत समाज के सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में शहरी विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अगले वर्ष आयोजित होने वाले कुंभ को दिव्य, भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संत समाज के सहयोग, सुझाव और मार्गदर्शन के अनुरूप ही सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा तथा अखाड़ों के लिए आवश्यक सुविधाएं समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराई जाएंगी। शहरी विकास मंत्री ने बताया कि मेला क्षेत्र में सड़क, पेयजल, स्वच्छता, सीवर, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग और शिविर क्षेत्रों के विकास सहित आधारभूत सुविधाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है, ताकि कुंभ शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। बैठक में विभिन्न अखाड़ों के संतों ने कुंभ मेले की व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और पारंपरिक व्यवस्थाओं को लेकर अपने सुझाव दिए। प्रदेश भर में सहकारिता सप्ताह 2026 की शुरुआत हो गई है। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 6 जुलाई तक राज्य भर में सहकारिता से जुड़े विभिन्न जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पौड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कल सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सहकारिता को गांव गांव तक पहुंचाकर किसानों, महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सहकारिता आंदोलन से जोड़कर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। साथ ही सहकारी समितियों को डिजिटल और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है तथा किसानों को ब्याज मुक्त ऋण, विपणन सुविधाएं और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। डॉ. रावत ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत प्रदेश के सभी सहकारी समितियों के माध्यम से व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव एवं पौड़ी जिले के प्रभारी सचिव दिलीप जावलकर ने पौड़ी में जल

0: स्रोत एवं नदी पुनर्जीवन प्राधिकरण की बैठक में पूर्वी और पश्चिमी नयार नदी के पुनर्जीवन के लिए तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर प्रशासन को भेजने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने कहा कि नयार घाटी जिले में पेयजल, सिंचाई और ग्रामीण आजीविका का प्रमुख आधार रही है, इसलिए नदी और उससे जुड़े जल स्रोतों का संरक्षण पर्यावरणीय आवश्यकता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नदी पुनर्जीवन योजना के माध्यम से सूखते जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर क्षेत्र की दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत जलागम आधारित उपचार, कंटोट्रेज, तालाब और चेकडैम निर्माण, माइक्रो प्लानिंग, जियो टैगिंग तथा डिजिटल मॉनिटरिंग जैसे वैज्ञानिक उपाय अपनाए जाएंगे। इन प्रयासों से वर्षा जल संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार, मृदा अपरदन पर नियंत्रण और नदी तंत्र के पारिस्थितिक संतुलन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है, इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता दी है। दैनिक जागरण लिखता है कल से वजूद में आएगा उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। अमर उजाला लिखता है मदरसा बोर्ड कल होगा खत्म, मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ेंगे हजारों बच्चे। हरिद्वार दुर्घटना पर अमर उजाला लिखता है हरिद्वार में बस पिकअप में भिड़ंत, अल्मोड़ा में कार पलटी, सात की मौत। दसवीं के मौजूदा सत्र पर नीति पर हिंदुस्तान लिखता है कि दसवीं में मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू होगी। राज्य लोक सेवा आयोग के हवाले से हिंदुस्तान समाचार लिखता है पीसीएस के 63 पदों पर जल्द होगी भर्ती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के देहरादून के आयोजित कार्यक्रम की खबर पर अमर उजाला ने लिखा है विकसित भारत तभी सार्थक जब हर नागरिक हो स्वस्थ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को एमआरआई, डिजिटल मेमोग्राफी और एआई आधारित पोर्टेबल एक्सरे मशीनें कराई जाएंगी उपलब्ध। मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन तैयारियों के आकलन के लिए 2 जुलाई को प्रदेश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों के तहत आज देहरादून में टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित होगी। अल्मोड़ा जिले के लमगढ़ा थाना क्षेत्र में एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मृत्यु। और हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने विभिन्न अखाड़ों के संतों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर व्यवस्था की समीक्षा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं शैल संगीत के कार्यक्रम में सौरव मैठानी के गाए गढ़वाली लोकगीत। आपके साथ संगत कर रहे हैं ढोलक पर सुभाष चंद्र, तबला पर विकास मैठानी, हुड़का पर गणेश लाल, बांसुरी पर दिनेश और हारमोनियम पर आशीष भट्ट।

0: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई।
1: नई नई लाइटें।
2: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।
1: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
2: बल्ब्स, प्लग, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
1: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
2: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
1: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
3: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
4: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
3: सच में? क्या क्या है उसमें?
4: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
5: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
6: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
7: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं शैल संगीत के कार्यक्रम में सौरव मैठानी के गाए गढ़वाली लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे शैल संगीत के कार्यक्रम में सौरव मैठानी के गाए गढ़वाली लोकगीत। आपके साथ ढोलक पर संगत कर रहे थे सुभाष चंद्र, तबला पर विकास मैठानी, हुड़का पर गणेश लाल, बांसुरी पर दिनेश और हारमोनियम पर आशीष भट्ट। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। अब आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक के मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
4: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के 1 दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पहली जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
5: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
6: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन, व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
7: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
8: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
2: According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in the international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. The ministry said that to address this situation, the temporary regulatory measures introduced on 12th of this month prescribed a temporary limit of 200 liters of high-speed diesel per consumer or vehicle per day at retail outlets and required industrial, institutional and commercial consumers. The measures were aimed at preventing black marketing, hoarding and diversion of fuel while ensuring uninterrupted availability of petrol and diesel to retail consumers. Following a review of the supply situation of petroleum products in the country, the government has concluded that the temporary regulatory measures are no longer required in the public interest. The temporary measures help ensure adequate availability of petrol and diesels across the country while safeguarding the interest of retail consumers. Their withdrawals reflects the improvement in the supply situation and the restoration of normal supply arrangements. Aditya Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
9: West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari has said that the Uniform Civil Code UCC will be implemented in the state. We have more from a correspondent.
3: Chief Minister Shubhendu Adhikari announced in the Assembly that a draft proposal of the bill will be presented at the scheduled State Cabinet meeting on Thursday. Following the models of the Gujarat, Uttarakhand and Assam, a committee has been formed under the leadership of retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Desai. Chief Minister stated that the committee will conduct a study on the total of 9 subjects including marriage, divorce, adoption and submit its report within 4 weeks based on which the state government will formulate the code. However, he clarified that scheduled tribes, Adivasis, Kurmis and ancient indigenous communities will be kept outside the purview of this law. Shundipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
9: Union Information and Broadcasting Ministry has announced 2 major decisions aimed at boosting the Indian film industry. The decisions were taken at a high-level review meeting chaired by Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav in New Delhi yesterday. We have a report.
10: The meeting focused on measures to enhance film production, improve distribution networks and integrate emerging technologies into the Indian cinema ecosystem. The ministry said the initiatives are intended to make Indian cinema more globally competitive while encouraging investment in cinema infrastructure, particularly in smaller towns and rural areas. A high-level study group under the chairmanship of Prasar Bharati chairman Prasoon Joshi has been formed, which will study the opportunities and challenges before Indian cinema. It will suggest ways to strengthen the sector and recommend majors to make Indian films more competitive globally. The ministry has also prepared a model state cinema regulations for adoption by the states. The rules have been sent to all state governments with a request to adopt them. This move will help build a strong, modern and globally competitive Indian film industry. With Soumya and Aman, this is Chirag Jha from News Desk.
9: Delhi government has approved an ambitious electric vehicle EV policy. As per the new policy, EV cars priced up to 30 lakh rupees have been exempted from registration fees and road taxes. The new policy also offers a 1 lakh rupee incentive for purchasing new EVs while scrapping old vehicles, and mandates that only electric two-wheelers can be registered starting April 2028. Addressing a press conference in New Delhi, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that the government has devised a comprehensive plan to execute this in phases over the next 4 years.
11: This is truly a historic day. Delhi EV policy, which we aim to implement starting July 1, 2026. Following the LG approval, the policy will remain in effect until March 31, 2030. It focuses entirely on electric vehicles, especially zero emission vehicles, with the ultimate goal of gradually transforming Delhi into a pollution-free city. For the benefit of its residents, we have devised a comprehensive plan to execute this in phases over the next 4 years.
9: The house-to-house distribution of electoral enumeration forms to voters in the National Capital Territory of Delhi will begin today. Chief Electoral Officer of Delhi Ashok Kumar announced this while briefing the media in New Delhi yesterday. He said booth-level officers, BLOs, will visit every household from today till the 29th of July to distribute the enumeration forms and collect the duly filled applications from eligible electors. Mr. Kumar said that claims and objections can be filed between 5th of August to 4th of September. Final electoral roll will be published on the 7th of October. He informed that electors can also fill enumeration form online at www.voters.eci.gov.in. India has strongly condemned Pakistan's airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians, including women and children, and injured 163 others. In a statement, External Affairs Ministry said that this blatant act of aggression by Pakistan is an assault on Afghanistan's sovereignty and a direct threat to regional peace and stability. It reflects Pakistan's persistent pattern of reckless behavior and its futile attempt to externalize internal failures through desperate acts of violence beyond its borders. India conveyed its condolences to Afghan families that have lost loved ones and prayed for early recovery of those injured. India also reiterated its unwavering support for Afghanistan's sovereignty and territorial integrity. The Indian Army has dismissed media reports claiming that the Chinese People's Liberation Army, PLA, recently encroached into Arunachal Pradesh and set up camps. The Army said that such reports are incorrect and without any basis. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download news on AIR app. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Andhra Pradesh from today. During the visit, she will attend the first convocation ceremonies of the Central Tribal University of Andhra Pradesh and the Central University of Andhra Pradesh. We have a report.
12: The President will grace the maiden convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam today. Degrees will be awarded to 373 students who completed their undergraduate and postgraduate programs between the 2020 and 2025 academic years. She will also present gold medals to 13 meritorious students, including 10 women, for their outstanding academic performance. Established in 2019 with its headquarters at Vijayanagaram, the Central Tribal University of Andhra Pradesh commenced academic activities in 2020. The convocation marks a significant milestone in the university's academic journey. Union Education Minister Dharmendra Pradhan, Andhra Pradesh Governor S. Abdul Nazir and several other dignitaries are expected to attend the ceremony. Allu Murli, Akashwani News, Visakhapatnam.
9: Union Health Minister has directed all central government departments and institutions to comply with the Supreme Court's guidelines on stray dog attacks by today. The directive comes as authorities work to strengthen measures aimed at addressing stray dog attacks, public safety and compliance with judicial directions. all concerned departments have been asked to ensure that the Supreme Court's guidelines are implemented within the stipulated deadline. The order comes after a Supreme Court ruling last year that aims to make public spaces safer, especially for children and patients who use them every day. Every year on the 30th of June, Jharkhand observes Santhal Revolution Day, Hul Divas, to commemorate the sacrifice of tribal revolutionaries. We have a report.
7: In the Bhognadi village of Sahibganj district of Jharkhand, like every year, thousands of people will gather today to pay tribute to the immortal martyrs of the Santhal Hul, Sidhu Kanhu, Chand Bhairav, Phulo and Jhano. It was on 30th June 1855 that Sidhu and Kanhu launched the Santhal Hul from Bhognadi against British rule and the exploitative money-lending system, a movement that many scholars of tribal history regard as India's first organized war of independence. Historians say that after an assembly of nearly 20,000 people, an armed struggle began against the British, with Santhals and several other local communities joining the uprising. Armed with bows, arrows and traditional weapons, the revolutionaries mounted a strong challenge to the East India Company's forces, and the movement continued for nearly a year. During the struggle, Chand and Bhairav attained martyrdom, while Sidhu and Kanhu were later captured and executed by the British. Hul Divas is regarded in Jharkhand as a symbol of self-respect, resistance and tribal identity, and a variety of programs are organized across the state, especially at Bhognadi, to mark the occasion. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
9: President Draupadi Murmu has paid a tribute to the immortal heroic men and women of the Sidhu Kanhu, Chand Bhairav and Phulo Jhano and Santhal rebellions for the sacrifices and martyrdom. The president said that they waged a historic struggle against the exploitation of tribal society and to protect the identity. Union Home Minister Amit Shah has paid tributes to the martyrs of the Santhal Revolution on the occasion of Hul Divas. He also remembered all those who sacrificed everything for tribal identity and the motherland. The United States and Iran will hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve the dispute over the Strait of Hormuz. The meeting comes amid renewed tensions between the US and Iran over the waterway through which 20% of the world's crude oil flows. The dangerous period of violence that began on Thursday disrupted US President Donald Trump's attempt to end hostilities with Iran and negotiate a settlement that addresses Tehran's nuclear program. Traffic in the Strait of Hormuz fell during the tit-for-tat strikes, slowing the recovery of the waterway. Iran and U.S. exchanged missile strikes over the weekend, collapsing trade in the Strait of Hormuz for multiple days. Later, U.S. and Iranian officials agreed to temporary ceasefire yesterday after President Trump threatened to escalate the conflict. In football, Gabriel Martinelli scored the winning goal late in injury time to give five-time champion Brazil a 2-1 win over Japan in a round of 32 clash of the FIFA World Cup at Houston Stadium in Texas, US last night. In another round of 32 fixture, Germany got eliminated from the tournament after a 1-1 draw against Paraguay that led to a penalty shootout in Foxborough. Gustavo Alfaro's men held their nerve in the penalty shootout to secure a historic 4-3 victory. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for very heavy rainfall over parts of Northeast India, Sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Konkan, Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Mahe today. Heavy rainfall is also expected over Odisha, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Vidarbha, Chhattisgarh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for tomorrow. And now, for a look at today's newspapers, it's over to V.C. Pramod.
13: Thank you, Abhishek. A month-long special intensive revision SIR of the electoral roll beginning today is covered by some of the dailies. SIR process begins in Delhi and four states today, reports the Asian Age. Voter verification drive begins in Delhi today, leads the Times of India. The statesman quoting Prime Minister Narendra Modi says, Indian diaspora living bridge between India, Seychelles. Bengal passes preventive detention legal curbs bill, notes the Hindu. Prime Minister to skip Khamenei's state funeral leads the Asian Age. And finally, Delhi mandates all two new wheelers to be electric from 2028 to fight pollution, reports the Indian Express. And with that, it's back to you, Abhishek.
9: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Centre to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Minister announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicles policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve the dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। कार्यक्रम नमस्कार देहरादून लेकर हाजिर हूं मैं आज आपकी दोस्त और होस्ट माधुरी दानुपुंडी। श्रोताओं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जनता की आवाज, और इस आवाज को देश की नीतियों और कानूनों तक पहुंचाने का काम करती है संसद। श्रोताओं, हर वर्ष 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटारिज्म मनाया जाता है। तो क्योंकि इसी दिन साल 1889 में अंतर संसदीय संघ की स्थापना हुई थी। ये दुनिया के विभिन्न देशों की संसदों का एक वैश्विक संगठन है जो लोकतंत्र, शांति और सहयोग को बढ़ावा देता है। श्रोताओं, संसद केवल कानून बनाने का स्थान नहीं बल्कि एक वो मंच है जहां जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है, सरकार से सवाल पूछे जाते हैं और देश के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हमें ये याद दिलाता है कि एक मजबूत संसद, जागरूक नागरिक और सक्रिय जन भागीदारी ही किसी भी लोकतंत्र को सफल बनाती है।

श्रोताओं, इस खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं, अब वक्त हुआ है क्षेत्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों का। स्वास्थ्य विभाग में बड़ी सर्जरी, 310 डॉक्टरों का तबादला, अकेले दून से 80 ट्रांसफर। शिक्षा विभाग के मानक पूरे करने वाले मदरसों को मिलेगी मान्यता। कल से वजूद में आएगा उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई सतर्कता। रोजगार मेले में 282 में से 39 का हुआ चयन। राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स की मेजबानी करेगा उत्तराखंड। स्पोर्ट्स कॉलेज में होगा आयोजन। CUET परिणाम के एक सप्ताह बाद भी दाखिला नहीं, असमंजस में छात्र। HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय ने अब तक शुरू नहीं की प्रक्रिया। 21वीं नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप में सीनियर में एकलव्य और साइना, जूनियर में प्रणव और नयना ने जीता स्वर्ण। और अब खबर मौसम से। मानसून की दस्तक से पहले झमाझम बरसे मेघ। आज पौड़ी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का येलो अलर्ट। पर्वतीय जिलों में आकाशीय बिजली, तेज वर्षा और अंधड़ की चेतावनी। तो ये तो थे क्षेत्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों पर एक नज़र। आइए अब डालते हैं 30 जून का दिन इतिहास के पन्नों में क्यों है खास। तो श्रोता, आपको बता दें कि 1855 में झारखंड के भोगनाडीह में संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जिसे हूल क्रांति भी कहा जाता है। 1917 की बात करें तो आज ही के दिन भारत के महान नेता और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी का निधन हुआ था। 1947 की बात करें तो आज ही के दिन भारत के विभाजन की घोषणा के बाद बंगाल और पंजाब के लिए बाउंड्री कमीशन के सदस्यों का ऐलान किया गया था। और साल 1905 की बात करें तो आज ही के दिन यानी कि 30 जून को अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहला शोध पत्र प्रकाशित कर सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी दुनिया के सामने रखा था। 1960 की बात करें तो आज ही के दिन कांगो को बेल्जियम से आज़ादी मिली थी, जिसके बाद से ये दिन कांगो में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1997 की बात करें तो ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को सौंप दिया था, जो 156 साल का ब्रिटिश शासन के अधीन था। साल 2002 की बात करें तो ब्राजील ने जर्मनी को 2-0 से हराकर फुटबॉल के विश्व कप पर कब्जा किया था। और साल 2005 की बात करें तो ब्राजील ने कन्फेडरेशन फुटबॉल कप जीता था। और साल 2008 की बात करें तो आज ही के दिन यानी कि 30 जून को रविकांत, उमा शंकर चौधरी व विमल चंद्र पांडे को संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इसी साल भारतीय पत्रकार अनीसुद्दीन अजीज को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बुक कीपर्स के न्यू बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो श्रोताओं, ये तो थे 30 जून का दिन इतिहास के पन्नों में क्यों खास। बढ़ते हैं एक और म्यूजिकल ट्रैक की ओर।

0: इस खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं, आज भारतीय राजनीति के पिता माह और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि है। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को मुंबई में हुआ था। वे एक महान शिक्षाविद, समाज सुधारक और स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों का गहराई से अध्ययन किया और अपनी प्रसिद्ध ड्रेन थ्योरी के माध्यम से बताया कि किस तरह भारत की संपत्ति लगातार ब्रिटेन भेजी जा रही है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक नेताओं में से भी एक थे और 3 बार उसके अध्यक्ष भी बने। साल 1892 में वे ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। 30 जून साल 1917 को उनका निधन हो गया। उनकी दूरदर्शिता, सादगी और राष्ट्रभक्ति आज भी हमें देश हित में ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करने की प्रेरणा देती है। दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि पर पूरा आकाशवाणी परिवार उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। श्रोताओ, कार्यक्रम में वक्त हुआ है कार्यक्रम के अगले गीत का, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: श्रोताओं, इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी के आसपास अंतरिक्ष में क्या क्या मौजूद है? ग्रहों और तारों के अलावा वहां लाखों चट्टानी पिंड भी हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। इन्हीं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनमें से कुछ समय समय पर पृथ्वी के काफी करीब से भी गुजरते हैं। हाल ही के वर्षों में साल 2024 में YR4 नाम का एक क्षुद्र ग्रह वैज्ञानिकों की चर्चा में रहा। शुरू में इसकी गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि इसके निकट आने से भविष्य में पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। इससे पता चलता है कि आज विज्ञान और आधुनिक तकनीक अंतरिक्ष पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। 30 जून की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि साल 1908 में तुंगुस्क

ज्यादा घटना हुई थी, जिसमें एक विशाल अंतरिक्ष पिंड के विस्फोट से साइबेरिया के जंगलों में लाखों पेड़ गिर गए थे। इस घटना ने दुनिया को अंतरिक्ष से आने वाली संभावित खतरों के प्रति सचेत किया था। आज नासा और दुनिया की अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां ऐसे ही क्षुद्र ग्रहों की लगातार निगरानी कर रही है, ताकि किसी भी संभावित खतरे का समय रहते ही पता लगाया जा सके। कार्यक्रम में वक्त हुआ है कार्यक्रम के अगले और अंतिम गीत का।

तो श्रोताओं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। और लिखने से पहले अपनी प्रतिक्रिया में आपका पत्र मिला लिखना ना भूलिएगा। आपकी प्रतिक्रिया और मैसेजेस हमारे कार्यक्रम आपका पत्र मिला में शामिल किया जाएगा। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है namaskardehradun@gmail.com। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आपको हमने अपना व्हाट्सएप नंबर बता चुका है, और एक बार ज़रूर लिखिएगा। आपका पत्र मिला लिखना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ अपने दोस्त और होस्ट माधुरी दानू पुंडीर को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार देहरादून।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर या आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बज चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं आरण्यो देहरादून की प्रस्तुति जिले की चिट्ठी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार देहरादून के साप्ताहिक कार्यक्रम जिले की चिट्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम आपको विकास, जनकल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, संस्कृति और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों से जुड़ी प्रमुख जानकारियों से अवगत कराएंगे। आज के अंक में हम बात करेंगे अल्मोड़ा जिले की चिट्ठी की। आलेख है कंचना पांडे का। अल्मोड़ा जनपद ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के क्षेत्र में विशेष पहचान रखता है। यहाँ जागेश्वर धाम, चितई गोलू देवता, माँ कसार देवी, स्याही देवी और बानरी देवी, दूनागिरी देवी मंदिर धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में देश दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। अल्मोड़ा के टमटा मोहल्ला स्थित ताम्र नगरी में तांबे के बर्तनों का निर्माण होता है, जो ताम्र उद्योग के रूप में भी जाना जाता है। तांबे से बने घड़े, फिल्टर, लोटे, पूजा की थाल बरबस अल्मोड़ा आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जनपद में इन दिनों धान की रोपाई चल रही है। परंपरागत हुड़किया बोल गायन के साथ अल्मोड़ा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में धान की रोपाई की जा रही है। सप्ताह की शुरुआत 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से हुई। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग विषय पर आधारित थी। SSJ विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार और राज्य स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे के संयुक्त तत्वाधान में 21 मई से 21 जून तक आओ हम योग करें अभियान के तहत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 80 योग शिविर संचालित किए गए। योग शिविरों के माध्यम से जनपद में 4,000 लोग लाभान्वित हुए। जिला आयुर्वेदिक व यूनानी अधिकारी अल्मोड़ा डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने बताया कि अब जनपद की 11 ब्लॉकों में मरीजों को आयुर्वेद के साथ आधुनिक जांच और पंचकर्म जैसी विशेष चिकित्सा सुविधाएं भी मिलेंगी। डॉक्टर शाहिद ने बताया कि अब आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में केवल पारंपरिक इलाज ही नहीं होगा, बल्कि आधुनिक जांचें भी की जाएंगी। खून, पेशाब आदि की बुनियादी जांचें अब आयुर्वेदिक केंद्रों में ही हो सकेंगी। वहीं हृदय रोगों के लिए ECG की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आयुर्वेद की पारंपरिक नाड़ी उपचार के लिए आधुनिक नाड़ी तरंगिणी यंत्र से भी जांचें होंगी। पंचकर्म और अग्निकर्म शरीर शोधन के लिए पंचकर्म और दर्द रोगों में अग्निकर्म चिकित्सा की जाएगी। जिले के 11 ब्लॉकों में आयुर्वेदिक चिकित्सा को बेहतर बनाने के लिए 84 आयुर्वेदिक चिकित्सक तैनात हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 31 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी संचालित हो रहे हैं। इन मंदिरों के जरिए प्राथमिक स्तर पर ही मरीजों को आयुर्वेदिक परामर्श और उपचार मिलेगा। डॉक्टर शाहिद ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को छोटे मोटे इलाज के लिए शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आयुर्वेद के साथ आधुनिक जांचों के जुड़ने से उपचार पहले से ज्यादा प्रभावी और सटीक होगा। केंद्र सरकार के खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के मार्गदर्शन में 1 जून से 30 जून तक किसानों के साथ जन जागरूकता

0: संवाद कार्यक्रम गतिमान है। संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक व खेत बचाओ अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर ब्रिजमोहन पांडे द्वारा संस्थान के वैज्ञानिकों के संयुक्त दल के साथ चमोली जनपद के जोशीमठ ब्लॉक, नैनीताल जनपद के धारी और रामगढ़ ब्लॉक और बागेश्वर जनपद और अल्मोड़ा जनपद के 11 विकास खंडों में किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग, मृदा स्वास्थ्य, फसल चक्र, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, जीवामृत और बीजामृत के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती वर्ष 2026-27 के तहत ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी सीईई के बाद अब शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह से कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत के सोमनाथ मैदान में आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की केंद्रीय श्रेणी के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा भी रानीखेत स्थित सोमनाथ मैदान में आयोजित की जाएगी। तो ये थी इस सप्ताह अल्मोड़ा जिले में हुई कुछ प्रमुख गतिविधियां, उपलब्धियां और विकास से जुड़ी खबरें। उम्मीद है जिले की चिट्ठी का ये अंक आपको पसंद आया होगा और आपने अपने जिले में हो रहे सकारात्मक बदलावों की जानकारी प्राप्त की होगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी जिले की नई उपलब्धियों, योजनाओं और महत्वपूर्ण गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी मानव डोभाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी, FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:05 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म राम तेरी गंगा मैली से ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।
1: UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
2: The all-new Nissan Revive अब CNG में
3: ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस, 24 किलोमीटर पर केजी की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी। लाइफ को अपग्रेड कीजिए निसान ग्रेवाइड CNG के साथ 7 सीटर, जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित।
2: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू। आज ही अपने नजदीकी निसान डीलरशिप पे जाएं। शर्तें लागू।
4: संपर्क करें पाल निसान शोरूम हल्द्वानी, मोबाइल नंबर 8477008200।
0: श्रोताओं आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत। कभी किसी की याद मुस्कुराने की वजह बन जाती है, कभी किसी की याद मुस्कुराने की वजह बन जाती है, तो कभी वही याद आँखों को नब कर जाती है। इश्क का रंग भी कितना अजीब होता है, जो दिल में बस जाए वही हर पल महसूस होता है।
5: क्या कहा?

कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्ज़ों में बांधना आसान नहीं होता। दिल सब समझता है मगर हर बात जुबां तक नहीं आती। इश्क की राह में कभी खामोशी भी सबसे खूबसूरत आवाज़ बन जाती है

जब हवाओं में खुशबू खुलने लगे, जब चांदनी भी दिल की धड़कनों का साथ देने लगे, तब समझ लीजिए कि मौसम सिर्फ मौसम नहीं, किसी खास के इंतज़ार का पैगाम लेकर आया है।

0: the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
2: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES.

0: India's AI First University, 25% Uttarakhand Domicile Scholarship. Applications close 30th June. Apply now at ubes.ac.in.
1: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत। माथे की बिंदिया हो या होंठों की मुस्कान, सादगी जब प्यार से सजती है तो बेमिसाल हो जाती है। रिश्तों की मिठास और अपनापन जब सुरों में ढल जाए तो हर धड़कन एक मीठा नगमा गुनगुनाने लगती है।

जब पपीहे की पुकार में सावन की आहट घुल जाए, जब फूलों की खुशबू हर दिशा में बिखर जाए, तब दिल भी किसी अपने को याद करने लगता है। मौसम बस बदलता नहीं, मोहब्बत के कई रंग भी साथ लेकर आता है।

हर फूल की अपनी खुशबू होती है, हर सितारे की अपनी चमक होती है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। उनकी एक मुस्कान ही दिन को खास बना देती है और उनकी एक झलक हजारों खूबसूरत नज़ारों पर भारी पड़ जाती है।

कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, वो हर धड़कन में खामोशी से बसे रहते हैं। नजरें चाहे हर पल उन्हें तलाश ना करें, मगर रूह का हर एहसास उन्हीं से रोशन रहता है।

जब फिजाओं में मोहब्बत की खुशबू उतर आए, जब चांदनी भी दिल की धड़कनों का साथ निभाने लगे, तब हर दुआ में बस एक ही नाम शामिल होता है, इंतज़ार भी इबादत बन जाता है और हर आहट उम्मीद का पैगाम लगती है।

आंखें जब कुछ कहने लगती है तो लफ्ज़ अक्सर खामोश हो जाते हैं। मोहब्बत का सबसे हसीन अफसाना कागज़ पर नहीं, निगाहों में लिखा होता है।

0: इसी गीत के साथ सदाबहार फिल्में गीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 10 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को एमआरआई, डिजिटल मेमोग्राफी और एआई आधारित पोर्टेबल एक्सरे मशीनें कराई जाएंगी उपलब्ध। मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन तैयारियों के आकलन के लिए 2 जुलाई को प्रदेश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। इसकी तैयारियों के तहत आज प्रदेश भर में टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित होगी। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैडा ने विभिन्न अखाड़ों के संतों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जलग्रहण विकास घटक के 2 चरण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की है। प्रदेश भर में सहकारिता सप्ताह 2026 की शुरुआत हो गई है। 6 जुलाई तक राज्य भर में सहकारिता से जुड़े विभिन्न जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पौड़ी की पूर्वी और पश्चिमी नयाल नदी के पुनर्जीवन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। प्रदेश में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 92% पूरा कर लिया गया है। प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए 4 जुलाई से सेवा सप्ताह शुरू किया जाएगा। प्रदेश में मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। आज से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अस्तित्व में आ जाएगा। और अल्मोड़ा जिले के लंबड़ा थाना क्षेत्र में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मृत्यु। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:02 होने को हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगी। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म बागी 2 से जुबिन नौटियाल की आवाज में।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, फिल्म कोई जाने ना से। आवाज़ें हैं लखविंदर वडाली और नीति मोहन की।

0: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ ये कायनात कुछ भी नहीं
1: कुछ भी नहीं
0: कुछ भी नहीं गरन में वो नहीं
1: वो है कौन
2: कप्तान साहब उस लड़की का कोई नाम तो होगा
0: नाम

अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू के स्वर में ये खूबसूरत गीत फिल्म दिलवाले से। और फिल्म में संगीत दिया था अनु मलिक ने और शब्द रचना थी जावेद अख्तर की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत अनुराधा पौडवाल के स्वर में। फिल्म का नाम दिल है कि मानता नहीं। फिल्म में संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और शब्द रचना है समीर की।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण के युगल स्वर में। फिल्म का नाम दिल तो पागल है। फिल्म में संगीत दिया है उत्तम सिंह ने और शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप यशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त कर दिया गया है और अब उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण USMEA अस्तित्व में आ गया है। यह नया निकाय मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने और विनियमित करने का कार्य करेगा और प्रदेश के सभी 452 मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी है। यह मान्यता 3 शैक्षणिक वर्षों के लिए वैध होगी। इसके अलावा मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से विधिवत संबद्धता भी प्राप्त करनी होगी और प्राधिकरण मदरसों का भौतिक निरीक्षण करेगा। मदरसों को निर्धारित सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन करने के साथ ही आवश्यक दस्तावेज और शुल्क जमा करना होगा। गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बीते 14 मई को मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान संबंधी मान्यता नियमावली 2026 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की थी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत प्रधानमंत्री निधि के माध्यम से प्रदेश को 4 MRI मशीनें, 5 डिजिटल मेमोग्राफी मशीनें और 75 कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्सरे मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। इन आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के उपलब्ध होने से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जांच सुविधाओं का विस्तार होगा तथा रोगों की समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निदान में सहायता मिलेगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा लगातार दूसरे वर्ष भी टनकपुर होकर गुजरेगी, जिसे लेकर क्षेत्रवासियों में भारी उत्साह है। कुमाऊं मंडल विकास निगम KMVN ने TRC पर्यटन विश्राम गृह में यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी 4 जुलाई को यात्रियों का पहला दल टनकपुर पहुंचेगा, जिसे 5 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस बार यात्रा के दलों की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। आगामी जुलाई और अगस्त माह में टनकपुर नगर बम भोले के जयकारों से गुंजायमान रहने वाला है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार योजना की संशोधित लागत को स्वीकृति दी गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह से संचालित करने के लिए जल्द ही मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज की मेंटेनेंस के लिए भी प्रावधान रखे जाने के निर्देश दिए। बैठक में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा ऊर्जा पार्क परिसर में सुपर ECBC कार्यालय भवन निर्माण, सहजधारा रोड वाटर सप्लाई स्कीम को भी स्वीकृति दी गई है। समाज कल्याण मंत्री खजान दास राजस्थान के 4 दिवसीय भ्रमण पर हैं। इस दौरान समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का अध्ययन कर उनकी सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को उत्तराखंड में लागू करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में राजस्थान सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया। इसमें मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए संचालित योजनाएं और राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की विभिन्न योजनाओं और कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। सेवा योजन कार्यालय देहरादून ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लघु रोजगार मेला आयोजित किया। मेले में 39 अभ्यर्थियों का विभिन्न निजी कंपनियों में चयन किया गया, जबकि 23 अभ्यर्थियों को दूसरे चरण के साक्षात्कार के लिए चुना गया। इस अवसर पर 12 निजी कंपनियों ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया और अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, कौशल और अनुभव के आधार पर साक्षात्कार लिए। मेले में देहरादून समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों से 282 युवक युवतियों ने साक्षात्कार में हिस्सा लिया। देहरादून के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने समाधान दिवस पर विदेशों में रोजगार का झांसा देकर ठगी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर 15 युवाओं ने विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी की शिकायत दर्ज की। पीड़ितों ने बताया कि विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए और पासपोर्ट हड़प लिए गए और अब पैसे वापस मांगने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता कर जालसाज के खिलाफ गैंगस्टर जैसी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:35 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में विविध कलाकारों के स्वर में गाए राजस्थानी लोकगीत। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं हेमलता के स्वर में गाए ये राजस्थानी लोकगीत।

0: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई।
1: नई नई लाइटें,
2: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।
0: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
2: बल्ब, प्लग, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
0: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
2: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
0: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
3: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
4: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
5: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
4: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
6: यार BBA MBA तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
7: मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
6: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
7: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की BBA और MBA शिक्षा किफायती फीस पर।
6: और परिणाम?
7: UTU 2025 का MBA सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
6: वाह, ICM देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
8: आप सुन रहे हैं लोक संगीत के एक कार्यक्रम में विविध कलाकारों द्वारा गाए राजस्थानी लोकगीत। आइए सुनते हैं इसी कड़ी में अगला राजस्थानी लोकगीत धीर सेन की आवाज में।

अभी आपने सुना धीरा सेन की आवाज़ में ये राजस्थानी लोकगीत। आइए अब सुनवाते हैं आपको हेमलता और ओम व्यास के युगल स्वर में ये अगला राजस्थानी लोकगीत।

आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत, लोकगीत। पंडित शिवराम केसवर में ये अगला राजस्थानी लोकगीत आपको सुनवाते हैं।

0: पंडित शिवराम के इसी राजस्थानी लोकगीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। व्हाट्सएप फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना का प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हमारा नंबर है 7088000731, जिस पे आप भेज सकते हैं अपने नाम, अपने शहर के नाम और अपने पसंद के गीत के साथ हमें मैसेज। तो उठाइए फ़ोन और कीजिए मैसेज। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं, तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं कार्यक्रम को और लेते हैं पहला मैसेज जो हमें मिला है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा का। साथ ही लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता हमें मैसेज कर रहे हैं गाडके नगर यमतवाल महाराष्ट्र से। आदर्श नगर मालौट से, पंजाब से हमारे पास आया है मैसेज राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव साइना और निवान शर्मा का। साथ ही मैसेज करने वाले श्रोता हैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भाटिया, साजदा रानी और हिना कौसर मैसेज कर रहे हैं हमें। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। और साथ ही मैसेज आया है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित बेबी गर्वी और हिमांश का। एक मैसेज और हमें मिला है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरार और नजगिस खातून का, जो कि हमें उत्तर प्रदेश से मैसेज कर रहे हैं। और इन सब की पसंद का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन की। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना और रिदु खुराना। साथ ही मैसेज कर रहे हैं वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। कार्यक्रम में अगली फरमाइश आई है धाणी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। गांव वे डाकघर निम्नाबाद जिला जिंद हरियाणा से जजबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर हमें मैसेज कर रहे हैं। रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, वर्षा, सुमन, मेघा, राशि, कृति और भारती का मैसेज मिला है किशनगंज बिहार से। साथ ही मैसेज मिला है सुरेश वाडेकर की आवाज़ में ये गीत सुनना चाहते हैं प्रेम रोग फिल्म से। ये गीत हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। और ये फरमाइश हमारे पास आई है गांव पहरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद्र किरण प्रीति और छाया बंछोर की। और एक और मैसेज हमारे पास आया है जो हमें मिला है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिश्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी का। इन सबकी पसंद का गीत आपको सुनवाते हैं आंखें फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून FM 100.5 MHz पर, और स्टूडियो क्लॉक में समय हुआ है सुबह के 11:12 का। अगली फरमाइश आई है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान के। साथ ही मैसेज मिला है नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रशीद वारसी अन अब्बासी और यशफ अब्बासी का। महरा दरवाज़ा एटा से हम मैसेज कर रहे हैं, और सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन का हमें मैसेज मिला है। राज माता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार हमें मैसेज कर रहे हैं। साथ ही मैसेज भेजने वाले अगले श्रोता हैं नेहरू पार्क निज़ामाबाद तेलंगाना से अजीज़ भाई, मतीन भाई, शेख चांद फारूक, फूल वाले सईद खलील, मुबीन भाई, यासीन मौसा करीम और शेख सलीम हमें मैसेज कर रहे हैं। हमें मैसेज कर रहे हैं बिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा हमें मैसेज कर रहे हैं, और ये हमें मैसेज कर रहे हैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। साथ ही मैसेज मिला है जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनू, देवांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर और सुनील पाठक का। ग्राम लोहड़ी, ज़िला महोबा, बुंदेलखंड, यूपी से मैसेज कर रहे हैं। कार्यक्रम में अगली फरमाइश आई है ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा की। साथ ही मैसेज भेजने वाले अगले श्रोता हैं नेहा सिया, सहारनपुर से ये हमें मैसेज कर रहे हैं, और साथ ही हमें मैसेज मिला है एक और मैसेज जो हम लेने जा रहे हैं। इन श्रोता का नाम है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, जो कि कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से मैसेज कर रहे हैं। साथ ही दुबिहा नेवादा ज़िला गाज़ीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का हमें मैसेज मिला है। और इन सभी की पसंद का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में फिल्म प्रेम रोग से।

0: सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम में अगली फरमाइश आई है छत्रपति संभाजी नगर सुरवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, स्वीट अंशुमन और बेबी ओवी की। साथ ही हमें मैसेज कर रहे हैं गांव कमल मंडी खुर्द ज़िला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत, धीरे सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप सिंह पवार और समस्त राजपूताना परिवार हमें मैसेज कर रहे हैं। अगली फरमाइश करने वाले श्रोता हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। साथ ही मैसेज मिला है खालापार मुजफ्फरनगर से साहिना प्रवीण, फातिमा, खुशबू, आयजा, मोहम्मद अदीब और मसरूल अली की। एक मैसेज और आया है हमारे पास जो कि छत्तीसगढ़ से मिला है, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार हमें मैसेज कर रहे हैं। रोहासी पलारी छत्तीसगढ़ से चेतन साहू, गायत्री साहू, खुशी साहू, रेशमा और वर्षा साहू का मैसेज आया है। साथ ही सुशीला देवी मंडूरकर, सदानंद कुमार, गौरव, आरव और अर्पिता का मैसेज आया है डाबकी रोड ओकाला से। एक और मैसेज हम लेने जा रहे हैं, मेरा है धनेरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू का। और इन सबकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में।

जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता हमें मैसेज कर रहे हैं वार्ड नंबर 1 ज़िला यमतवाल से। साथ ही मैसेज मिला है नई बस्ती गंजडूंडवारा से मोहम्मद यासिन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम हाशमी का। साथ ही ज़िला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मैसेज करने वाले अगले श्रोता हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप मैसेज कर रहे हैं। लाल कुटी रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत, कौशकी, दीपाली, युवान और आर के राजा का मैसेज मिला है। और इसी के साथ ही मैसेज मिला है परम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर, दीपेंद्र, वीरेंद्र, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत का, जो कि हमें पंजाब से भटिंडा से मैसेज कर रहे हैं। और एक और मैसेज आया है कैलाश फुलमाली, दीपक फुलमाली, समर फुलमाली और वेदिका फुलमाली का अहमदनगर खेगांव खंडवा से, मजनू का टेला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक मैसेज कर रहे हैं। जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़ और युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ का मैसेज हमें मिला है रतलाम महाराष्ट्र एमपी से। साथ ही भेजने वाले जो मैसेज हैं वो अगले श्रोता हैं, ये हम

मैसेज कर रहे हैं, मोटक्का माफी जिला खंडवा से अंतिम पटेल, कमला पटेल, जगन्नाथ पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल, और इन सबकी पसंद का गीत आपको सुनवा रहे हैं मंजिल फिल्म से।

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आज के इस कार्यक्रम में मैं वंदना आप सभी के साथ और अगली फरमाइश लेने जा रही हूं, वो हमें मिली है पंचकुला से वेद प्रकाश प्रजापति, लक्ष्य अंजलि नेहा, गुरमीत कौर प्रजापति की। साथ ही मैसेज कर रहे हैं मोहम्मद कलीम जख्मी, वोन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दिबुरल हसन बेगम, शबनम अनवर, नाजमा बेगम नाज और सरिता गौतम। रेलवे रोड गंजडूंडवारा से एक मैसेज आया है रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर का। दिल्ली से ध्वनि और सानवी हमें मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ ही मैसेज करने वाले श्रोता हैं गांव झगुड़ी ज़िला यमुनानगर से रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम, वीरेन, मनकीरत और मनराज। मैसेज कर रहे हैं हमें वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री और मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। साथ ही मैसेज करने वाले श्रोता हैं रुपेश संगई, महेश, प्रगेश, प्रितेश और पूरा संगई परिवार। परभणी महाराष्ट्र से हमें मैसेज कर रहे हैं मालियान सरदना, मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवियम जैन सरदना मेरठ से ये मैसेज कर रहे हैं। साथ ही मैसेज हमें मिला है सुदामा नगर रतलाई ज़िला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभु लाल बागरी का। एक मैसेज हमारे पास और आया है, ये भी रतलाई ज़िला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन, शोभा, कपिल, नैना, सत्यनारायण, फुंदीबाई बागरी हमें मैसेज कर रहे हैं। और साथ ही मैसेज करने वाले श्रोता हैं रामपुर से महमूद खां, मोहल्ला बरादरी से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोज़ा, मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी, यशमीत, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह मैसेज कर रहे हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। शेरवानी स्कूल गंजडूंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का हमें मैसेज मिला है। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया हमें मैसेज कर रहे हैं। साथ ही मैसेज आया है सहारनपुर से गांव कुमार हेड़ा से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सदाम हमें मैसेज कर रहे हैं। और एक और मैसेज हमें जो मिला है वो हमें मिला है प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा का छत्तीसगढ़ पलारी से। और इन सबकी पसंद का गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म वक्त से।

पोटिया कला दुर्ग से मैसेज कर रहे हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। नाला सुपारा मुंबई से मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रूमा, माहिरा शेख, नौमान शेख, सुलेमान शेख और शेख मोहम्मद कलीम का मैसेज मिला है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा मैसेज कर रहे हैं। जगपाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार का मैसेज मिला है। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से। साथ ही मैसेज कर रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबर राही में जहाँ आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, और सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग का मैसेज हमें मिला है। शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन सब्जी मंडी बुल्डाना से मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमें मैसेज करने वाले अगले श्रोता हैं पानीपत से आशा गुगलानी, सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा और बिपाशा शर्मा, माया कुमारी हमें मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ चंद्रवती भी का भी इनके साथ ही हमें मैसेज मिला है। मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, विद्या कुमारी का मैसेज आया है। और साथ ही एक और मैसेज हमें मिला है ताज मोरवा समस्तीपुर बिहार से, कारी राय कारी, मीना कारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जयश्री का। इन सबकी पसंद का गीत अलका याग्निक के साथ उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म हम से।

मॉडल टाउन करनाल से अगली फरमाइश भेज रहे हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और किरण ठाकुर हमें मैसेज कर रहे हैं। साथ ही हमें मैसेज कर रहे हैं अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। शाहूनगर यमतवाल से राहुल, मनवर, सरला, मनवर, विशाल और चेतन, रोशनी और प्रियांशी का मैसेज हमें मिला है। कच्छ गुजरात से गंगा वणकर, गोविंद वणकर, प्रीति, जूली, गीता महिमा, विशाल, विजय, विराट, रमेश, महेश, जयंती हमें मैसेज कर रहे हैं। साथ ही मैसेज मिला है फारुखाबाद, साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला, बाबू शिवा चौरसिया, शिवानी चौरसिया, पवन गौड़ और योगेंद्र नायक कासगंज से मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ ही मैसेज भेजने वाले अगले श्रोता हैं गोकुल चौक गंगजला सहा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छेलाल राय, बुलकी राय और फलना झा हमें मैसेज कर रहे हैं। साथ ही मैसेज मिला है किशन सबकाल, आशा सबकाल, सोनिया, साईराज और विशाल सबकाल का। शास्त्री नगर बीड शहर से, कस्बा चिलकाना से नदीम अंसारी, आयशा, नदीम, अजीम शान, आलिया अंसारी, आराम अंसारी और हमें मैसेज करने वाले अगले जो श्रोता हैं वो हैं सदर बाज़ार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। और इन सबकी पसंद का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म त्रिशूल से।

और अब कुछ अंतिम मैसेजेस कार्यक्रम में लेने जा रहे हैं, क्योंकि समय हुआ है 11:55 का, जो हमें मिले हैं नास पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद आराम और साथी मोहम्मद आलम हाशमी मैसेज कर रहे हैं। विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा हमें मैसेज कर रहे हैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। साथ ही कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का मैसेज मिला है। तेलंगाना से हमें मैसेज मिला है बालकृष्ण, शारदा, श्रीनिधि, अखिल और कीर्ति केया का। साथ ही मैसेज कर रहे हैं अगले जो श्रोता हैं, वो हैं तेलंगाना से ही पुटपक्का गांव से भवानी वेंकट, मास्टर मिथुन और महादेव। एक और मैसेज आया है हसीना बानो, दिलावर खान, अलीज़ा, नायाब और लड्डू का, हमें रघुवीर नगर दिल्ली से मैसेज कर रहे हैं। और कृष्णा, माफ़ कीजिएगा, अगला जो लास्ट आखिरी जो मैसेज हमारे को मिला है, वो हमें मिला है राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और पूरा परिवार हमें मैसेज कर रहा है गांव गाला ज़िला अंबाला हरियाणा से। और इन सबकी पसंद का कार्यक्रम का ये अंतिम गीत यशुदास की आवाज़ में फिल्म चित चोर से आप सभी को सुनवाते हैं। और इस गीत के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर से हाजिर होंगे ये कार्यक्रम लेके। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आकाशवाणी देहरादून और इन्जॉय कीजिए इस कार्यक्रम के इस अंतिम गीत को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम व्हाट्सअप फरमाइश। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 12 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे के क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के

0: से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए UPI सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक स्तर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी नोटिस का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि ये दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Athens-headquartered Eurobank has launched the UPI-based remittance service for cross-border transfers from Greece to India. The initiative is part of the bank's strategic collaboration with the National Payments Corporation of India, NPCI, International Payments Limited. In a social media post, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the inauguration of services at Eurobank marks another important milestone in the global expansion of India's digital payment ecosystem. He added that with UPI now live in Greece, eligible customers can transfer money instantly, securely and seamlessly, with transaction costs reducing drastically to a fraction of conventional transfer costs. Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan today emphasized that the vision of Viksit Bharat cannot be achieved without developing the agriculture sector. Addressing the closing ceremony of Khet Bachao Abhiyan in Hisar, Haryana, Mr. Chauhan said the government is working on developing a mobile app that will provide information regarding soil and the amount of fertilizer the soil requires. He urged farmers to use fertilizers and insecticides in their farms in a balanced manner in order to maintain the health of the soil. He also advised farmers to adopt the practice of organic farming. Army Chief General Upendra Dwivedi today said the Indian Army derives its strength not from any single individual but from the unwavering faith of its soldiers, commanders, veterans, families and the citizens of the country. General Dwivedi

0: He said this while relinquishing the appointment as the Chief of Army Staff in New Delhi today. He emphasized that serving in the Indian Army for over four decades has been his greatest privilege. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Andhra Pradesh from today. During the visit, she will attend the first convocation ceremonies of the Central Tribal University of Andhra Pradesh and the Central University of Andhra Pradesh. The President will grace the maiden convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam today. Degrees will be awarded to 373 students who completed their undergraduate and postgraduate programs between the 2020 and 2025-26 academic years. The Indian Coast Guard ICG ship Sachet has rescued six fishermen from the distressed Indian fishing boat IFB Manjumatha in a maritime search and rescue operation off the coast of Mangaluru. In a social media post, the ICG said all survivors were rescued using remote-operated life buoys after IFB Manjumatha suffered hull damage and flooding in rough seas yesterday. The ICG added that the survivors are being brought to New Mangalore for aid and handover to local authorities. India has intensified its humanitarian outreach in earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad, expanding relief efforts with a focus on providing medical assistance and emergency support to those affected by the disaster. The Embassy of India in Caracas, Venezuela shared an update on this on social media. The Indian Army contingent deployed in Venezuela under Operation Amistad established a field hospital to provide urgent medical assistance to affected people. At least 1,719 people have died following the devastating back-to-back earthquakes that struck central northern Venezuela on June the 24th. The United States and Iran will hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over the Strait of Hormuz. The meeting comes amid renewed tensions between the US and Iran over the waterway through which 20% of the world's crude oil flows. The dangerous period of violence that began on Thursday disrupted US President Donald Trump's attempt to end hostilities with Iran and negotiate a settlement that addresses Tehran's nuclear program. Germany has been knocked out of the 2026 FIFA World Cup in the round of 32. They were eliminated by Paraguay in a shocking 4-3 penalty shootout defeat in Boston after the match ended 1-1 following extra time. This marks Germany's first ever penalty shootout loss in a World Cup. With this win, Paraguay advances to the World Cup round of 16. And with that, we end this news bulletin.
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है। बाबू शिता पांडे से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को एमआरआई, डिजिटल मेमोग्राफी और एआई आधारित पोर्टेबल एक्सरे मशीनें कराई जाएंगी उपलब्ध। मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन तैयारियों के आकलन के लिए 2 जुलाई को प्रदेशभर में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। इसकी तैयारियों के तहत आज देहरादून में टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित होगी। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने विभिन्न अखाड़ों के संतों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जलग्रहण विकास घटक के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की। प्रदेश भर में सहकारिता सप्ताह 2026 की शुरुआत हो गई। 6 जुलाई तक राज्यभर में सहकारिता से जुड़े विभिन्न जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पौड़ी की पूर्वी और पश्चिम नयार नदी के पुनर्जीवन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। प्रदेश में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 92% पूरा कर लिया गया है। प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए 4 जुलाई से सेवा सप्ताह शुरू किया जाएगा। प्रदेश में मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। आज से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अस्तित्व में आ जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार आज पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने संभावित खराब मौसम को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। और अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा थाना क्षेत्र में एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मृत्यु। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून

केंद्र है FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 12:10 माफ कीजिएगा 12:12 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनिए हेमंत पाठक के गाए चंद गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हेमंत कुमार पाठक के गाए गीत। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का दैनिक कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं बहनों को सीमा जखमुला का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, शिक्षा का हमारे व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र के विकास में कितना महत्व है, यह हम सभी अच्छी तरह से समझते और जानते हैं। एक पारंपरिक समाज में महिलाओं की औपचारिक शिक्षा को उतनी महत्ता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिसमें महिलाओं में छिपी प्रतिभा को उभरने का अवसर नहीं मिला। वे स्वयं को कमज़ोर समझने लगी और परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर रहने लगी। नारी को सशक्त बनाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और महिलाएं अपने बच्चों की पहली शिक्षिका। तो इस तरह एक शिक्षित महिला एक शिक्षित परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। शिक्षा का प्रसार हुआ और शिक्षा के प्रति महिलाओं में जागरूकता बढ़ी। सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाने की उन्हें शक्ति मिली। उनमें आत्मविश्वास बढ़ा। आत्मनिर्भर होकर महिलाएं आज स्वयं के लिए सही निर्णय लेने के लिए

सक्षम हो रही हैं, अपने अधिकारों को वे समझती हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। शिक्षा के बल पर सेना, प्रशासन, विज्ञान, अंतरिक्ष जैसे हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही हैं।

0: श्रोताओं, वर्तमान में सोशल मीडिया ने महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। सोशल मीडिया महिलाओं के लिए सशक्त डिजिटल क्रांति, इस विषय पर सुनते हैं श्रीमती निर्मला नेगी की यह वार्ता।
1: हेलो, एक समय था जब महिलाओं की दुनिया घर और आसपास के सीमित दायरे तक सिमटी हुई थी। जानकारी प्राप्त करने, बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने या रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में अनेक कठिनाइयां थी। लेकिन आज एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से महिलाएं दुनिया भर की जानकारी अपने हाथों में रखती हैं। यह परिवर्तन वास्तव में एक सामाजिक क्रांति है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि महिलाओं को सशक्त बनाना एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण की पहली शर्त है। आज डिजिटल तकनीक इस सशक्तिकरण की सबसे प्रभावी शक्ति बनकर उभरी है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति अभूतपूर्व बदलाव लाई है। आज महिलाएं और बालिकाएं ऑनलाइन कक्षाओं, डिजिटल पुस्तकालयों, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और शैक्षणिक मोबाइल एप्स के माध्यम से नई जानकारियां प्राप्त कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अनेक महिलाएं अब डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में जुड़कर कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग सीख रही हैं। इससे वे न केवल शिक्षित हो रही हैं, बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। हमारे देश में कई गांव में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं डिजिटल प्रशिक्षण प्राप्त करके ऑनलाइन सेवा केंद्रों का संचालन और डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान कर रही हैं। यह दिखाता है कि तकनीक अवसरों को कैसे लोकतांत्रिक बनाती है। डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण पर पड़ा है। आज महिलाएं घर बैठे अपना व्यवसाय शुरू कर रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से वे अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचा रही हैं। आज वही उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं। इससे महिलाओं की आय के साथ साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने कहा था, जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। डिजिटल तकनीक इस प्रगति को गति देने का माध्यम बन रही है। वित्तीय स्वतंत्रता किसी भी महिला के सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण आधार है। डिजिटल बैंकिंग और UPI जैसी सुविधाएं महिलाओं के जीवन में एक नया बदलाव लाई है। अब वे स्वयं बैंक खातों को संचालित कर रही हैं, पैसे भेज भी सकती हैं और प्राप्त भी कर सकती हैं, तथा अपने आर्थिक निर्णय स्वयं ले सकती हैं। आज सरकारी योजनाओं की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंच रही है, जिससे पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता दोनों बढ़ी हैं। बहनों, ग्रामीण भारत में अनेक महिलाओं ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाकर छोटे व्यवसायों को नई दिशा दी है। आज सब्जी बेचने वाली महिलाओं से लेकर स्वयं सहायता समूह की सदस्य तक कई महिलाएं QR कोड और डिजिटल भुगतान का उपयोग कर रही हैं। यह तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी डिजिटल तकनीक महिलाओं के लिए वरदान सिद्ध हो रही हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए आशा बहनें स्वास्थ्य सेवाओं में बेहद उपयोगी साबित हो रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म महिलाओं को अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर रही हैं। आज महिलाएं सुरक्षा, कानूनी अधिकार, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकती हैं। ज्ञान ही शक्ति है और डिजिटल तकनीक इस शक्ति को महिलाओं तक पहुंचा रही हैं। भारत की प्रसिद्ध समाज सुधारक सावित्री बाई फुले ने कहा था, शिक्षा ही वही मार्ग है जो महिलाओं को स्वतंत्रता और सम्मान दिला सकती है। बहनों, हालांकि डिजिटल क्रांति के साथ कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं। अभी भी अनेक महिलाओं के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की पर्याप्त सुविधा नहीं है। डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण कई महिलाएं तकनीक का पूरा लाभ नहीं उठा पाती। साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और फर्जी सूचनाएं भी चिंता का विषय हैं। इसलिए आवश्यक है कि महिलाओं को डिजिटल उपकरणों के उपयोग के साथ साथ

साइबर सुरक्षा की जानकारी भी दी जाए। मजबूत पासवर्ड का उपयोग, व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना और संदिग्ध लिंक से बचना जैसी बातें डिजिटल सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विश्व प्रसिद्ध तकनीकी उद्यमी बिल गेट्स ने कहा है, तकनीक तभी सार्थक है जब वह लोगों के जीवन को बेहतर बनाए। महिलाओं के जीवन में आया यह सकारात्मक परिवर्तन इसी बात का प्रमाण है। आज भारत में अनेक प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिलते हैं। ग्रामीण महिलाएं डिजिटल सेवा केंद्र चला रही हैं, व्यवसाय स्थापित कर रही हैं और अपने हस्तशिल्प उत्पादों को डिजिटल बाजार के माध्यम से वैश्विक पहचान दिला रही हैं। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि अवसर मिलने पर महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। अब महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले सकती हैं, नए कौशल सीख सकती हैं और अपने करियर को नई दिशा दे सकती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने महिलाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है, चाहे वह ऑनलाइन शिक्षिका हो, कंटेंट क्रिएटर हो या छोटे व्यवसाय की संचालिका। डिजिटल तकनीक ने उनके लिए अधिक सफलता के द्वार खोल दिए हैं और उनको सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि विश्व की सभी समस्याओं का समाधान महिलाओं की उन्नति में निहित है। आज डिजिटल तकनीक इस उन्नति का प्रभावी साधन बन चुकी है। सामाजिक दृष्टि से भी इस क्रांति ने महिलाओं को अपनी आवाज बुलंद करने का मंच प्रदान किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर सकती हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता फैला सकती हैं तथा सामाजिक मुद्दों पर चर्चा में भाग ले सकती हैं, जिससे महिलाओं का जीवन और अधिक सुविधाजनक और सशक्त बना है। डिजिटल क्रांति ने महिलाओं के जीवन में एक नई ऊर्जा और नई भावनाओं का संचार किया है। इसके जरिए आज महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं की उपलब्धियों और संघर्षों की कहानियां अब दुनिया भर तक पहुंच रही हैं, जिससे अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिलती है। डिजिटल माध्यमों ने महिलाओं को एक दूसरे से जोड़कर सहयोग और समर्थन का मजबूत नेटवर्क भी प्रदान किया है। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं और भविष्य में डिजिटल तकनीक का विस्तार महिलाओं के विकास में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यदि प्रत्येक महिला को डिजिटल शिक्षा, सुरक्षित इंटरनेट और आधुनिक तकनीकी संसाधनों की सुविधा मिल जाए तो वे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में और अधिक योगदान दे सकेंगी। इसलिए महिलाओं के लिए सशक्त डिजिटल क्रांति केवल तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि समानता, आत्मनिर्भरता और प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह क्रांति महिलाओं को नए अवसर प्रदान कर रही है और उन्हें सशक्त भविष्य की ओर अग्रसर भी कर रही है। बहनों, 21वीं सदी में डिजिटल क्रांति ने मानव जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। इस परिवर्तन का सबसे सकारात्मक प्रभाव महिलाओं के सशक्तिकरण पर पड़ा है। जिन महिलाओं को पारिवारिक या सामाजिक कारणों से नियमित विद्यालय और महाविद्यालय जाने का अवसर नहीं मिल पाता, वे भी अब घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म, ई पुस्तकें, वीडियो व्याख्यान और वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से महिलाएं अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकती हैं। डिजिटल शिक्षा ने महिलाओं को नए कौशल सीखने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और अपने करियर को बेहतर बनाने का अवसर दिया है। डिजिटल क्रांति महिलाओं के जीवन में परिवर्तन की एक शक्तिशाली लहर है। यह उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान प्रदान कर रही है। इसके द्वारा महिलाएं अपने सपनों को साकार कर रही हैं और राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। एक सशक्त महिला ही सशक्त समाज

0: स्टार्टअप्स वर्क फ्रॉम होम और बिजनेस करने के लिए किसी बड़े शोरूम या लाखों के इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। हमारी गृहिणियां और कॉलेज की लड़कियां अपने हुनर के दम पर सोशल मीडिया पर कुकिंग क्लासेस चला रही हैं, इंस्टाग्राम पर होममेड अचार और बुटीक का सामान बेच रही हैं और सोशल मीडिया के जरिए रीसेलिंग का बड़ा नेटवर्क संभाल रही हैं। बहनों, पहले समय में महिलाओं को हर छोटे बड़े खर्चे के लिए पुरुषों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, लेकिन आज उनके पास खुद का बैंक अकाउंट है, खुद का UPI पिन है। सब्जी वाले भैया से लेकर मॉल की शॉपिंग तक वे खुद स्कैन करके पेमेंट करती हैं। ये जो आर्थिक आत्मनिर्भरता है, ये महिलाओं के आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाती है। अब गांव की किसी बेटी को कोडिंग सीखनी हो या शहर की किसी कामकाजी महिला को डिजिटल मार्केटिंग, उन्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी डिजिटल पोर्टल ने पढ़ाई को हर महिला तक पहुंचा दिया है। डिजिटल क्रांति ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया है। साइबर सुरक्षा, कानूनी अधिकार और सेहत से जुड़ी जानकारियां अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर हैं। महिलाएं अब अपनी आवाज उठाने से कतराती नहीं हैं, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात को दुनिया के सामने मजबूती से रखती हैं। बहनों, सच्चा सशक्तिकरण तब नहीं होता जब हम किसी को सहारा देते हैं, बल्कि तब होता है जब हम उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं। डिजिटल क्रांति केवल तकनीक का विस्तार नहीं है, बल्कि यह समान अवसरों, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब कोई महिला डिजिटल रूप से सशक्त होती है, तो उसका पूरा परिवार सशक्त होता है, उसका समुदाय सशक्त होता है और अंततः पूरा राष्ट्र सशक्त होता है। इसलिए हम डिजिटल तकनीक को केवल सुविधा का साधन नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में अपनाएंगे। अंत में मैं कवयित्री महादेवी वर्मा के विचारों को याद करना चाहूंगी। नारी समाज की शक्ति है और जब शक्ति जागृत होती है तो परिवर्तन अवश्य आता है। बहनों, डिजिटल क्रांति उसी जागृत शक्ति का आधुनिक स्वरूप है जो महिलाओं को नई पहचान, नए अवसर और नए सपने दे रही है और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। एक सशक्त महिला ही सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है और डिजिटल क्रांति इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल इंडिया ने हमारी महिलाओं को वही पंख दिए हैं। तो मैं अपनी होनहार बहनों से यही निवेदन करना चाहूंगी कि अपने फोन में डेटा पैक का इस्तेमाल सिर्फ रील्स देखने या मेम्स शेयर करने में मत उड़ाओ। इंटरनेट की इस अथाह दुनिया में कूदो, कुछ नया सीखो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं हो। नमस्कार।
1: सोशल मीडिया महिलाओं के लिए सशक्त डिजिटल क्रांति। अभी आपने इस विषय पर श्रीमती निर्मला नेगी की यह वार्ता सुनी। बहनों, सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाती हैं। महिलाओं के आर्थिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए महिला सम्मान बचत पत्र योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, जिसका सीधा लाभ महिलाओं को पहुंचेगा। कोई भी महिला खाता खुलवा कर इसका लाभ ले सकती हैं। इस योजना में 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा, जो क्वार्टरली खाते में भेज दिया जाएगा। जहाँ तक योजना में निवेश की बात है, तो कम से कम 1,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं और अधिकतम 2,00,000 तक इसमें निवेश किया जा सकता है। इस योजना में आंशिक निकासी का भी ऑप्शन है। खाताधारक जमा की गई 40% राशि को निकाल सकता है। केवल महिलाएँ और बालिकाएँ ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। यदि इन्वेस्टमेंट को लेकर कंफ्यूज हैं आप, तो पोस्ट ऑफिस की नज़दीकी ब्रांच में जाकर अपना खाता आप खुलवा सकती हैं और महिला सम्मान बचत पत्र योजना में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न प्राप्त कर आर्थिक लाभ उठा सकती हैं। योजना के विषय में विस्तृत जानकारी अपडेट्स आप अपने क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस में जाकर ले सकती हैं। और लीजिए, आप सुन लेते हैं कुछ संदेश।
2: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
3: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
4: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
5: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: ऐसी जो आत्मविश्वास जगाए, डिग्री ऐसी जो सफलता दिलाए, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक पाठ्यक्रम और उज्जवल करियर की राह। सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेम नगर, देहरादून। एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 8043541070 या विजिट करें rbbsu.edu.in। सफलता के कदम सुभारती के संग।
1: Future proof your career with UPES, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
2: बहनो, रसोई घर से क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं खास सिरप वाली खास आइसक्रीम की रेसिपी। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो है दूध 500 ग्राम, पका आम टुकड़ों में कटा हुआ, एक कप अनार के दाने, आधा कप खस सिरप, एक बड़ा चम्मच क्रीम, एक कप चीनी आधा कप। इसे इस तरह से आप बनाएंगे। सबसे पहले दूध को गाढ़ा होने तक उबाल लें। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो उसे आंच से उतार लें और उसमें चीनी मिला लें। जब ये दूध ठंडा हो जाए तो इसमें आम के टुकड़े और अनार के दाने मिलाकर इसे मिक्सी में पीस लें। अब आइसक्रीम ट्रे में सिल्वर फॉइल बिछाएं और उसमें पूरे घोल को डाल लें और इसे जमने के लिए फ्रीजर में रख दें। आधा जमने पर इसे फ्रीजर से बाहर निकाल लें और इसमें क्रीम मिलाकर इसे फेंट लें और फिर जमाने के लिए रख लें। जब आप आइसक्रीम को परोसें तो हल्का फेंट कर बोल में डालें। इसके बाद जमी आइसक्रीम में स्कूप डालकर खस सिरप और चीकू के टुकड़े डालें। तो इस तरह से तैयार हो जाती है खसरी सब वाली खास आइसक्रीम। और लीजिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिसे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन

0: के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेट बैंक में सेवाओं का उद्घाटन। भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त। 1 जुलाई से अस्तित्व में आएगा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री व वितरण पर लगा प्रतिबंध हटाने का फैसला किया। उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षाफल सुधार परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया। जुलाई से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और देहरादून जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 जारी। अब तक 13,55,948 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त कर दिया गया है और अब उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण USMEA कल से अस्तित्व में आ जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: निकाय मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने और विनियमित करने का कार्य करेगा और प्रदेश के सभी 452 मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी है। यह मान्यता 3 शैक्षणिक वर्षों के लिए वैध होगी। इसके अलावा मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से विधिवत संबद्धता भी प्राप्त करनी होगी और प्राधिकरण मदरसों का भौतिक निरीक्षण करेगा। मदरसों को निर्धारित सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही आवश्यक दस्तावेज और शुल्क जमा करना होगा। गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बीते 14 मई को मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान संबंधी मान्यता नियमावली 2026 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मदरसा बोर्ड के स्थान पर 1 जुलाई से अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अस्तित्व में आ जाएगा। नए नियमावली से शैक्षणिक संस्थानों के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। आकाशवाणी देहरादून के समाचार कक्ष से योशिता पांडे।
2: केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध 1 जुलाई से हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा पेट्रोल पंपों पर अब सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बावजूद सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को स्थिर रखा। इससे खुदरा और थोक उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कीमतों में बड़ा अंतर पैदा हो गया था। इस स्थिति से निपटने के लिए 12 जून से अस्थायी नियामक उपाय लागू किए गए थे। इनके तहत खुदरा पेट्रोल पंपों पर एक ग्राहक या वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल देने की सीमा तय की गई थी। साथ ही औद्योगिक, संस्थागत और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए अलग व्यवस्था की गई थी। इन उपायों का उद्देश्य डीजल की कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध बिक्री को रोकना तथा आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन एवं समर्पण के अंतर्गत

0: 4 जुलाई से प्रदेश भर में सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान धामी सरकार पिछले 5 साल के विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से लाभ देने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। सरकार की ओर से गत वर्ष 17 दिसंबर से राज्य भर में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अब इसकी अगली कड़ी यानी दूसरे चरण में 4 जुलाई से सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी जिलाधिकारियों को कार्यक्रम सफल बनाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सेवा सप्ताह के दौरान जिलों में प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा नामित प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में व्यापक जनभागीदारी के साथ कार्यक्रम होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का आज से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। आगामी वर्ष 2027 में हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन होना है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसी को लेकर शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैडा ने विभिन्न अखाड़ों के संतों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कुंभ से जुड़े निर्माण कार्यों की प्रगति और संत समाज की सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की।
1: आज सभी पूजनीय संत और महंत गुरुजनों के साथ बैठक हुई और जो कुंभ मेला होने जा रहा है वो भव्य हो, वो दिव्य हो, ऐतिहासिक हो, जिसका पूरे भारतवर्ष में और पूरे देश में, विश्व में एक अच्छा संदेश जाए, उसी उद्देश्य से आज यहाँ पर सभी महंत, सभी संत और महंतों को यहाँ पर आमंत्रित किया था। उनके साथ बैठक हुई। लगभग सभी अखाड़ों से हमारे संत और महंत यहाँ पर पहुंचे थे और माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में इस बार का कुंभ ऐतिहासिक होगा और दिव्य होगा, भव्य होगा। इसी दिशा में आज ये बैठक का आयोजन किया गया था। सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है।
0: बैठक में विभिन्न अखाड़ों के संतों ने कुंभ मेले की व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और पारंपरिक व्यवस्थाओं को लेकर अपने सुझाव दिए।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षाफल सुधार परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आगामी 22 जुलाई से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत छात्र न सिर्फ अंक सुधार करेंगे बल्कि इस परीक्षा के माध्यम से हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उत्तीर्ण होने का मौका दिया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि परीक्षा वर्ष 2026 प्रथम और वर्ष 2025 तृतीय की परीक्षाएं 22 जुलाई से शुरू होंगी, जो 30 जुलाई तक चलेंगी। 22 जुलाई को पहले दिन हाईस्कूल की हिंदी एवं इंटरमीडिएट की हिंदी, कृषि, अंग्रेजी व संस्कृत की परीक्षा होगी। 23 जुलाई को हाईस्कूल की उर्दू व अंग्रेजी, इंटरमीडिएट की इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, ड्राइंग एवं पेंटिंग, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र व सैन्य विज्ञानी परीक्षा होंगी। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि देहरादून जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के 13,76,813 मतदाताओं में से 13,55,948 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से 10,98,179 प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन भी पूर्ण कर लिया गया है, जबकि 1,42,485 प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन शेष है। जिले में वर्तमान में केवल 1,36,149 मतदाता ऐसे हैं जिनसे गणना प्रपत्र प्राप्त होना शेष है। देहरादून स्थित जिला कार्यालय में ऋषिपर्णा सभागार में डॉक्टर चौहान की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों, प्रतिनिधियों तथा सचिवों के साथ आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने ये जानकारी दी। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा की है कि वे अपने अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त कराने एवं समयबद्ध रूप से जमा कराने में सक्रिय सहयोग करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। सतर्कता अधिष्ठान की ट्रैप टीम ने उधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र में 20,000 रुपए की रिश्वत

लेते हुए एक कनिष्ठ अभियंता को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मामले में एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सतर्कता अधिष्ठान की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार एक पंजीकृत ठेकेदार ने टोल फ्री हेल्पलाइन 1064 पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि ब्लॉक जसपुर में वाटर कूलर लगाने के कार्य के भुगतान के एवज में कनिष्ठ अभियंता विवेक कुमार ने 20,000 रुपये तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

0: शिक्षा प्राधिकरण केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री व वितरण पर लगा प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया। उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षा फल सुधार परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया। 22 जुलाई से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और देहरादून जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 जारी। अब तक 13,55,948 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 1:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। मोहम्मद रफी के साथ सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में फिल्म ब्रह्मचारी का कार्यक्रम का ये पहला गीत।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आशा भोसले की आवाज में सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म लोफर से।

0: अब हमारे श्रोता जहाँ, हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और कार्यक्रम अगला गीत इंद्रजीत सिंह का लिखा हुआ फिल्म काली चरण से है। आवाज है लता मंगेशकर की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 1:30 होने को हैं। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
0: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: संजय मार्केंडी जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान। ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
0: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
0: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
0: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
0: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
0: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
2: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
0: जी जी।
2: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
0: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
2: जी श्रोताओ, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
0: जी श्रोताओ, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
2: जी,
0: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
2: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
0: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओ, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
2: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए, वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
0: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
2: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात ये है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
0: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
2: जी।
0: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
2: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ।
3: फूलों से नित हंसना सीखो,
4: फूलों से नित हंसना सीखो,
3: भौरों से नित गाना,
4: भौरों से नित गाना,
3: तरु की झुकी डालियों से नित,
4: तरु की झुकी डालियों से नित,
3: सीखो शीश झुकाना,
4: सीखो शीश झुकाना,
3: सीख हवा के झोंकों से लो,
4: सीख हवा के झोंकों से लो,
3: कोमल भाव बहाना,
4: कोमल भाव बहाना,
3: दूध तथा पानी से सीखो,
4: दूध तथा पानी से सीखो,
3: मिलना और मिलाना,
4: मिलना और मिलाना,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
4: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
4: सूरज की किरणों से सीखो,
3: जगना और जगाना,
4: जगना और जगाना,
3: लता और पेड़ों से सीखो,
4: लता और पेड़ों से सीखो,
3: सबको गले लगाना,
4: सबको गले लगाना,
3: दीपक से सीखो जितना,
4: दीपक से सीखो जितना,
3: हो सके अंधेरा हरना,
4: हो सके अंधेरा हरना,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
4: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
4: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: सच्ची सेवा करना,
4: सच्ची सेवा करना,
3: जलधारा से सीखो आगे,
4: जलधारा से सीखो आगे,
3: जलधारा से सीखो आगे,
4: जलधारा से सीखो आगे,
3: जीवन पथ में बढ़ना,
4: जीवन पथ में बढ़ना,
3: और धुएं से सीखो हरदम,
4: और धुएं से सीखो हरदम,
3: ऊंचे ही पर चढ़ना,
4: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है, हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खो देंगे तालाब बड़ा सा।
3: खोदेंगे पर खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल। खोदेंगे पर खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
2: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
3: खो देंगे भाई खो देंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
4: बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।

0: वे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन? कू कू।
1: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
2: मेरा भी कुछ यही हाल है।
3: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
4: क्या
5: क्या
4: क्या?
3: ऊंचा सप्तक कोयल गाए,
0: नीचा
3: सप्तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना। काम
6: यही करो तुम दोनों।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: दम लगा के कू।
2: हईशा।
0: दम लगा के कू।
2: हईशा।
3: काम काम काम। शाबाश शाबाश। सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम काम काम काम। लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा। काम काम काम। अरे पपी है, ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है? काम काम काम।
7: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
3: काम काम काम। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
7: ताल खोदने में, इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको? अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
3: का का का।
8: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: पपीहा ना पिए तुझा पान।
1: गाँ, गाँ, गाँ। अरे इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
2: भौ, भौ, भौ। अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भौ, भौ। कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
1: गाँव गाँव गाँव कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। गाँव गाँव शेर महाराज अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: इसकी यही सजा हो,
4: अब गर्मी का मौसम आ गया था। नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: गाँ, गाँ। अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। गाँ।
5: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना
6: भाई? मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
1: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
6: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
5: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब।
1: खाओ, खाओ, खाओ।
5: तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
1: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
5: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
6: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
1: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी हैं के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।

0: ख्वाहिश बिन पानी।
1: क्या ये मर गया?
2: क्या पता,
1: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
2: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ ये ठीक रहेगा।
2: पपी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। माहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
3: पानी,
2: अरे
1: पपी है भाई।

0: Direct negotiations with United States officials are planned. Iranian President Masoud Pezeshkian had also made it clear that Tehran will honor its commitments only if Washington fulfills its own obligations, including easing sanctions and releasing Iranian assets. The contrasting statements underline how fragile the diplomatic process remains despite recent efforts to reduce regional tensions. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
1: Three more teams have bowed out of the 2026 FIFA World Cup after the opening round of 32 matches. Morocco, Brazil and Paraguay booked their places in the round of 16 with victories over the Netherlands, Japan and Germany respectively. We have a report.
2: Germany suffered a shock exit after losing to Paraguay 4-3 in a penalty shootout defeat in Boston after the match ended 1-1 following extra time. This marks Germany's first ever penalty shootout loss in the World Cup. With this win, Paraguay advances to the World Cup round of 16. In another match, Morocco defeated the Netherlands 3-2 on the penalties after a dramatic 1-1 draw across 120 minutes in round of 32 clash today. Morocco's Ashraf Hakimi and Neil El Ainoui tested Dutch goalkeeper Bart Verbruggen, while Mickey van der Ven forced a world-class save from Moroccan keeper Yassine Bounou. Cody Gakpo scored a brilliant opening goal for the Netherlands after receiving a quick pass from Crescencio Somerville. After a chaotic penalty shootout featuring misses from Quinton Timber and Ashraf Hakimi, Ismail Saibari scored a decisive spot kick to send Morocco through. Earlier, Brazil has entered the round of 16 after a 2-1 victory over Japan in Houston, US. Brazil will next face either the Ivory Coast or Norway on Sunday in East Rutherford, New Jersey in the round of 16. With Neelam's report, this is Jigyasa Pandey for Akashvani News, Delhi.
1: The Intermeteorological Department, IMD, issued an orange-coloured warning for very heavy rainfall over parts of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Maharashtra, coastal Karnataka, Konkan and Goa for the next 2 days. Similar conditions are also expected over parts of Sikkim, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe, sub-Himalayan West Bengal for the day. IMD said a gradual fall in maximum temperatures by 4 to 5 degrees Celsius is expected over northwest India during the next 3 to 4 days. Meanwhile, the Met Department has forecast heatwave conditions over Delhi, Haryana and Chandigarh today. Benchmark domestic equity indices were trading on a flat note during the afternoon session today. The Sensex was down 63 points to 76,665, while the Nifty dipped 9 points to 23,937 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Eurobank launches UPI-based remittance service from Greece to India. Commerce Minister Piyush Goyal calls it a milestone in India's digital payments expansion. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi and four states. India reaffirms strong support for Financial Action Task Force after Pakistan criticizes grey list monitoring by agency. Uncertainty looms over US and Iran peace negotiations as Tehran rejects US President Trump's claim of meeting in Doha. And Germany knocked out of 2026 FIFA World Cup after facing defeat from Paraguay in a 4-3 penalty shootout. With that, we end the midday news.
3: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Lavleen Nigam. यूरोबैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया. दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू. पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया. ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान. और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर. मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया. अब समाचार विस्तार से. यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है. ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है. एक रिपोर्ट.
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
3: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए # झारखंड एसआईआर के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
3: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
6: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने के। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है

0: उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
5: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। श्रोताओं, सैनिक एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मातृभूमि की रक्षा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। उनका जीवन बेहद कठिन, संघर्षपूर्ण और गौरवशाली होता है, जो अनुशासन, साहस और देशभक्ति के प्रतीक होते हैं। आज हम ऐसे ही एक वीर सैनिक की बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कैप्टन जिंटू गोगोई की, जो 1999 के कारगिल युद्ध के एक अमर शहीद थे। उनका जन्म असम के गोलाघाट जिले के खुमताई नामक स्थान पर एक वायुसेना परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही अनुशासित और देश के प्रति समर्पित थे।

कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कैप्टन जिंटू गोगोई की। असम के गोलाघाट जिले से आने वाले वे 17 गढ़वाल राइफल्स में अधिकारी थे। उन्हें कारगिल में बैटालिक सेक्टर के काला पत्थर को दुश्मनों से मुक्त कराने का अत्यंत कठिन कार्य सौंपा गया था, जिसे उन्होंने अदम्य साहस के साथ पूरा किया।

दिन पहले उनकी सगाई हुई थी, किंतु युद्ध की आहट सुनकर वे अपनी छुट्टियों को बीच में छोड़कर मोर्चे पर लौट आए। 30 जून 1999 की रात कैप्टन जिंटू गोगोई ने अपनी पलटन का नेतृत्व करते हुए बटालिक सेक्टर में काला पत्थर की बर्फीली चोटियों पर कब्जा करने के लिए धावा बोल दिया। भारी गोलाबारी और दुश्मनों की मशीन गनों का सामना करते हुए गंभीर रूप से वे घायल हो गए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी अंतिम सांस तक वे लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त हो गए। उनके इसी बलिदान के लिए मरणोपरांत उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अगला गीत सुखविंदर की आवाज़ में है, फिल्म सुल्तान से।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए और आज हम बात कर रहे हैं कैप्टन चिंटू गोगई की। कारगिल के युद्ध के समय जब असम उग्रवाद के दौर से गुजर रहा था, तब कैप्टन चिंटू गोगई की शहादत ने स्थानीय युवाओं को भारत के समर्थन में प्रेरित किया। उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए भारतीय सेना द्वारा असम में कैप्टन चिंटू गोगई मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ऐसे वीर जो युवाओं की प्रेरणादायक होते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, ऐसे वीर सैनिकों को हमारा शत शत नमन। इसी के साथ ही पेश करते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत शंकर महादेवन की आवाज़ में, फिल्म मिशन कश्मीर से।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए, FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 3 बज रहे हैं, अब सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप आशुतोष उनियाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त, 1 जुलाई से अस्तित्व में आएगा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री व वितरण पर लगा प्रतिबंध हटाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा सुशासन एवं समर्पण के अंतर्गत 4 जुलाई से प्रदेश भर में सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विभागों को आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन का आदेश दिया। उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षाफल सुधार परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया। 22 जुलाई से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। देहरादून जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 जारी। अब तक 13,55,948 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित। जलागम सचिव दिलीप जावलकर ने उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग व पौड़ी जिलों में संचालित जलागम परियोजनाओं की समीक्षा में जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, आजीविका संवर्धन व लंबित विभिन्न निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी नोटिस का खंडन किया है। पौड़ी गढ़वाल की एथलीट ओलंपियन अंकिता ध्यानी ने 65वीं नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 3:02 हुए हैं, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत गाने नए तराने, जिसमें पहला गीत अजय अतुल की आवाज़ में फिल्म धड़क से है।

ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। अगला गीत अनुराधा पौडवाल और एम जी श्री कुमार की आवाज़ में है। फिल्म है डोली सजा के रखना। इस गीत को लिखा है महबूब ने और संगीत है AR रहमान का।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नकाब से है, जावेद अली की आवाज़ में। समीर के लिखे हुए शब्दों को पिरोया है संगीत में, सुनते हैं ये गीत।

तेरे इश्क में, इस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना फहीम अब्दुल्ला की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गीत करण औजला की आवाज़ में है, फिल्म बैड न्यूज़ से।

0: राघव माथुर और शिल्पा राव की आवाज में ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म थी जब तक है जान। कार्यक्रम का अगला गीत बागी फिल्म से मोनाली ठाकुर की आवाज में है।
1: Thank you.

0: मधुमति बागची की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म थी धुरंधर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून FM 100.5 MHz पर।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
0: दोपहर के 3:37 स्टूडियो क्लॉक में हुए हैं। फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। टशन फिल्म से कार्यक्रम का ये अगला गीत आवाजें हैं उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर।

सुखिंदर सिंह और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म थी दीवाने। FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज़ में एक गीत अभी आपने सुना फिल्म कॉकटेल से, और अब पेश है कार्यक्रम का ये अंतिम गीत अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म घातक से।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। शाम के 4 बज रहे हैं, आप सुनिए FM न्यूज़ हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप आशुतोष उनियाल से सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगामी 4 जुलाई से प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा के तहत जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड रजत जयंती पर इस बार हरेला पर्व पर राजधानी देहरादून में लगभग 15 लाख पौधे रोपे जाएंगे। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद ने फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान पुणे से पास आउट 3 युवाओं की छात्रवृत्ति का भुगतान किया। केंद्र सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाई। देहरादून जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 जारी। अब तक 13,55,948 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित। उत्तरकाशी जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, ब्लैक स्पॉट्स के सुधार तथा यातायात सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पौड़ी गढ़वाल की एथलीट ओलंपियन अंकिता ध्यानी ने 65वीं नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। और प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक, राजधानी देहरादून सहित राज्य के अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश होने से मौसम सुहावना, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। शाम के 4:02 हो गए हैं। आप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज सुनिए राशि पंत का गाया ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग मुल्तानी और तबले पर संगत कर रहे हैं चित्रंग पंत।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राशि पंत का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग मुल्तानी और तबले पर संगत कर रहे थे चित्रंग पंत। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।

0: यह आकाशवाणी देहरादून है, FM 100.5 MHz पर। शाम के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार। आज के इस कार्यक्रम में मैं वंदना आप सभी को नमस्कार करती हूँ। श्रोताओं, संगीत वो है जो सदा ही हमारे मन को वो खुशी देता है जो कहीं और से नहीं मिल सकती। बेहतरीन गीतों को बनाने के पीछे एक संगीतकार का हाथ होता है जो धुन, ताल और सुरों की रचना करता है और शब्दों को जादुई आवाज़ और वाद्य यंत्रों के जरिए एक ऐसी रचना में बदल देता है जो सीधे दिल को छू लेती है। भारतीय सिनेमा के ऐसे दिग्गज संगीतकार के बारे में आज हम बात करेंगे जिन्होंने बॉलीवुड को ऐसे सदाबहार गीत दिए हैं जिनकी जगह आज भी उतनी ही अहम है जितनी पहले थी। आज बात करेंगे संगीतकार कल्याण जी विरजी शाह की, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 30 जून को 1928 में गुजरात के कच्छ जिले में हुआ था।
1: तुम

कल्याण जी वीरजी शाह बचपन से ही संगीतकार बनने का सपना देखा करते थे। हालांकि उन्होंने किसी भी उस्ताद से संगीत की कोई भी शिक्षा नहीं ली, फिर भी वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आ गए और अपने करियर की शुरुआत संगीतकार हेमंत कुमार के साथ सहायक के रूप में की। 1958 में उन्होंने फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त के जरिए स्वतंत्र रूप से संगीतकार के रूप में अपने सफ़र की शुरुआत की और 1960 में अपने छोटे भाई आनंद जी को मुंबई बुला लिया और फिर कल्याण जी आनंद जी के नाम से इनकी जोड़ी मशहूर हो गई और इस जोड़ी ने 60, 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा के संगीत जगत पर राज किया।

0: कार्यक्रम एक कलाकार में आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार कल्याण जी की। 1970 में विजय आनंद निर्देशित फिल्म जॉनी मेरा नाम में नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले जैसे रोमानी संगीत देकर कल्याण जी आनंद जी ने श्रोताओं का दिल जीत लिया। मनमोहन देसाई के निर्देशन में फिल्म सच्चा झूठा के लिए कल्याण जी ने बेमिसाल संगीत दिया। उन्हीं की फिल्म जॉनी मेरा नाम से किशोर कुमार की आवाज़ में सुनते हैं ये गीत।
1: नफरत

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।

शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

कल्याण जी, आनंद जी के बनाए हुए गीत इतने खूबसूरत थे कि आज भी लोगों की जुबां पर हैं। मेरी प्यारी बहनियाँ बनेगी दुल्हनियाँ को आज भी शादी के मौके पर सुना जाता है। वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म सरस्वती चंद्र के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ साथ फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। ऐसे तो बहुत सारे पुरस्कार हैं जो उनके नाम हैं, जिसमें से वर्ष 1992 में संगीत के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ सरस्वती चंद्र का ये गीत आपको सुनवाते हैं। ये गीत उन्होंने मुकेश और लता मंगेशकर दोनों की आवाज़ों में तैयार किया है। चलिए सुनते हैं दोनों की ही आवाज़ों में ये गीत।

इतने बेहतरीन गीत आपने सुने मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसकी संरचना की कल्याण जी ने। कल्याण जी ने तकरीबन सभी अपने करियर में सभी गायकों के साथ काम किया और उन्होंने अपनी धुनों से ना केवल स्थापित गायकों को सफलता दी बल्कि कई नए गायकों को भी इंडस्ट्री में पहचान दिलाई। मुकेश के साथ कहा जाता है कि इस जोड़ी के साथ मुकेश का रिश्ता सबसे गहरा था। उन्होंने उनके साथ कई सदाबहार गीत दिए, जैसे जाने कहाँ गए वो दिन, छोड़ दे सारी दुनिया, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, मन्ना डे और महेंद्र कपूर, इन सभी दिग्गज कलाकारों के साथ कल्याण जी ने काम किया और इनकी बेहतरीन आवाज़ों में हमें बेहतरीन गीत दिए। ऐसा ही एक गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म कलाकार से।

कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार कल्याण जी की, जिन्होंने अपने सिने करियर में लगभग 250 फिल्मों को संगीतबद्ध किया और 4 दशक तक अपने जादुई संगीत से श्रोताओं को भाव विभोर करने वाले कल्याण जी 24 अगस्त 2000 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके गीतों की लोकप्रियता आज भी वैसे ही कायम है। आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर उन्हें याद करते हुए सुनते हैं उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ कार्यक्रम का ये अंतिम गीत किशोर कुमार की आवाज़ में है।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक कलाकार अब यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5 बजने को है, अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने मंगलुरु तट के पास एक समुद्री खोज और बचाव अभियान में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माथा से 6 मछुआरों को बचाया है। बल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कल खराब मौसम में इस नौका को नुकसान पहुंचने और उसमें पानी भर जाने के बाद सभी जीवित बचे लोगों को रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से बचाया गया। बल ने बताया कि जीवित बचे लोगों को चिकित्सा सहायता और स्थानीय अधिकारियों को सौंपने के लिए न्यू मंगलुरु लाया जा रहा है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए UPI सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में UPI के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने UPI की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल धीरज सेठ ने 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 4 दशकों से अधिक समय तक राष्ट्र सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल सेठ पुणे स्थित खड़कवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन प्राप्त किया था। लगभग 4 दशकों की अपने विशिष्ट सैन्य सेवा में उन्होंने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था ही मजबूत रक्षा क्षमताओं की नींव है। गुजरात के वडोदरा में आज वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा। भारत ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप पीड़ित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने चिकित्सा सहायता और आपात सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहा है। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। जर्मनी फीफा फुटबॉल विश्व कप से बाहर हो गया है। बोस्टन में नॉकआउट चरण में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनाल्टी शूटआउट में जर्मनी की ये पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम स्पॉटलाइट। रात 10 बजे आज आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी देहरादून की। शाम 5:10 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। पर्वतीय अंचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत में शाम 5:45 पर आज आप सुनेंगे परिचर्चा। प्रतिभागी होंगे डॉक्टर राकेश गैरोला, डॉक्टर कृपाल भंडारे और सुश्री निकिता खंडूरी। शाम 6:30 ये समय रहेगा प्रादेशिक समाचार का। गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे शाम 6:50 पर और प्रादेशिक समाचार कुमाऊनी में सुनिएगा शाम 7:30 पर। कार्यक्रम कृषि जगत में शाम 7 बजे श्री विजेश्वर प्रसाद से विकास चमोली की भेंटवार्ता का विषय रहेगा घराट श्रृंखला और जीर्णोद्वार कार्यक्रम। शाम 7:50 पर प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति सप्ताह सार। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 7:40 पर और रात्रि 8:30 पर। डॉक्टर राम विनय सिंह से रात्रि 8 बजे आज आप सुनेंगे संस्कृत वार्ता। विषय रहेगा संसदः जानाना आकाक्षण मंच। कार्यक्रम सुगम संगीत में सोनाली राठौर की गाई गजलें सुनिएगा रात्रि 8:15 पर।

रात्रि 9:30 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम परिचर्चा, भारत के निर्माण में संसदीय प्रक्रियाओं और संवाद की भूमिका। प्रतिभागी होंगे श्री अनूप वाजपेयी, श्री मुन्ना सिंह चौहान और कांजी निजामुद्दीन। प्रस्तुति होगी रमेश चंद्रा की।

10:30 पर श्रोता सुनेंगे अपने फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कल रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम स्पॉटलाइट और रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कार्यक्रम शैल संगीत में प्रातः 7:30 पर आप सुनेंगे ललित कुमार के गाए कुमाऊनी लोकगीत और कार्यक्रम लोक संगीत में सुबह 10:35 पर सुनेगा अनुराधा कौटियाल के गाए गढ़वाली लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आप सुनेंगे रोज की तरह ही सुबह 8:30 पर। कार्यक्रम सदाबहार के लिए भी आप सुन सकेंगे सवेरे 9:00। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे आप सुनेंगे प्रातः 10:02 पर और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे दोपहर 1:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। शाम के 5:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

0: हर मोड़ पर मिलती है जिंदगी की नई कहानी, बस जागती नजर हो तो आसान हो निगरानी।
1: इसीलिए सोचो समझो फिर आगे कदम बढ़ाओ, सजग रहो दोस्तों और हर पल मुस्कुराओ। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवानी में। हम हैं आपके होस्ट और दोस्त, मैं अतुल्या रावत
0: और मैं सनाली कठैत। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी आज की ये खूबसूरत शाम बहुत अच्छे से बीत रही होगी। वैसे अतुल्या, आज का ज़माना तो ऐसा है जिसने हर किसी को अपनी सराउंडिंग के प्रति अलर्ट, अवेयर, फॉर फोकस्ड रहने में ज़रूरी बना दिया है ना।
1: बिल्कुल सोनाली, और अब तो सिचुएशनल अवेयरनेस लाइफ स्किल का पार्ट है। अब दोस्तों, आपको ये नाम थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सिचुएशनल अवेयरनेस का मतलब है अपने सराउंडिंग्स को नोटिस करना, सिचुएशंस को समझना और ज़रूरत पड़ने पर सही डिसीजन लेना।
0: बिल्कुल, सुनने में तो ये इजी ही लगता है अतुल्या, पर आज की इस बिजी लाइफ में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस के साथ हम ना इस सिंपल सी हैबिट को भूलते जा रहे हैं। कितनी बार तो मैंने ही देखा है, कोई रोड क्रॉस कर रहा होता है लेकिन उनकी आंखें फ़ोन की स्क्रीन पर होती है। कैफ़े में फ्रेंड्स के साथ हम बैठे होते हैं लेकिन अटेंशन सारा रील्स और शॉर्ट्स पर होता है ना।
1: हाँ हाँ सोनाली, और कितनी बार तो लोग कान में एयरफोन्स लगा कर ड्राइव कर रहे होते हैं या बिजी रोड पर चल रहे होते हैं, मतलब इतना लाउड म्यूजिक कि आसपास क्या हो रहा है उसका उन्हें आइडिया ही नहीं होता। लेकिन पता है, प्रॉब्लम मोबाइल नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हमने अपने सराउंडिंग से डिस्कनेक्ट होने हो गए।
0: बिल्कुल अतुल्य, और पता है सिचुएशनल अवेयरनेस ना हमें ये नहीं सिखाती कि हमें हर समय डर में रहना चाहिए, या सिर्फ हमें इतना बताती है कि जो ऑब्जर्वेशन है और अवेयरनेस है अपनी सराउंडिंग को लेकर वो कितनी ज़रूरी होती है।
1: बिल्कुल सुनाली, और पब्लिक प्लेसेस के लिए ही नहीं, कॉलेज जाते वक्त, कैब बुक करते वक्त या ऑनलाइन शॉपिंग और सोशल मीडिया यूज़ करते हुए भी हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है।
0: सही कहा अतुल्य, ऑनलाइन वर्ल्ड में भी अवेयरनेस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी रियल वर्ल्ड में। याद रखिए दोस्तों कि हर अट्रैक्टिव लिंक जेन्युइन नहीं होता, हर प्रोफाइल रियल नहीं होती और हर मैसेज ट्रस्टवर्दी नहीं होता।
1: और सोनाली, तुम्हें पता है कभी कभी हमारा इंस्टिंक्ट हमें सिग्नल तो देता ही है ना।
0: बिल्कुल
1: अगर
0: बिल्कुल।
1: किसी जगह से या किसी व्यक्ति के प्रति आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं दोस्तों, तो उस फीलिंग को लाइटली मत लो। हो सकता है सब नॉर्मल हो, लेकिन आप अगर आप सेफ ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें कोई बुराई भी तो नहीं है ना।
0: बिल्कुल, और दोस्तों वो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंट रहना, क्योंकि जब आप किसी सिचुएशन में प्रेजेंट रहते हैं तभी आप नोटिस कर पाते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है। सिचुएशनल अवेयरनेस आपको कॉन्फिडेंस भी देती है, जब आप अवेयर होते हैं तो आप पैनिक भी कम करते हैं।
1: जी हाँ, और आप डिसीजन भी बेटर लेते हैं,
0: बिल्कुल
1: और इमरजेंसीज में सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरों की भी हेल्प कर पाते हैं दोस्तों। और हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में ज़रूर रह रहे हैं दोस्तों, इसमें स्मार्टफोन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है पर्सन का स्मार्ट होना।
0: बिल्कुल, इसीलिए स्टे अलर्ट, स्टे अवेयर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टे सेफ। चलिए दोस्तों, अब बातों का ये सिलसिला तो जारी रहेगा लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत फिल्म वेलकम टू द जंगल से आनंद राजानंद और रुबाई की आवाज़ में।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: यार BBA MBA तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
4: मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
3: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
4: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की BBA और MBA शिक्षा किफायती फीस पर।
3: और परिणाम?
4: UTU 2025 का MBA सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
3: वाह, ICM देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
5: दोस्तों, आज है मंगलवार, यानी वो दिन जब हम आपके लिए लेकर आते हैं भेंट वार्ता का हमारा एक खास सेगमेंट। और इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे दिव्यांग पर्वतारोही श्वेता कुमारी से सोनाली कठेट की ये बातचीत। चलिए सुनते हैं।
6: दोस्तों, आज के हमारे भेंट वार्ता के खास सेगमेंट में हम मुलाकात करेंगे जो जोंगो शिखर फतेह करने वाली दिव्यांग पर्वतारोही श्वेता कुमारी जी से। सबसे

0: तो श्वेता जी, आपका आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: श्वेता जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जीवन कैसा रहा है, आप कहाँ से हैं, क्या क्या आपने पढ़ाई करी है और माउंटेनियरिंग जैसा साहसी सपना कैसे आपके दिल में आया?
1: जी, मैं दिल्ली से हूँ
0: जी,
1: और मेरी पढ़ाई एक स्पेशल स्कूल में हुई है, ब्लाइंड स्कूल, जो कि दिल्ली में राष्ट्रीय बिरजानंद है
0: जी।
1: देन उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन देन लॉ ये सब चीज किया है डीयू से। और माउंटेनियरिंग फील्ड में आने का सपना, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, वो बीएसएफ में जॉब करते हैं, तो शुरू से ही उनके मुंह से स्ट्रगल वाली लाइफ सुनी है। उनका ज्यादा जीवन पहाड़ों पे, जंगलों पे रहा है, उस पर लाइफ कैसे सर्वाइव करते हैं, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, तो वहीं से कहीं ना कहीं मेरे मन में छोटे से ही सुनते आ रही थी, ऐसा था कि मुझे करना है, तो वहीं से मेरे मन में ये चीज कहीं ना कहीं पनपा
0: जी। और किन परिस्थितियों का आपने सामना किया, ऐसा एहसास आपके अंदर कब आया कि जो मेरी कंडीशन है वो मुझे एक जगह तक सीमित नहीं रख सकती?
1: छोटे से ही जब बहुत सारे लाइफ में स्ट्रगल आ रहे थे, जैसे कि मैं लेट ब्लाइंड हूँ, तो जब मैं उन सब चीज से बाहर निकली, जब मैंने अपना जो भी पढ़ाई के फील्ड में हुआ था वो मैंने अचीव किया, देन उसके बाद स्पोर्ट्स किया, तो मैं धीरे धीरे उस चीज को लड़के, क्योंकि हर स्टेप पे, हर लेवल पे मेरे लिए था कि चैलेंज है, स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर हर चीज में, तब मुझे लगा कि जब मैं हर चैलेंज को फेस करके जब मैं आगे आ सकती हूँ, तो क्यों ना मैं कुछ अलग हटके करूँ। शुरू से रहा है कि कुछ हटके करने पे फिर जो वो सबका प्यार और सबका सम्मान मिलता है ना, उस चीज की आदत हो गई।
0: जी। और फ्रेंड्स और फैमिली की अगर हम बात करें तो उनका सपोर्ट कैसा रहा है आपके लिए?
1: फैमिली का तो शुरू से ही सपोर्ट रहा है मेरे पेरेंट्स का, अभी तक जो भी हूँ मैं उनकी वजह से ही हूँ। बस कहीं ना कहीं मैम आपको ही पता है कि हर एक पेरेंट्स के मन में, माता पिता के होता है कि बच्चा बहुत प्यारा है और उसको नहीं बाहर जाएगा, ये सब चीज करेगा, ऑलरेडी थोड़ा सेंसिटिव हूँ मैं क्योंकि बीमारी की वजह से ऐसा हो गया, तो अंदर उनको पता था कि मैं ये कर लूंगी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनको भी पता है कि ये कर लेगी, लेकिन वहाँ जाने देने से थोड़ा रुकावट तो मैम हमेशा ही मुझे मिली, जिद करके ही हमेशा बाहर जाना पड़ा है कि ठीक है मुझे करने दो, या करके प्रूफ करके दिखाया है तब जाकर मुझे आगे का रास्ता मिला है। लाइफ में मेरे बहुत कम दोस्त रहे, मैं अपने आप को ही बनाने में ही इतना बिजी रहती थी, तो कहीं ना कहीं शायद दोस्त भी मेरे से बिछड़ गए। कभी भी हम कुछ अलग करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं, हमें सबका सामना करके निकलना होता है, सबकी बातें, कुछ करने जाओगे अलग सबकी बातें भी सुननी पड़ती है, तो इन सब चीज के चक्कर में मेरे बहुत कम दोस्त रहे। माउंटेनियर के लिए तो फ्रेंकली स्पीकिंग किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया, ये बहुत सडन हुआ, किसी को पता भी नहीं था।
0: तो आपका जो ये सफर रहा है श्वेता जी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, क्या आपने कहीं ट्रेनिंग ली है?
1: नो मैम, अपने आप में ये फील्ड ऐसा है कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत ही है, और ऑब्वियसली हम लोगों के लिए, क्योंकि हम कुछ भी नहीं देख पा रहे, हम डिपेंड है बिल्कुल कि कोई हमें एक स्टेप बताए। और पहाड़ पे तो ऐसा है कि आपको वहां पर रॉक भी मिल रहा है, बर्फ, आइस, नदी का पानी सब मिल रहा है, तो मैंने बहुत ट्राई किया जिसके लिए, जैसे बीएमसी कोर्स होता है, फंडामेंटल कोर्स जिसे कहते हैं, बट मेरा दुर्भाग्य कहे या जो भी कहे कि अब तक मुझे करने का चांस नहीं मिला। बहुत ट्राई किया मैंने, बहुत जगह मेल किया, या फिर मैंने फिर सोचा कि चलो बीएमसी इन सबके लिए चांस नहीं मिल रहा है क्योंकि डिसेबल की पॉलिसी नहीं है, पीडब्ल्यूडी का कोई सेशन आएगा तभी मिलेगा, फिर मैंने हाथ बढ़ाया नॉर्मल ट्रैकिंग के लिए, क्योंकि मेरे अंदर जुनून ऐसा आ गया था कि मुझे भी देखना था कि पहाड़ पे चल के लगता कैसा है, क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ ज्यादा ही फॉलो कर लिया इस फील्ड में, ज्यादा मैं सोचने लग गई, तो मुझे सपने में दिन रात बस यही था कि मुझे भी करना है करना है, तो मैंने ट्रैकिंग के लिए भी बहुत जगह हाथ बढ़ाया। फिर मई में ही ये IMF है दिल्ली में, यहाँ पर एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का कोर्स था जहाँ पर मुझे अंकित कुमार भारती जी मिले, इंटरनेशनल माउंटेनियर हैं, तो उनसे ही मैंने ये बात बताई और पता नहीं क्यों एक अंदर से फील हुआ कि हाँ अब शायद मैं सही जगह पे हूँ, और उन्होंने भी मुझे विदाउट, मतलब जैसे कहते हैं ना, एनी हेजिटेशन, जैसे बाकी सारे टाइम ले रहे हैं ठीक है सोचेंगे करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं बोला, तब उनका मुझे साथ मिला, तब उन्होंने मुझे छोटे ट्रैक से स्टार्ट कराया, क्योंकि मैम अब तक से मैं बोल रही थी, क्योंकि मैम बोलना और करना बहुत डिफरेंस है, तो उन्होंने मुझे सुरकंडा देवी ट्रैक से स्टार्ट कराया, और देन उसके हमने दलाई हिल किए, फिर हमने जॉर्ज एवरेस्ट किया, वो सीधे मुझे वहीं ले गए जहां से सर जॉर्ज जी ने बैठकर एवरेस्ट की खोज की थी, एक तरह से मुझे मोटिवेट करने के लिए, और बताना उन्होंने मुझे सारी वर्बली ट्रेनिंग दी, प्रैक्टिकली थ्योरी, मैं सारा क्लासरूम से लेकर सारा कुछ, के बाद उन्होंने फिर मुझे द्यारा बुग्याल कराया उत्तराखंड में, जो कि 6 दिन का ट्रैक है, उन्होंने मुझे 2 दिन में कराया, तब जाकर कॉन्फिडेंट आ गया कि ठीक है हम कर सकते हैं, उनको भी लगा ठीक है चलो अब डबल चलो, वो 3700 मीटर समथिंग का था, तब सर मुझे जोजोंगो जो पीक 6220 मीटर है लेह में वहां ले गए, देन उस बीच में हमने कांगडोला पास है जो कि 5 5,200 मीटर है वो भी दो बार पार कर। 15 से 20 दिन का ट्रैक होता है एक नॉर्मल के लिए, सर ने मुझे 5 दिन में कराया। और इस बीच में मैम चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा है अगर मैं बताना चाहूँ तो।
0: जी बताइए क्या क्या क्या क्या फेस करा आप लोगों ने।
1: जैसे मैम फर्स्ट मेरे लिए वो था कि जाते वक्त 20-25 बार वहां पर नदियां थी जो कि डायरेक्ट ग्लेशियर से बर्फ पिघल के आ
0: जी,
1: रही
0: जी,
1: है
0: जी, हाँ जी।
1: वहां मुझे शूज उतार के रात के 8 बजे भी चलना पड़ रहा है। बीच में ऐसा हुआ कि मेरे पैर सुन हो गए, बाकी जो देख पा रहे थे वो जंप करके चले जा रहे थे, मुझे तो वो क्रॉस करना। और मैम दूसरे बार में ही ऐसा हुआ, सर ने मुझे बोला कि करो, मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पर चल नहीं सकते थे दोनों। मुझे मैम अच्छे से याद है कि मैं बीच नदी में खड़ी हूँ और मैं बहुत तेज चिल्लाई क्योंकि नदी का पानी सब इतना सारा शोर, और मतलब मैं इतना डर गई क्योंकि मैं मुझे नहीं पता लेंथ कितनी है क्या नहीं, मुझे था कि मैं गई तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैं बहुत तेज चिल्लाई कि सर मेरे से नहीं होगा। सर ने बहुत तेज चिल्लाया, अरे होगा तुमसे। तो सर का ये होगा लिटरली मुझे 50 बार वो नदियां क्रॉस कराया। और मैम आते वक्त उस नदी में बाढ़ आ गई, ऐसा हुआ कि वो बाढ़ इतना ज्यादा था उसमें इतना करंट था कि वो मेरे पैर को हवा में उठा दे रहा था। वो मैम मेरे लिए बहुत डरावना था, बहुत डरावना। और बीच में ऐसा था कि मैं बहुत बार रोई। ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, इसीलिए पड़ती है कि एक चीज, जब सर ने मुझे ग्लेशियर में चलाया, सर मेरे लिए रास्ता बना रहे हैं चला रहे हैं, वो मेरे से हो नहीं रहा है, मैं फिसल रही हूँ रो रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत पैरों की पावर चाहिए, वो सब फील किया। और देन जब 100 मीटर रह गया था उस टाइम पे मेरे मतलब मेरी जुबान नहीं कह रही थी कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी पूरी बॉडी कह रही थी कि मेरे से नहीं हो पाएगा उस टाइम पे, क्योंकि पूरे रास्ते सर की बॉडी लैंग्वेज को फॉलो करना, बातों को फॉलो करना कि लेफ्ट पैर रखो राइट पैर रखो ऐसे करो वैसे करो, वो सब वहां पर जाकर एक तरीके से छूट गया क्योंकि मैं फॉलो नहीं कर पा रही थी। इतनी हाइट पे जाने के बाद ना मेरी मेरे जो कान थे जो मेरे सेंसेस थे वो सर की बातों को सुन नहीं रहे थे। मैंने खुद वहां फील किया कि मुझे कुछ देर के लिए मैं वहां थी लेकिन होकर भी नहीं थी। ऐसा था कि मैं तेज तेज वहां रोई भी हूँ लेकिन लिटरली सर ने मुझे बहुत अच्छे से फिर संभाला ले गए। और लास्ट का जो पीक था उस समय सर को भी पता चल गया कि अब ये नहीं है अपने सेंस में, तो सर ने मेरे हाथ से ट्रैकिंग पोल लेके रखा और जैसे बोला कि बंदर क्लाइंब करता है मुझे थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए रॉक क्लाइंब वैसे करो, और पूरा सर ने मुझे लेफ्ट राइट बस बोला। मैंने पूरा क्लाइंब कर करके जब मैं फाइनली मैं पीक सबमिट किया, मैं खड़ी हूँ, सब मुझे बोल रहे हैं कि अब हो गया अब नहीं है। 5-10 मिनट तक मैं मेरे अंदर से अभी भी वो डर गया नहीं था, मतलब मुझे वापस उस पोजीशन में एक नॉर्मल पोजीशन आने में ना 5-10 मिनट लग गए।
0: जी, और इतनी सारी कठिनाइयों के बाद भी आपने फतेह करा, बहुत बड़ी बात है, सच में बहुत बड़ी बात है। आप इंस्पिरेशन भी है लोगों के लिए, और इसी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है।
1: मेरी इंस्पिरेशन फर्स्ट तो मेरे शुरू से मेरे पापा रहे हैं, जिस कठिनाइयों के साथ वो रहते हैं तो वो सुन के अपने आप में बहुत ज्यादा रहा है। दूसरा कि मैं एक ब्लाइंड स्कूल में पढ़ी हूँ हॉस्टल में, तो मेरा इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं वो पूरा एक माहौल, वो जितने भी वहां पर डिसेबल थे और वो माहौल ऐसा था कि लोग मतलब खुद नहीं देख पा रहे हैं खुद ऐसे, फिर भी आपको एक दूसरे को कैसे संभाल रहे हैं। डिप्रेशन में चले गए थे 6-7 साल पूरा जब मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उन सब ने मिलके मुझे निकाला। फील हुआ कि मेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है क्योंकि डेट टाइम में मैं लो विजन थी, मैं बाद में टोटली ब्लाइंड हुई, तो मैं यही सोचती थी कि मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत देख पा रही हूँ, मतलब अपने कपड़े पहचान ले रही हूँ कलर पहचान ले रही हूँ ये सारी चीजें, और ये तो लाइट तक नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी ये कैसे मेरा सहारा बन रहे हैं। बाकी सबका वहां पर कोई पेरेंट्स नहीं था, मैं हॉस्टल में रही हूँ, सब एक दूसरे को संभाल रहे हैं, तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हुआ जो कि मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाल के लेकर आया, और आज मैं खुद वही लाइफ जी रही हूँ क्योंकि अब आज मैं भी टोटली ब्लाइंड हूँ।
0: आपके अनुसार अगर कोई माउंटेनियरिंग करना चाहे तो उसके अंदर क्या जज्बा होना चाहिए?
1: जज्बा यही होना चाहिए कि बीच में गिव अप ना करे
0: जी।
1: जो भी चीज है ना एक जुनून होना चाहिए कि ठीक है अब करना है तो करना है। माउंटेनियर रियल माउंटेनियर वही कहलाता है, ऐसा ना हो कि हम 4 लोगों को देखकर जोश में, जैसे आजकल लोग होते हैं ना जोश में स्वैग में चल देते हैं, अच्छा ठीक है ये है हम तो चढ़ लेंगे, लेकिन मैम ऐसा नहीं है, पहाड़ अच्छे अच्छे की औकात दिखा देता है झुका देता है क्योंकि मैंने खुद फील किया है। तो यही है कि जिस जज्बे से आप फर्स्ट स्टेप रख रहे हो उसी जज्बे से आपका आखिरी स्टेप भी होना चाहिए। कुछ देर तो मुझे आने में ही वहां से अपने होश में आने में टाइम लगा, और जब वो कि मैं देख तो सकती नहीं, मुझे अंकित सर ने सब बताया फिर चारों तरफ का माहौल कैसा है, यहाँ से ये दिख रहा है वहां से ये दिख रहा है, तो मेरे लिए वो था कि मैं उसमें फील करूं सुनूं फील करूं मेरे सेंसेस, जब वो स्नोफॉल हो रहा था तो वो मेरे बॉडी पे इतनी ऊंचाई से गिर रहा है तो वो कैसा फील हो रहा है, वहां की हवा ऑक्सीजन, मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हुआ। ऐसा लगा कि मैंने कुछ तो डिफरेंट किया अपने लाइफ में, फाइनली मैंने अब तक मैं इतने सालों से कुछ अलग करना चाहती थी और मैं कुछ ना कुछ कर भी रही थी पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, लेकिन उस पीक पे पहुंच के लगा कि मैंने फाइनली अब जाकर अपने लाइफ में कुछ डिफरेंट किया।
0: जी श्वेता जी, हमारे युवा साथी जो सपना देखते हैं पर्वतों की ऊंचाई तक जाने का, उन्हें आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: उन्हें मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया बीएमसी इन सब कोर्स के लिए आई नो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके भरोसे ही आप ना बैठो। अगर आपको नहीं मिल रहा उसका चांस, बहुत लोग होते हैं कि एक साल पहले अप्लाई कर देते हैं कि एक साल का टाइम होता है, दो दो साल का टाइम होता है, लेकिन रियल में अगर आप क्लाइंबर बनना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे ट्रैक से स्टार्ट करो। जो चांस मिले वहां पर आप जाओ, जिसके चांस मिले, जिसके साथ मिले, टीम के साथ मिले, दो लोगों के साथ भी मिले, तो आप एक्सक्यूजेस मत दो, अरे नहीं हम तो, हमारे पास तो टेक्निक नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। आप एक बार निकलो घर से अगर रियल में आप करना चाहते हो तो, छोटे से स्टार्ट करो, क्योंकि हम छोटे छोटे स्टेप से चढ़ के छत तक पहुंचते हैं।
0: जी श्वेता जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपनी जर्नी के बारे में हमें बताने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता का हमारा खास सेगमेंट। चलिए अब पेश करते हैं आपके लिए ये गीत फिल्म कॉकटेल 2.0 से कविता सेठ और नीरज श्रीधर की आवाज़ में।

0: यार बीबीए एमबीए तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
1: मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
0: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
1: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की बीबीए और एमबीए शिक्षा किफायती फीस पर।
0: और परिणाम?
1: यूटीयू 2025 का एमबीए सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
0: वाह, आईसीएम देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
2: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
3: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
4: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
3: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
5: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce.

0: and more. Choose from 100+ AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply at upes.ac.in.
1: दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जिसने पिछले 6 दशकों से हजारों युवाओं को सिर्फ माउंटेनियरिंग ही नहीं बल्कि जीवन जीने का अलग नज़रिया भी दिया है और उसका नाम है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग।
2: जी हाँ दोस्तों, हमारा अपना NIM जो हमारे उत्तराखंड के खूबसूरत शहर उत्तरकाशी में स्थित है और इस बात से तो आप भी अग्री करेंगे कि अगर हिमालय को एडवेंचर की सबसे बड़ी अकेडमी कहा जाए तो NIM उसकी सबसे प्रतिष्ठित क्लासरूम है।
1: बिल्कुल दोस्तों, हर महान संस्थान की शुरुआत एक बड़े विचार से होती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मानना था कि हिमालय केवल भौगोलिक सीमाएं नहीं है बल्कि साहस, आत्मविश्वास और राष्ट्र की शक्ति के प्रतीक हैं। वो चाहते थे कि भारत के युवाओं में एडवेंचर, डिसिप्लिन और लीडरशिप की भावना विकसित हो और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 14 नवंबर 1965 को NIM की शुरुआत की गई।
2: बिल्कुल अतुलिया, इसीलिए NIM का उद्देश्य था भारत में माउंटेनियरिंग को साइंटिफिक ट्रेनिंग, मॉडर्न टेक्निक्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ विकसित करना। बल्कि उत्तरकाशी को NIM का घर इसलिए चुना गया क्योंकि ये गंगोत्री रीजन और गढ़वाल हिमालयस के बेहद पास है।
1: लेकिन दोस्तों, जब हम माउंटेनियरिंग शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ ऊंचे पहाड़ और बर्फीली चोटियां आती हैं, जबकि सच ये है कि पर्वतारोहण पेशेंस, प्लानिंग, टीम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी नाम है। NIM अपने ट्रेनिंग्स को यही सिखाता है कि किसी भी एक्सपीडिशन की असली सफलता केवल समिट तक पहुंचना नहीं बल्कि पूरी टीम को सुरक्षित वापस लौटना।
2: हाँ तुल्या, और अगर हम कभी NIM के कैंपस में जाएं तो आपको ये किसी मिलिट्री अकेडमी से कम नहीं लगेगा। यहाँ सुबह की शुरुआत होती है फिजिकल ट्रेनिंग और एंड्योरेंस एक्सरसाइज से दोस्तों, जिसके बाद रॉक क्लाइंबिंग, रिवर क्रॉसिंग और रेस्क्यू ऑपरेशंस जैसी एक्टिविटीज की प्रैक्टिस कराई जाती है।
1: और सोनाली, हर दिन ट्रेनिंग अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ को भी तो विकसित करते हैं ना। दोस्तों, NIM अलग अलग स्तरों के लिए कई कोर्सेज आयोजित कराता है जिसमें बेसिक, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्सेज, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस जैसे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स।
2: और सबसे अच्छी बात तो ये लगती है अतुलिया मुझे कि NIM अपने ट्रेनीज को सबसे पहले पहाड़ों का सम्मान करना सिखाता है। यहाँ एक प्रिंसिपल बार बार दोहराया जाता है कि लीव नो ट्रेस, यानी कि जहाँ भी आप जाएं वहाँ प्रकृति को वैसे ही छोड़कर वापस लौटें।
1: बिल्कुल, जिसका मतलब है कि जहाँ आप जाएं वहाँ प्लास्टिक वेस्ट ना छोड़ें, जल स्रोतों को सुरक्षित रखें और पेड़ पौधे और वाइल्ड लाइफ का सम्मान और एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना एडवेंचर करें। और आज जब क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने जैसी चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, तब ये सोच पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती गई है।
2: बिल्कुल दोस्तों, पहाड़ हमें बताते हैं कि ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जल्दबाजी नहीं बल्कि धैर्य चाहिए। पहाड़ आपका व्यक्तित्व नहीं बदलते बल्कि आपके अंदर की छिपी ताकत को बाहर लाते हैं।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी एडवेंचर का जुनून है, नेचर से प्यार है और अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को नई चुनौतियों में आजमाना चाहते हैं तो NIM केवल एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि एक ऐसी जर्नी है जो आपको सोच, आपका कॉन्फिडेंस और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और इसी के साथ चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं गीत फिल्म नवाबजादे से, आवाज दी है गुरु रंधावा ने।

0: दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं हम उस फाइटर जेट की जो सिर्फ आसमान में उड़ता नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं LCA तेजस की, एक ऐसा स्वदेशी लड़ाकू विमान जो भारत की इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का शानदार उदाहरण है।
1: दोस्तों, तेजस भारत का पहला स्वदेशी रूप से बनाया गया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे बनाने की जिम्मेदारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के पास थी और इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किया था। फिर इसका नाम तेजस रखा गया, जिसका अर्थ है प्रकाश, ऊर्जा और तेजी।
0: जी हाँ, और इस परियोजना की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। और पता है सोनाली, किसी भी आधुनिक फाइटर जेट को बनाना आसान नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: इसमें एरोडायनामिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल, कंपोजिट मटेरियल्स और एडवांस वेपन इंटीग्रेशन जैसी कई जटिल तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। और यही वजह है कि तेजस को तैयार होने में भी कई साल लगे।
1: बिल्कुल दोस्तों, तेजस का उद्देश्य था इंडियन एयरफोर्स के पुराने MiG-21 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करना और भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना।
0: बिल्कुल सोनाली, और तेजस है भी तो शानदार। ये एक सुपरसोनिक यानी ध्वनि की गति से भी तेज उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान है। इसमें एक ही पायलट उड़ाता है और ये हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री टारगेट्स पर अटैक करने में भी सक्षम है।
1: और इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें आधुनिक डिजिटल फ्लाई बाय वायर नियंत्रण प्रणाली भी है। साथ ही ये एक सिंगल इंजन मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो यानी कि ये सिर्फ एक तरह के मिशन नहीं बल्कि कई प्रकार के ऑपरेशंस में काम आ सकता है।
0: और दोस्तों, जब हम तेजस की बात करते हैं तो हमें सिर्फ एक फाइटर जेट ही नहीं दिखाई देता, हमें दिखाई देती है वर्षों की रिसर्च, हजारों वैज्ञानिक और इंजीनियरों की मेहनत, लाखों वर्किंग आवर्स और एक ऐसा सपना जिसे भारत ने अपने दम पर साकार किया।
1: बिल्कुल, तो इसी के साथ दोस्तों, वक्त हो गया है आपको एक बढ़िया सा म्यूजिकल ट्रैक सुनाने का। तो चलिए मूड को लाइट करते हैं और सुनते हैं ये गीत फिल्म शोर इन द सिटी से श्रेया घोषाल और तुची रैना की आवाज में।

0: दोस्तों आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें खत द्वारा बता सकते हैं। हमारा खत लिखने का पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून हरिद्वार बाईपास रोड निकट ट्रस्ट पनापुल और हमारा पिन कोड है 2480।
1: साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं दोस्तों। हमारी ईमेल आईडी है youth@gmail.com और आप अपने विचार व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। अपना ख्याल रखें दोस्तों। आज के लिए हमें यानी सोनाली और अतुल्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं पर्वतीय अंचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत सुनला सभी श्रोताओं थे सविता बर्थवाल का छोड़ बटे नमस्कार सेवसौंदी। श्रोताओं आप स्वस्थ और मस्त वाला यही कामना हम सदनी भगवान वज्र विशाल से कर दें। जन के आप सब जन दें कि अषाढ़ो महीना लग गया, लेकिन जो मानसून चा अभी धीरे धीरे आनो चा और कखी कखी तो खूब आज तो भैर दिखण भी मिले कि खूब दड़कताल बरखा आया, लेकिन वहीं बर्फ से क्या हो कि उमस ज़्यादा बढ़नी चाह और उमस से क्यों होना चाह कि उबरी ताती धरती में अगर पानी पुल लो तो उबाली मर्द, तो वे से क्यों होना चाहिए कि हमारे जो स्वास्थ्य पर चे वे को बुरा असर पड़ दे, क्योंकि एकदम से जब गर्मी बढ़ दा तो हमारे शरीर ठंडू चीज़ें थे मंगत जन ठंडू पानी हुए गए ठंडी चीज़ हुए गए और हम तभी इन चीज़ों को ध्यान नहीं देने कि अब भी गर्म छोर अब भी ठंडू निकल, वैसे क्यों कि हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ दे और सर्दी जुकाम गौलम पीड़ा बहुत सारी समस्याएं हुई दिन, तो यूँ सबको हम ध्यान रखना क्योंकि यू मैंने इन हूँ कि तड़बड़ तड़बड़ तड़बड़ उबरी बरखा और उबरी चटकता दू घाम, एक हम तुम थे बरखा दिखा ली और पोरुम चटकता दू घाम लगन, क्योंकि पर्यावरण में भी कखी न कखी हेर फेर हो गया आया पहले के ऊँचो कि सरा एक जगह बरखा ऊँचे तो बरखा एक एरिया में दिखने को मिल छे, अब बहुत सालों बटे मैं भी दिखना चाहूँ कि कखी में बरखा होने चाह जरा दुई कदम पोरू मिटने तो खूब चटकता दू घाम लगे छे, तो कखी न कखी यू लगनों कि हमारे पर्यावरण से जो हमारो मानसून च वे में कख न के एक असर देखने को मिलना चाहिए, जो हमारा डाली बूटे छे ना वो कम होगी ना और जख्म डाली बूटे जो भगेनों को लगाए छे ना बरखों को वो भी उखमी आना चाहिए, तो यूँ चीज़ों का हम सब ले ध्यान रखना ये मौसम में अपने स्वास्थ्य को अपनों को स्वास्थ्य को सबको ध्यान रखना और ठंडी चीज़ों को कम से कम हो बल्कि कनी नीच जन फ्रिजो पानी वे गए यूँ चीज़ों को सेवन नहीं करना, क्योंकि ये से क्यों उनकी जो हमारे शरीर और ताप होंदा वो घट दो बढ़ दो, तो वैसे क्यों होता कि हमारा स्वास्थ्य पर वे को बुरा असर पड़ दें, तो श्रोताओं आप बुनावला कि छुई बती लगौनी चाह आज आप थे कार्यक्रम का बाबत बता दें अपनी पोटली खोल के ही आप को लया छे हमारा खूब सारा रंत रहबार और चर्चा कर ला हम कुछ विषयों पर आपक वास्ते लय छे एक परिचर्चा, परिचर्चा को विषय छे आजकल की शिक्षा व्यवस्था सुधार का प्रयास, आज का हमारे मेहमान छिन डॉक्टर राकेश चंद्र गैरोला डॉक्टर कृपाल भंडारी और सुश्री निकिता खंडूड़ी, संचालन का नाचिन हमारे सहयोगी विनय ध्यानी, तो घड़ेक में सुनौला आप तो सुनौला सुंदर सुंदर गढ़वली कुमाऊनी जौनसारी गीत का ठुमका और सुंदर सुंदर गीत, लेकिन वे से पहली जन हम बात करना छा मौसम की मानसून की, क्योंकि भूल बटे नान तीनों का स्कूल भी खुलना छा और मानसून अक्सर तभी होता

दलों पुर्दा तो कम से कम छतुल रालो तो वे छतुल का सारा वो अग्नि आला भिगलना और बीमार नहीं पड़ला। तो यूँ सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना और अपना बच्चों थे यो भी सिखाना कि बर्खा का पानी माँ जल्दी से भिगड़ भी नहीं, क्योंकि शरीर तो चुनौंदा और एकदम से बर्खा बूंद पड़ देना तो वहाँ भी बीमारी बढ़ देन। तो श्रोताओं छुई बत हम अग्नि भी लगौला, लेकिन वे से पहले आप तो सुनौला अपनी पसंद को एक गीत जामा स्वर दियों च मनमोहन बदाने को। तो लिया सुना आप यू सुंदर सी गढ़वली गीत।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख, दो तरीके हैं। पहला आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
6: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
7: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
8: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
9: रविवारों से पहले आप सुनना चाहिए मनमोहन बदाणी का सुर में सुंदर सी गढ़वाली गीत। तो श्रोताओं, अब आप को पैटर्न है परिचर्चा जय को विषय च आजकल की शिक्षा व्यवस्था सुधार का प्रयास। आज का हमारे मेहमान छिन डॉक्टर राकेश गैरोला, डॉक्टर कृपाल भंडारी, सुश्री निकिता भंडारी और संचालन का नाचिन हमारे सहयोगी विनय ध्यानी। तो लिया सुना आप यह परिचर्चा।
10: श्रोता भाई बंधु नमस्कार, मैं हूं विनय ध्यानी और आज एक परिचर्चा जय को विषय च आजकल शिक्षा व्यवस्था और सुधार का प्रयास। ये माँ प्रतिभा खनकुणी हमन आमंत्रित कराया छन सुदूरवर्ती क्षेत्र देवाल बिटकी डॉक्टर कृपाल भंडारी और SERT बिटकी डॉक्टर राकेश गैरोला और एक इन्हें विद्यार्थी जो कि अपना भविष्य का सपना भी देखने च पढ़ने विच सुश्री निकिता खंडूरी। स्वागत सभी बहन बंधुओं को, मेहमानों को और जो सुनदरा हमारे दगड़ छन। आजकल शिक्षा व्यवस्था तो हम कई रूप में समझा पैल तो यह बात आंद कि कई बात हिटनी चे हमारी जो शिक्षा व्यवस्था च। डॉक्टर भंडारी,
11: आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था च, ये शिक्षा व्यवस्था में जो पहली शिक्षा व्यवस्था छ एक जो प्रवृत्ति थी रटने की प्रवृत्ति, और आजकल कखी न कखी जो नई नई तकनीक को प्रयोग होनु च, ये माँ AI तकनीक आएगी और प्रकार का तकनीक आएगी, तो पहले की परंपरागत जो शिक्षा व्यवस्था थी वह माँ रटनों को ज़्यादा अध्ययन होना, और अब वाल शिक्षा व्यवस्था में लगातार व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव पर आधारित और कुछ कौशल और तकनीक पर आधारित आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था थी। और एक प्रावधान भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 में भी करी थी, और बहुत हद तक ये शिक्षा व्यवस्था को जो नीति तो बनी छन, पर ये नीति में आज भी जो शिक्षा व्यवस्था छे और जो ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय छन स्कूल छन वो तो आज भी नई शिक्षा नीति बहुत दूर थी, कुछ दूर थी। हालांकि जो व्यक्तिगत शिक्षा थी प्राइवेट स्कूल्स थे वो माँ शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छा प्रयोग लोग करना छन, पर ग्रामीण शिक्षा की यदि हम बात करा तो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में ये जो नई शिक्षा नीति थी, चाहे वह माँ भाषा को प्रयोग से, चाहे वह माँ नई तकनीकी को प्रयोग से, आज हमारा स्कूलों में स्थिति ये छे कि सरकारें तो करे कि नई शिक्षा नीति में कंप्यूटर शिक्षा छे जनी, और बहुत सारा स्कूल एन छे हमारे एक बैठने की ठीक व्यवस्था नहीं छे, तो कंप्यूटर शिक्षा तो कोसों दूर छे। और यदि पूरा ढांचागत व्यवस्था नई शिक्षा नीति का अनुसार हो जाओ तो बहुत अच्छा प्रयास नई शिक्षा नीति में छे, और व्यवहारिक ज्ञान पर, तकनीकी पर आज यानी व्यावसायिक शिक्षा को प्रयोग, कक्षा 7-8 बिटिन व्यावसायिक शिक्षा को प्रावधान करी, मातृभाषा शिक्षा को प्रावधान करी छे, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रावधान नई शिक्षा नीति में छन। लेकिन यू शिक्षा नीति तभी बहुत बढ़िया प्रभावी हो सकती जबकि हमारा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक भी शिक्षा नीति अपनाने को प्रयास करे जाओ, और शिक्षा का क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन तभी हो सकते। आज हमारा विद्यालय अधिकतर विद्यालय मुखिया विहीन छन। हमारा विद्यालय में आज अगर हम प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की बात करा या प्राथमिक शिक्षा की बात करा तो 98% विद्यालयों में आज भी हमारा प्रधानाचार्य नहीं छन।
10: यूं पर एथर भी हम चर्चा कर ला और यहीं खातिर यह परिचर्चा हो रही कि हम विभिन्न बिंदुओं पर बात कर ला। आपन बताए कि शिक्षा में उत्तर उत्तर वृद्धि हुए, शिक्षा को स्वरूप बदलनु, नए शिक्षा नीति आण से बहुत जो भविष्य छे हमारा विद्यार्थियों को हमारा स्कूलों को हमारे शिक्षा व्यवस्था को भविष्य बहुत सुंदर छे। लेकिन अगर पैतरा छोड़ हेरला हम तो बोले जान चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा पहली गुरु जी ते देखे डेर लगे छाए हम ते और वे जमाना का पढ़ाया जो विद्यार्थी छन वो आज कुजनी कखर कख पहुँच गए तो वे भगत समस्या तो छे लेकिन जो शिक्षा की गुणवत्ता छे पढ़ाना जो की सेवा भाव छे वे माँ भी क्या कखी कुछ बदलाव छे। डॉक्टर गैरोला
12: सबसे पहली बात मैं यू बोल चलू के भी देश की जो विकास या के भी देश को प्रगति वे की शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर समय समय पर के भी देश की जो है आवश्यकताएं परिवर्तित होते रहनी पहली और आवश्यकता छे धीरे धीरे विज्ञान को विकास का साथ तकनीकी का विकास का साथ देश की आवश्यकताएं बदलती और वेगा अनुसार शिक्षा व्यवस्था परिवर्तित करी जाती। जन पहली की बात करना हम तो पहले कंप्यूटर नहीं छाए या जब हम ग्लोबलाइजेशन बना वैश्वीकरण की स्थिति नहीं चाहिए लेकिन आज सारो विश्व एक परिवार का रूप में वेगी तो वेगा अनुसार शिक्षा व्यवस्था बदल जरूरी होनी ये का कारण हमारा देश की जो है जो शिक्षा नीति 2020 से वह माँ भी काफी परिवर्तन करेगा। जन ये से पहले जो शिक्षा नीति आई छे सन 1986 के बाद बहुत सारी आवश्यकताएं देश की परिवर्तित है समाज की परिवर्तित हुए व्यक्ति की परिवर्तित हुए तो लगभग 34 साल बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है बहुत आमूलचूल परिवर्तन में माम आया और जो आप बना पहली गुणवत्ता होर छे और शिष्यों का टीचर्स का शिक्षकों का प्रति सम्मान छो आज भी छे। अच्छा। आज पहली ये अंतर का रूप में हम देख सकना कि पहले का जो विद्यार्थी छा क्योंकि इंटरनेट नहीं छो बहुत सीमित साधन पढ़ाई का बच्चों का पास वहन छा था पूर्ण पूरी तरह से विद्यार्थी टीचर्स पर निर्भर छा विद्यालय पर निर्भर छा शिक्षकों पर निर्भर छा लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर के पास विकास इंटरनेट को विकास जन हमारे भंडारी जी ने बोल AI को विकास बहुत बड़ी क्रांति छ वेगा कारण आज का विद्यार्थियों का पास पढ़ना का वास्ता बहुत सारा स्रोत मिलेगा।
10: आज एक विद्यार्थी सही जान लेना है कि वही जमन में जब संसाधन नहीं छा और सूचना को आदान प्रदान नहीं हो सको छा सिर्फ भरोसा है तो गुरु जी छा है ना। आज सब कुछ हमारे पास सुविधाएं होगी जिनके हमारा दुया शिक्षक बंधु बताना छन तो जो विद्यार्थी छ निकिता खंडूरी आज हम क्या देखना चाहूँगा कि ये विकास की रफ्तार में शिक्षा में पारदर्शिता प्रमाणिकता मूल्यांकन या हम ही बोला कि एक बहुत बड़ी जो चर्चा को विषय ये बद बनियो कि साहब इम्तिहान बिल्कुल बहरा जाना चन क्या बोल देना कौन लीक हो गया बल या ये का अलावा परीक्षाओं को समय पर नहीं हुए सकूँ निर्धारण यूँ सभी चुनौतियों से क्या आप झेलना चाहिए होता देखना चन।
13: जी बिल्कुल मैं क्या मतलब ये प्रदेश में जति भी पूरा भारत में जति भी विद्यार्थी छा तो कोई ना कोई ये परेशानी से जूझणू छन। अब जन यखमु अभी मेरी खुद काफी सारा सहपाठी छा है तो नीट अगो एग्जाम देनी तो ये का लीक होना का चक्कर मतलब सभी यू तो विद्यार्थियों का वास्ता बहुत बड़ी चुनौती छ अपना आप में। दूसरी चीज ये छे कि बोलदन कि बिना गुरु को ज्ञान नहीं होंदो तो अभी माना कि हम ते AI छे हम गूगल मीट से पढ़दन हम ChatGPT से पढ़दन पर हम माने बाद हमारे पास एक टॉपिक छे वो टॉपिक हम उन डाली तो हम उतगे मिली नॉलेज जति हम जानन छाना पर हम नॉलेज नहीं।

0: ਤਕੜੋ ਵੇਚੀ ਜਾਊਗੂ ਪਰ ਜਤੀ ਅੱਛੇ ਸੇ ਹਮ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮਤੇ ਬਤਾਉਂਦਨ ਤੋ ਵੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਹਮ ਦੇਖੀ ਜਾਤਾ ਯੇ ਯੂਟਿਊਬ ਪਰ ਵੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਗੁ ਨੌਲੇਜ ਵੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੋ ਪਰਸਨਲ ਫੀਡਬੈਕ ਦੋ ਇਹ ਬਾਰੇ ਮਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਨਣ ਯੂ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਯੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਜੀ ਇਸੇ ਹਮਾਰੋ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਤੀ ਇਵਨ ਹੈਲਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੇ ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਆਵਸ਼ਕ ਚ ਯੋ ਮੇਰੋ ਆਪਣੋ ਪਰਸਨਲ ਫੀਡਬੈਕ ਚ ਹੋਇਮਾ
1: ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਪਨ ਆਪਣੀ ਕਕਸ਼ਾਓਂ ਕਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਲੈ ਕਿ ਆਪ ਨਏ ਜਮਨ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਛਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕਾਸ ਦੇ ਆਖਾ ਆਪਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਨ ਉਹ ਸੇ ਆਪ ਕਤਨਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੇ ਕਿ ਜਬ ਮੈਂ ਆਠ ਪੜੂ ਚਾਹੇ ਜਬ ਮੈਂ ਦਸ ਮਾ ਹੂੰ ਜਬ ਮੈਂ ਯੁਕਾਰ ਜਬ ਮੈਂ ਯੁਕਾਰ ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਚਰਣਬੱਧ ਤਰੀਕਾ ਚ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਹੋਈ ਉਹ ਸੇ ਕਤਨਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਛਨ
0: ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਆਈ ਕੋ ਜਮਾਨਾ ਚ ਤੇ ਇਹ ਸੇ ਹਮੂ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਲੈ ਕਿ ਜਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾ ਪੜਦੂ ਛੋ ਤਾਂ ਵੇ ਸਮੇਂ ਪਰ ਹਮਾਰ ਹਮ ਗਾਂਵ ਮਾ ਪੜਨਾ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਠਣ ਪੜੀ ਪਾਂਚ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਮਰ ਪੇ ਕੇ ਵੰਚੀ ਕਿ ਸਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਛੇ ਚੌਕ ਹੁੰਦੀ ਛੇ ਪਰ ਅਬ ਉਭਰ ਬੈਠੀ ਨਾ ਇਹ ਜਮਾਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚੜਨੀ ਸਭ ਮੋ ਲੈਪਟਾਪ ਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟੈਬਲੇਟ ਚ ਤਾਂ ਅਬ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਛ ਹੈ ਜੋ ਹਮ ਐਲ ਕੇ ਜੀ ਯੂ ਕੇ ਜੀ ਮਾ ਹਮ ਪਹਿਲੇ ਪੜਦਾ ਥਾ ਹਮ ਚੌਕ ਆਗੇ ਦੁਆਰਾ ਪੜਦਾ ਛ ਸਲੇਟ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਬਹਿਚੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਚ ਉਹ ਕੇਵਲ ਯੂ ਹੀ ਚ ਲੈਪਟਾਪ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਯੂ ਵਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਵੀ ਚ ਅਰ ਇਹ ਮਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਹੋਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੰਤੁਸ਼ਟਜਨਕ ਛ ਜੇ
1: ਚਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਚ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਛਨ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੁਧਾਰ ਛਨ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬਟੇ ਕਿ ਔਰ ਹਮ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਰ ਏਆਈ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ आज भी फिर अगर हम प्राथमिक शिक्षा की बात करदा अब एक नए तरह की चुनौती डॉक्टर भंडारी हम देखना चाहवा कि स्कूल छन त विद्यार्थी नहीं छन विद्यार्थी छन त अध्यापक नहीं छन त आखिरकार ई तरफ सुधार के लिए नहीं होना चाहिए जो हमारे ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था छ वो एक बात करना चाहूँ ठीक छ हमन बड़ी स्कूलों में स्मार्ट क्लास भी बनाए ली ठीक कंप्यूटर भी छे छे लेकिन जो टोटा हुई हूँ ना वो कह विद्यार्थी नहीं छन वो बहरे सटक जाना छन पढ़ना कौन ये तो हम कन मना
2: आज ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था और आपन प्राथमिक शिक्षा की बात करी तो प्राथमिक शिक्षा में भी बहुत जग बहुत सारा जगह एन छे कि जग विद्यार्थी छन और अध्यापक नहीं छन और बहुत सारा स्कूल एन भी छन जब विद्यार्थी तो कुछ भी नहीं छन और स्कूल में अध्यापक दो तीन विद्यार्थी पर तीन चार टीचर भी छन तो एक असमानता को यो आजकल भी बहुत जग बहुत सारा छे और एक उदाहरण में देऊ चल लो कि हमारा विकासखंड का अंतर्गत सुदूर राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवाल छ वे स्कूल में पहली मात्र 30-32 छात्र छा और आज का आज पूरा जनपद चमोली में सबसे अधिक विद्यार्थी 115 विद्यार्थी प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत छन प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत छन और वही स्कूल में 5 टीचर भी अध्यापक भी और पिछले साल की बात करा उनको आउटपम जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान चमोली नु ते सहयोग प्रदान करी और दो तीन प्रशिक्षु भी तक भेजी और वो एक परिणाम निकले कि 4-5 विद्यार्थी को चयन जवाहर नवोदय विद्यालय में और 4 विद्यार्थियों को चयन सैनिक स्कूल का खातिर भी हुए तो यन भी नहीं छे कि प्राथमिक शिक्षा में बहुत जगह जय जय जगह साधन छन विद्यार्थी छन और प्रयास कराई जाना छन क्योंकि मॉडल स्कूल का रूप में अटल उत्कृष्ट स्कूल का रूप में जो स्कूल पीएम श्री स्कूल का रूप में जो स्कूल आच्छादित छन वो स्कूलों में बहुत अच्छा काम भी हो लेकिन ज्यादातर स्कूल बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आज भी बहुत सारा स्कूलों में विद्यार्थी तो छन लेकिन आज भी यदि वो कभी कंप्यूटर को साधन हो जाओ जब 40-50 विद्यार्थी छन और वो विद्यार्थी भी बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि आज सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो कि अच्छी स्थिति अच्छी नीचे जो बाहर नहीं रख सकता तक भी बहुत अच्छा से अच्छा विद्यार्थी पढ़ाई कर दन उनका IQ भी बहुत बढ़िया छे पर आवश्यकता ये छे कि उनते कखी थोड़ा अग्ने बढ़ने की कखी भी ऊँ तो एक रोशनी मिल जाओ एक दिशा मिल जाओ तो तौंग भी बहुत अच्छा मंजिल पर शिव विद्यार्थी पहुंच सकता
1: डॉक्टर गैरोल आपक छोड़ाण छू एक बड़ी संस्था से आप जुड़े छे SCERT और बोले जान दे कि यू शिक्षा मां नई जो प्रयोग होना चिन अनुप्रयोग होना चिन नवाचार की शिक्षा व्यवस्था की बात हो पाठ्यक्रम की बात हो वो आप सब लोग बुद्धिजीवी जितना भी शिक्षक वर्ग जो वो बैठक देखो चे आप लोग क्या महसूस कर कि को कमी छा कि जो मैं आज सुधार होना चो जहाँ भाई पहले नून छा अब हम यही करना चाहो इन कुल मिला के जो आप SCERT वो एक जो गतिविधियां छन शिक्षा व्यवस्था में सुधार का खातिर वो क्या छन महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय उपलब्धि क्या रही
3: जी SCERT राज्य की अकादमिक शीर्ष संस्था छे और यू पाठ्यचर्या का विकास में अपनो कार्य करनी तो यदि देखे जो शिक्षा का क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां हमारे बीच जन्म वाली की समय परिवर्तन का साथ आए उन चुनौतियों को और आवश्यकता होते हैं हम शिक्षक प्रशिक्षण का माध्यम

0: कि लगे जो नई चीज देश का या विश्व का द्वारा हमारे पास होनी, जो आवश्यकताएं होनी, वे हम शिक्षक के लगे, शिक्षक हमारा पुराना बीच नया बीच कई जो नई तकनीकों से वाकिफ नहीं रहना, तो ट्रेनिंग का माध्यम से ये दोनों को प्रयास करी जानो। जन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यू बोले गए कि व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देने की बात करेंगे, तो कक्षा 6 बटिन ये पर विशेष जोर दियो, और ये साल बटिन एक कौशल बोध का नाम से एक अलग से किताब चली, एक अलग से विषय चली, जेमा की व्यावसायिक शिक्षा को ज्ञान बच्चों तक दी जानो और कक्षा 6 बटिन शुरू करी जाए। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात कि एक सर्वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले भेज है कि हमारा देश में अभी भी 5 करोड़ बच्चे हैं छना जो आधारभूत संख्या ज्ञान और साक्षरता से महफूज से दूर छ। तो ये का वास्ता राष्ट्रीय स्तर पर निपुण भारत मिशन कार्यक्रम चलाए। निपुण भारत मिशन का अंतर्गत फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान कार्यक्रम ये मां चलणु, जेमा की बच्चों ते विभिन्न माध्यमों से असेसमेंट होना, पीरियोडिक असेसमेंट होना, मतलब साल में 3-4 असेसमेंट होना, सेंट्रलाइज्ड होना, एक साथ सारा बच्चा होना कि के क्षेत्र में बच्चा कमजोर है, फिर वे पर आगे बढ़ना प्रयास ये मां करी जान। ये का अलावा हम लोग हमारा राज्य में हमारी सरकार जन अभी भंडारी जी ने बोली कि शिक्षकों की कमी छ, लेकिन मैं एक बहुत आश्चर्यजनक चीज आपके सामने रखना चाहूँ कि हमारा राज्य को जो पीटीआर माने कि शिक्षक विद्यार्थी रेशियो, मतलब एक शिक्षक का मतलब 30 विद्यार्थी पर कति शिक्षक, ये हमारे यहाँ बहुत ऊंचा छ।
1: अच्छा,
0: मतलब अच्छो छ, विद्यार्थियों का संख्या संतोषजनक छ देश का मामला, लेकिन ये जो छ हमारे रेशनलाइजेशन नहीं हो सकियो कि काकी बहुत टीचर छ, काकी जक बच्चा ज्यादा छ वो कम टीचर छ, तो ये पर भी सरकार काम करी। ये अलावा एक हमारा विमा बच्चों में नैतिक शिक्षा का विकास का वास्ता बहुत जोर सरकार को, कि हम देखना कि धीरे धीरे बच्चों में नैतिक शिक्षा की ह्रास हो, तो ये वास्ता भी आनंदम कार्यक्रम हमारा राज्य में चढ़ू। उद्यमशीलता का विकास का वास्ता कि बच्चे अपनों स्वरोजगार का प्रति सजग हो, ये वास्ता कौशलम कार्यक्रम ये मां चढ़ू। तो राज्य में बहुत सारा ये एक प्रकार का कार्यक्रम चल रहा
1: है। अच्छा डॉक्टर साहब, SCERT का सापेक्ष अगर हम डाइट की बात कर दें तो वो क्या कर दुखमा शिक्षकों को प्रशिक्षण को काम भी हुआ खून से
0: जी। देखा साहब जी, हमारा शिक्षा विभाग में द्वि भाग छ ना, एक तो प्रशासनिक भाग, एक अकादमिक भाग।
1: अच्छा।
0: जो हम उन पढ़ोण कन के पढ़ोण बच्चों की आवश्यकताएं क्या के अनुसार हम कन के पाठ्यक्रम बढ़ो, पाठ्यचर्या बढ़ो, गतिविधियां तैयार करो, ये हमारी SCERT का।
1: अच्छा।
0: और SCERT का अंतर्गत हर जिला में एक डाइट, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, तो SCERT जो भी निर्देश SCERT का नहीं, NCERT राष्ट्रीय स्तर पर जो आधार पर काम करी, और SCERT के निर्देश पर डाइट जो मिल अभी बोले कि शिक्षक प्रशिक्षण यह पाठ्यचर्या को विकास, किताब को विकास, जन अभी हमारे एक राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा अभी आई राष्ट्रीय स्तर पर, तो आधार पर राज्य की आवश्यकताओं को हम राज्य की पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करी। तो बीमायू महसूस करेगा कि 30% तक कि लेके जो NCERT जो बुक्स बढ़ोनी, किताबें बढ़ोनी, वो तो राज्य राष्ट्र का आधार पर बढ़ोनी, केरलों को, पूर्वोत्तर राज्यों को, राजस्थान को, गुजरात को, सबको सम्मिलित करके चलने। लेकिन हमारे बच्चे जब तक अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी आवश्यकताओं को न समझो, तो फिर वो शिक्षा को उद्देश्य आप समझने में भी दिक्कत होनी। तो 30% अभी जो राष्ट्रीय स्तर पर यूँ हुई कि 30% हम अपना राज्य को पाठ्यचर्या में, चाहे संस्कृति से संबंधित, भौगोलिक से संबंधित, तो हमारे SCERT और डाइट भी ये दिशा में काम कर।
1: निकिता, आप क्या सोचना चाहिए कि तमाम सुधार का प्रयास होना चाहिए, आप टक लगाया आज भी सुनना चाहिए गुरु जी के लोगों की बात। अब आप मित्र ही बताओ दी कि जन हम बोल दें कि उत्तरांचल शिक्षा बोर्ड, CBSE बोर्ड, यू बोर्डों से आप लोग क्या समझ दें कि न भाई वे बोर्ड में भल पड़े होनी चाहिए, ये में ठीक नहीं होनी चाहिए, ये एक माँ शिक्षा को जो तरीका चाहिए वो हम तक समझ में नहीं आना, तो आपन क्या सोच?
2: सर मेरा मानना यू चाहिए चाहे बोर्ड कोई भी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात यू होनी कि के भी विद्यार्थी में पढ़ने की लगन होती, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड छो, CBSE बोर्ड छो, अगर बच्चा अपनी मेहनत कर लू, बढ़िया ढंग से पढ़ लू और अपना गुरु का मार्गदर्शन पर चल लू, तो वो कभी भी टॉप कर सकते हो मेरे मानने यूज जी।
1: और जो समस्या का तौर पर आपन कोई देखो चुनौती कि भाई ना वही बोर्ड का विद्यार्थी तो बड़ा चंट चितौड़ा छन और हमारे बोर्ड का इन महसूस कर कभी
2: सर अपनो पर्सनल बताओ तो इन मैन कभी महसूस नहीं कह रही, लेकिन मैं नींद देखी छो कि जो सीबीएसई बोल्ड वा बच्चा छन तो वो कखी ना कखी आप होता यन दिखोंदन कि मैं तो सीबीएसई वा बोल्ड वाल छो तो था उत्तराखंड बोल्ड वाल छे, तो वो आपस में बच्चा होते रंदू वो तो ये उम्र में बच्चा कह रही देता जो छोटी उम्र का बच्चा होता है 10 का 9 का, तो वो इन बोल देन कि मैं ये मैं ज्यादा पढ़ लू जो तुम कम पढ़ दो, पर यन बिना कुछ नहीं छे, बस वो विद्यार्थी अपने लगन पर बात होंगी।
1: अच्छा चाहना क्या छा आप लोग की अज कुछ हो शिक्षा में जो सुधार का प्रयास छोड़ी बटे होना उमा एक विद्यार्थी के तौर पर क्या मानना चाहिए आप कि क्यों होना चाहिए और
2: सुधार की तो आवश्यकता बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये सुधार की बोल दूं कि पेपर लीक तो बिल्कुल भी नहीं होया चाहता, ये से तो पूरी जो विद्यार्थी चे क्या सोच के मेहनत को लुआगी कि कुछ जन हम कुछ पढ़ना की चीज़ की तैयारी करना, तो हम ये बोला कि अभी हम ये की तैयारी करना, हम नेट नेट की तैयारी करना, तो भाव वो पेपर लीक हो जालू तो जो हमारा आने वाले जनरेशन जो आगे ना बच्चा वो के हिसाब से तैयारी। तो मेरे सबसे बड़ू तो एक विद्यार्थी के तौर पर यही कि अगड़े जो शिक्षा व्यवस्था ये पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहती और पेपर आगे जो समस्या वे हम चाहते कि वो आगे हम ते ना दी।
1: बिल्कुल, और सभी विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व तो आप करना चाहिए बात था लेके, और आने वाले समय में शायद ये पर भी कुछ ना कुछ सुधार जरूर हो लो। जिनकी डॉक्टर गहरोला बना चाहे कि साहब निपुण भारत आनंदम कौशलम और कुछ न क्या क्या जो अभियान छन शिक्षा में सुधार का खातिर होना चाहिए। डॉक्टर भंडारी आपसे जानना चाहूंगी कि सारा कुछ जो अभियान छिन एक समय सीमा का साथ चल देन गुरुजी लखो मा या बात भी समझ में आंद के साबु मा काम बिंड दिया कि यू भी कहर ऊ भी कहर और वो यू छोड़ कभी नहीं आ सकते और होंचे भाई एक आदमन का खग जान, लेकिन वे का बाद भी आज हम तो ये समझ में आंद सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जब हम जाना स्कूलों में बच्चों थे प्रतियोगी परीक्षाओं का खातिर आज भी हम लोग क्या तैयार नहीं कर सकना चाहूंगा या उमा चेतना नीच क्यों व्यवसायिक शिक्षा का प्रति हाई स्कूल और इंटर कना चन वो एक बात पता है चल है कि मैं इंजीनियर बन के डॉक्टर बन तो करूँ क्या चल तो ये स्थिति तक कन के हम ठीक कर सकते कि बच्चों तो पता चल जाए।
3: आज जनी डॉक्टर गैरोला जी ने बताया कि बहुत सारा प्रोग्राम हमारा विभाग का माध्यम से चलाया जाना चन और प्रतियोगी परीक्षाओं का खातिर भी एक प्रोग्राम SCERT द्वारा संचालित छे, एक अलावा बैगलेस डे एक दिन बनाए छे वे मां विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर आधारित हमारे कार्यक्रम छन और अंतिम शनिवार महीने को वे मां स्पीकिंग इंग्लिश प्रोग्राम भी विभाग द्वारा चलाए जाना छन। बहुत सारा प्रोग्राम तो छे पर बात लास्ट में हुई है आंधी की, मैन बोली कि हमारे विद्यालयों में मुखिया ही नहीं छे और यदि मुखिया नहीं छे और स्थिति एन छे कि 7-8 आदमी या 10-12 आदमी भी कार्यरत छन और सभी लगभग एक एज ग्रुप का लग्या छन, एक दिन एथर कोई लगे एक दिन पैथर कोई लगे और वे का बात स्थिति एन छे कि उन बोली कि भाई ठीक छे एक व्यक्ति थे एक प्रधानाचार्य को दायित्व दे दिया और जबर विद्यालय जब विभागों को कोई काम छे तो बोले जानो भाई आप प्रधानाचार्य छन आप उन सब कुछ कन के लिए कि आप विद्यालय का प्रधानाचार्य और जब वे का बात अगर कभी वही विषय की रिजल्ट की बात आंदी या दूसरी बात आंदी पढ़ाने लिखने की बात आंदी तब बोलता भाई आप लोग तो शिक्षक छन भाई रिजल्ट के लिए रहे कम और ये सारा प्रोग्राम एक प्रधानाचार्य संचालित कराना और कन के वो करे लो पता चलना सब कहने आदेश को पालन नहीं करी तो वो माँ तो कुछ दियो भी नहीं तो आवश्यकता ये बात है एक चीज यानी निकिता बोली भी पूरे प्रदेश स्तर पर देश स्तर पर बच्चा बहुत तैयारी हमारा कना छन और सुदूरवर्ती मेधावी छात्र छन दूर दूर बटिन बड़ी मुश्किल से वो शहरों में कमरा लेके कोचिंग करना छन और एक परीक्षा की तैयारी और एक परीक्षा देने और वो पेपर भी लीक होगी तो उनका तो सारा सपना चकनाचूर हो गया, दोबारा कई बच्चा पेपर देने को भी दे जाना तो आज आवश्यकता ये बात है जानी आमूलचंद परिवर्तन तो हुआ छ शिक्षा व्यवस्था में उन बोली भाई हिंदी में भी आज नीट को पेपर होने लगे और अन्य भाषाओं में भी शुरू होने छे, लेकिन आवश्यकता ये बात है भाई यदि पूरा राष्ट्र में एक एक पाठ्यक्रम और एक शिक्षा व्यवस्था हो जाओ जनी बोर्डों में अंतर की बात है सुधार की बात है एक पूरी पाठ्यक्रम सारा देश में चाहे वो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से CBSE थी ICSE बोर्ड से UP उत्तराखंड बोर्ड से और अन्य राज्यों को कोई भी बोर्ड से सब में एक ही पाठ्यक्रम होना चाहे दू।
1: बिल्कुल ठीक बोले और ये पर प्रयास भी हुई निकिता से हम पूछला कि जब एक पाठ्यक्रम की बात होनी और देखे विज्ञान के साहब जो NCERT की किताब छन सभी विद्यालयों में पहुंचाना छन वे का बाद भी कखी आपन ये महसूस कर कि कुछ नई किताब भी जरूर पढ़न बल इन होनी चाहिए स्कूलों में।
2: जी पहले क्या होंदु छो कि जन हम कुछ आर्ट स्ट्रीम का बच्चा छा तो वो केवल आर्ट्स ही पढ़ना छा पर अब इन वेगी कि तुम आर्ट्स का साथ साथ तुम साइंस भी पढ़ो तुम कॉमर्स भी पढ़ो तो वो बच्चा की चॉइस पर छ कि तुम पढ़ना चाहते हो तुम पढ़ा ये से बच्चों को क्या हो लो कि नॉलेज हो स्कोर गेन होलू तब वे हर क्षेत्र में मान लिया की जन कोई 800 को बच्चा छे तब वो सपोज वे आर्ट्स में कखी निलक पानी वे की जॉब कखी वे कोई एग्जाम नहीं निकाल पाणु तब वे अगर कॉमर्स को भी ज्ञान रोलू वे साइंस को भी ज्ञान रोलू तो वो कखी ना कखी वे दिशा में

0: दे सकदू ते ये से यू फायदा होंगे।
1: बालिका शिक्षा पर आपक क्या बोलना चाहिए, किला की आप प्रतिनिधित्व करना चाहिए, आज बालिका जो शिक्षा चाहिए वो ये प्रदेश में कक्ष
0: भी बालिका शिक्षा देखी जो तो काफी हाई स्तर पर क्योंकि पहली देखी जो तो बालिकाओं तो पढ़ने को अधिकार ही नहीं छो। अगर हम पहली को मैं एक इतिहास की विद्यार्थी छो तो मैं मेरे पढ़ी छो कि जो वैदिक काल की शिक्षा नीति छे बिल्कुल ही खत्म छे। पहली का जमाना मत स्त्रियों तो कुछ अधिकार ही नहीं छो तो वे हिसाब से देखी जो तो अभी बहुत सुधार होया बालिका शिक्षा ले भी कई प्रावधान निकाला है सरकार द्वारा। प्रदेश में बालिका शिक्षा अग्यार तो बढ़नी छे पर लेकिन दिक्कत आज वखे मौंदी की क्या जॉब करो कम के दिशा में जो पेपर लीकेज की समस्या होंगी तब समस्या हमारे सामने यही छे। बाकी बालिका शिक्षा को स्तर काफी बढ़िया रहो।
1: धन्यवाद निकिता, संतोषजनक जवाब देना छे ना, और जो एक समस्या छे वो एक भी जिक्र करिए अपन। अब हम नई शिक्षा नीति पर तिन्या लोग जरा जरा इस बात कर ला जे तय लगनो छे कि हाँ नई शिक्षा नीति शिक्षा मां सुधार का खातिर एक बड़ू रामबाण को काम कर रही। कुछ बिंदु डॉक्टर गैरुला का पास होला, कुछ डॉक्टर भंडारी, और कुछ अगर निकिता भी बोल दे तो भल बात। डॉक्टर गैरुला,
2: सबसे बड़ी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यू कि अपनी जड़ों से जुड़ने की मां बात रूटेडनेस ऑफ इंडिया ये बोली के जायू मतलब ये अंतर्गत भारत की संस्कृति सभ्यता इतिहास को नॉलेज मतलब कोई अब आप सामाजिक विज्ञान की 6-7-8 की किताब उठा के देख ला और पुरानी वाई उठा के देख ला आपने सबसे पहली माँ भारतीय जो विद्वान छा आर्यभट्ट चाणक्य यूं का कोटेशन सबसे पहले पाठ का शुरू में मिलना। वेगा अलावा विज्ञान का क्षेत्र में वे दौरान क्या क्या विचार छाया वो भी आज की पाठ्य पुस्तकों में लिया। ये का अतिरिक्त हमारी वास्तुकला जो कि अभी तक बिल्कुल इग्नोर करी गई छे वो ये का अंतर्गत लियाई मतलब रूटेडनेस ऑफ इंडिया की हमें ये मैं बात करी। दूसरी बात शिक्षा को ढांचा ये मैं बिल्कुल परिवर्तन पहले 10 धन द्वीच हो मतलब 10 तक हमारी शिक्षा छे बाद द्वी यानी कि माध्यमिक शिक्षा छे बाद उच्च शिक्षा छे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यू करी कि जो हमारी फाउंडेशनल स्टेज मतलब जो पहला का 5 धन 3 धन 3 धन 4 हमारे करियो मतलब पहला 5 का अंतर्गत हम उन बुनियादी शिक्षा जे माँ की LKG UKG बाल वाटिका जन हम अब अलग अलग नौ जोड़ा वो ये अंतर्गत जोड़ियो। ये का अतिरिक्त FLN जो बहुत बड़ो कार्यक्रम है FLN का अंतर्गत की बच्चों की मूलभूत मनेरी जड़ों मजबूत करने की कोशिश करी कि लेकिन अगर बच्चा बचपन ही से अगर वे को भाषा और गणित को ज्ञान बहुत स्ट्रांग भेज लो तो वो आगे अच्छो चल लो ये पर विशेष जोर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी।
1: डॉक्टर भंडारी, आप क्या सोच दें कि नए शिक्षा नीति में वो क्या खास आकर्षण है जो कि हाँ हम बोल सकता कि शिक्षा में सुधार का ही बहुत सार्थक और रचनात्मक प्रयास है।
3: नई शिक्षा नीति में जो सबसे बढ़िया प्रावधान में तो लगी वो मातृभाषा को अध्ययन छे और यदि नई शिक्षा नीति का आलोक में मातृभाषा को ज्ञान पूरी तरह पूरा राज्य में दिए जाओ और ये जो नीति बनी है कमरों से बाहर स्कूलों तक पहुंच जाओ और हमारी गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी भाषा जौनसारी बोली ते भाषा को दर्जा मिल जाओ और नई शिक्षा नीति तो ये रोजगार परक भी हो सकती और हमारा बच्चा बहुत मजबूत भी हो सकते कि हमारी जो ये बोली भाषा बन जाली तो बहुत सी माँ जो प्रतियोगी परीक्षा हो लो वो भी गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी भाषा में हो लो और हमारा प्रदेश का बच्चा अधिक से अधिक रोजगार भी पा सकता। और एक अलावा बहुत सारा प्रावधान छे पर आवश्यकता ये बात है जो नई शिक्षा नीति में प्रावधान यू प्रावधान कमरों से निकल की एसी रूम से निकल की विद्यालय स्तर तक और समाज स्तर तक भी पहुंचे तो तभी सार्थक हो सकता।
1: निकिता
0: जी सर जन सर लोगों ने बोली कि माँ अपनी मातृभाषा को प्रयोग हो जाए नहीं बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी चीज़ की जो नई शिक्षा नीति है तो हम जन कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी छा तो ये माँ एक चीज़ ऐड करी करियर काउंसलिंग ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये से यह हों कि हम जति भी स्ट्रीम वा विद्यार्थी छा BA BSc BCOM तो सबका सब हमारा सेमिनार होंदू छो तो वे माँ हम तक बताई जान दू कि करियर काउंसलिंग तुमन अगड़ के क्षेत्र में तुमन आगे जान तो ये चीज़ मैं बहुत बढ़िया लगी। दूसरी चीज सरकार द्वारा यू प्रावधान चलायो जो सुदूरवर्ती छात्र चे ग्रामीण जग इंटरनेट की सुविधा बिल्कुल भी नहीं तो टीवी पर क्या चे स्वयं प्रभा करके एक चैनल होंदू 40 DTH समूह को एक प्रोग्राम छे तो 1 से लेकर पूरा 40 तक वेमा अलग अलग चैनल ऑनदन तो वेमा यंचे की जो बच्चा गरीब होलू जे मो इंटरनेट की सुविधा नहीं भली वेमो एक टेलीविजन भी होलू नॉर्मल सा तो वो क्या कर दू कि वे द्वारा पढ़ सकनू जे बच्चा में इच्छा पढ़ने की।
1: डॉक्टर गैरुला कुछ बोलना चाहना चाहिए।
2: हाँ ये मान 50 घंटा शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास को विशेष जोर दिया इस साल में 50 घंटा अपन जो व्यावसायिक विकास के अंतर्गत ट्रेनिंग लेने लोड़ नई चीजों की
1: क्या बात।

0: दूसरी चीज उच्च शिक्षा में, पहली अनुभव कि अगर हम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर करे, 2 साल गैप करे और फिर हम एडमिशन ले लेता हूँ फर्स्ट ईयर दोबारा कन पहुँचो।
1: अच्छा
0: लेकिन अब की बार यू हैगी कि अगर फर्स्ट ईयर करे ली तो वो बने सर्टिफिकेट मिल लो, सेकेंड ईयर करे ली डिप्लोमा मिल लो और थर्ड ईयर करे तो वो डिग्री मिल ली। तो मतलब कोई भी साल वेगो आप बर्बाद नहीं मिलो।
1: विद्यार्थियों का हित मा नई शिक्षा नीति और शिक्षा में सुधार का खातिर नई शिक्षा नीति काफी फलदायी नजर आने चाहते। डॉक्टर कृपाल भंडारी, डॉक्टर राकेश करोला, सुश्री निकिता खंडूरिन अपना अपना विचार रखी और सच में हम तय आशान्वित होने चाहिए, केले की कमी निकलना पड़ो तो हम कुछ नहीं कदर निकाल दूला। लेकिन जो सही प्रयास होना चाहिए और जो कमी अभी रहेगी जिनकी विद्यार्थियों का तरफ बटे की जो एक मांग च, अगर पारदर्शिता हो, हर परीक्षा में मूल्यांकन ठीक ठाक हो और पर्चा भेर नीन, तो शायद जो प्रयास होना चाहिए वो अपन आप में काफी छ। आप तो मेहमानों को यही परिचर्चा में शामिल होने का खातिर बहुत बहुत आभार और श्रोताओं से अब अनुमति लूला। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुनना चाहिए परिचर्चा, जाकू विषय छो आजकल की शिक्षा व्यवस्था सुधार का प्रयास। आज हमारा मेहमान चाहिए डॉक्टर राकेश गैरोला, डॉक्टर कृपाल भंडारी, सुश्री निकिता खंडूरी, संचालन करना छा हमारे सहयोगी विनय ध्यानी। उम्मीद कर दिया कि आप थे ये परिचर्चा पसंद होली, ये बाबत आप जरूर लिख के भेजा चिट्ठी के माध्यम से, हम तभी भलू लगोल। तो श्रोताओं, छुई बत हम अग्नि भी लगोला, लेकिन वे से पहले आप थे लेके चल दा कुमाऊं की छोड़ और सुन दिया सुंदर सी कुमाऊनी गीत ज्योति उत्प्रीति का स्वरमा।

अभी आप सुनना चाहिए ज्योति उत्प्रेति का सुरमय सुंदर सी कुमाऊनी गीत। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी इशारा करनी च कि भगत हुण वल च उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों, तो लियावा सुना आप उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।

0: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ प्रदेश की सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की। राज्य की अवसंरचना से जुड़ी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 4 जुलाई से प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा के तहत शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी। और एथलीट ओलंपियन अंकिता ध्यानी ने 65वीं नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन कर एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया।

0: प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उत्तराखंड से जुड़े विभिन्न सड़क एवं आधारभूत संरचना विकास प्रस्तावों पर चर्चा की। बैठक में राज्य की सड़क अवसंरचना को मजबूत करने के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर सहमति बनी। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति देने पर सहमति व्यक्त की गई। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 2,966 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 प्रमुख योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इनमें श्रीनगर बाईपास, पुरकाजी लक्सर हरिद्वार मार्ग का 4 लेन विस्तार, लोहाघाट और पिथौरागढ़ बाईपास, मझोला खटीमा मार्ग का चौड़ीकरण तथा रामनगर करानीखेत मार्ग का सुदृढ़ीकरण शामिल है। मुख्यमंत्री ने अर्धकुंभ 2027 को देखते हुए हरिद्वार बाईपास योजना को समयबद्ध ढंग से पूरा करने तथा कोटद्वार बाईपास के कार्यों में तेजी लाने का अनुरोध किया, जिस पर सहमति की गई। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों को स्पर मार्गों से जोड़ने की लगभग 3,000 करोड़ रुपये की परियोजना और अल्मोड़ा में टनल सहित मोटर मार्ग निर्माण के प्रस्ताव भी रखे, जिन पर केंद्रीय मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति दी। बैठक में उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर के माध्यम से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के उपचार के लिए DPR तैयार करने संबंधी समझौतों को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से सीमांत क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी, पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा और आपदा प्रबंधन क्षेत्र में भी सुधार होगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से समीना।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन एवं समर्पण के तहत आगामी 4 जुलाई से 15 दिन तक प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा के तहत जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें धामी सरकार के पिछले 5 साल के विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करने के साथ ही पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजना का लाभ देने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों को बिना किसी भागदौड़ के सरकारी सेवाएं मिली, यही सुशासन की पहली सीढ़ी है। इसी क्रम में सभी जिलों में जनजन की सरकार, जनजन के द्वार अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। गौरतलब है कि सरकार की ओर से गत वर्ष 17 दिसंबर से राज्य भर में जनजन की सरकार, जनजन के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब इसकी अगली कड़ी यानी दूसरे चरण में 4 जुलाई से सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। उत्तराखंड रजत जयंती पर इस बार हरेला पर्व

0: पर राजधानी देहरादून में लगभग 15 लाख पौधे रोपे जाएंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर देहरादून कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष का महाभियान केवल रस्म अदायगी नहीं बल्कि धरती को हरा भरा बनाने का एक जन आंदोलन बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 25वें वर्ष यानी रजत जयंती के उपलक्ष्य में आगामी 16 जुलाई से शुरू होने वाला यह लोक पर्व पूरे एक माह तक बेहद खास और यादगार अंदाज में मनाया जाएगा। इस बार जिले में थीमेटिक तरीके से विशेष प्रजातियों के पौधे लगाकर इको टूरिज्म को एक नई ऊंचाई देने का संकल्प लिया गया है। डॉ. चौहान ने सभी सरकारी विभागों को अविलंब अपनी रोपण साइट्स का चयन करने के निर्देश दिए। साथ ही महाभियान में आम जनमानस के साथ साथ जनप्रतिनिधियों, युवाओं, महिला समूह और स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 तक देश को क्षय रोग टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य के तहत चलाए गए 100 दिवसीय राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन अभियान का चमोली जिले में सफलतापूर्वक समापन हो गया है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. भगवती प्रसाद पुरोहित ने बताया कि अभियान के दौरान जिले के 235 चिन्हित हाई रिस्क गांवों में से 225 गांव की सफलतापूर्वक स्क्रीनिंग की गई। अभियान का उद्देश्य टीबी रोगियों की समय रहते पहचान कर उनका उपचार सुनिश्चित करना तथा जिले को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना है। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है। आगामी 2 दिन तक इसके राज्य के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के आसार हैं। आज राजधानी देहरादून सहित राज्य के अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार पौड़ी, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है, जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में भी गरज चमक और तेज हवाओं का पूर्वानुमान जारी किया। उधर नैनीताल जिले के हल्द्वानी में हुई बारिश से शहर कई निचले इलाकों और मुख्य मार्गों पर जल भराव की स्थिति बन गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हल्द्वानी की सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने कहा कि प्रशासन ने मानसून से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
2: देखिए, मानसून ऑफिशियली हमारे प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। उसको देखते हुए पूर्व से ही मानसून की तैयारियों के लिए सभी रेखीय विभागों को निर्देश दिए गए थे। खासकर इसमें जल भराव और निकासी की जो समस्याएं और शिकायतें आती हैं उसके निराकरण के लिए विभागों को निर्देश दिए गए हैं। नालियों की निरंतर सफाई के लिए और वाटर लगिंग जो एरिया हैं, लो लाइंग एरियाज हैं, वहाँ पर विशेष निगरानी बनाते हुए डी वाटरिंग पंप की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सभी कार्रवाई समय पर पूर्ण करने के लिए कहा गया है। और जैसे भी देहरादून से या मौसम विभाग से फोरकास्ट प्राप्त होता है या कोई चेतावनी प्राप्त होती है उसको प्रसारित करते हुए उसके अनुसार जो हमारा तंत्र है उसको सेंसिटाइज किया जाता है।
0: प्रदेश की एथलीट ओलंपियन अंकिता ध्यानी ने 65वीं नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की अंकिता ध्यानी ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित प्रतिस्पर्धा में 3000 मीटर स्टिपल चेस में स्वर्ण पदक जीता और 1500 मीटर दौड़ में भी रजत पदक अपने नाम किया है। अपनी उपलब्धि के चलते उनका सितंबर में जापान में होने वाले 20वें एशियन गेम्स के लिए चयन हुआ है।
3: इस सफलता के पीछे मेरे कोच का मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग सबसे महत्वपूर्ण रहा है। मेरे कोच का नाम साइमन स्कॉट है जो USA में रहते हैं और मैं उनके अंडर ट्रेनिंग करती हूं। एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने के उद्देश्य से मैंने लंबे समय तक अनुशासन और समर्पण के साथ लगातार कठिन मेहनत की है। अब मैं पूरी लगन, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपने देश का प्रतिनिधित्व करूंगी और भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी। धन्यवाद।
0: सीमांत जनपद चमोली की नीति घाटी में आयोजित 6 दिवसीय वाइब्रेंट विलेज खेल प्रतियोगिता आज मलारी के खेल मैदान बुरांस में संपन्न हो गई है। खेल प्रतियोगिता से भोटिया जनजाति के ग्रामीण खासे उत्साहित हैं। जिला क्रीडाधिकारी मोहित सिंह ने बताया कि खेल विभाग द्वारा वाइब्रेंट विलेज के गांव में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतियोगिता आयोजित की गई।
4: सीमांत गांव के अंतर्गत खेल विभाग द्वारा यहां पर वाइब्रेंट विलेज खेल प्रतियोगिता का आयोजन मलारी के ब्रांस खेल मैदान में किया गया, जिसमें हमारे यहां पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन खेल विभाग द्वारा किया गया, जिसमें जितने भी हमारे प्रतिभागी खिलाड़ी थे, महिला थी, पुरुष थे और जो भी बच्चे थे, उनको यहाँ पर खेल विभाग द्वारा मध्यान्ह भोजन एवं विजेता उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए गए।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ प्रदेश की सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की। राज्य की अवसंरचना से जुड़ी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 4 जुलाई से प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा के तहत शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी और एथलीट ओलंपियन अंकिता ध्यानी ने 65वीं नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन कर एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों का बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी श्रोताओं को अपनी बोली भाषा को कार्यक्रम ग्राम जगत में 100.5 मेगाहर्ट्ज पर मिछो आपक दगड़ी सविता बड़थाल और आप चमी दगड़ी सभी श्रोताओं आप थे कार्यक्रम भलो लगणो होलो ये हम उम्मीद कर दिया। ये कबावत आप चिट्ठी का माध्यम से जरूर लिख के भेजें। हमार चिट्ठी को पता चे चिट्ठी gramjagat@gmail.com पर। हम तो इंतजार हों जब हमारे श्रोता चिट्ठी भेज देना और वामा कार्यक्रम का बाबत चाहे वो परिचर्चा हो, चर्चा हो, गीत हो, संगीत हो, जो कुछ भी थे भलो लगो धोल पसंद हो धोल तो वे का बाबत लिख के भेज दें तो हम तो बहुत सुंदर भी लगत, अच्छो भी लगत और उत्साहवर्धन भी होंद कि हम तो कार्यक्रम और सुंदर और ढंग से प्रस्तुत करने की एक ताकत से भी मिल दें। तो श्रोताओं छुईबत हम अग्नि भी लगौला लेकिन आप तो सुन दिया कुछ रविवार।
5: रविंद्र ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
6: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
5: सच में क्या क्या है उसमें?
6: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
7: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
8: Future proof your career with UPES, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 15th June. Apply now at upes.ac.in.
9: यार बीबीए एमबीए तो करना है लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
10: मिलते हैं ना इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
9: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
10: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की बीबीए और एमबीए शिक्षा किफायती फीस पर।
9: और परिणाम?
10: यूटीयू 2025 का एमबीए सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
9: वाह, आईसीएम देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
1: श्रोताओं अभी आप सुने कुछ रविवार, अब आप थे लेके चलना जौनसार की छोड़ और सुनना सुरेंद्र कुमार का स्वर में सुंदर सी जौनसारी गीत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं गढ़वाली प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बीटी गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में प्रियंका।

0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दगड़ा, प्रदेश की सड़क परियोजनाओं पर चर्चा करी। राज्य की सड़क अवसंरचना से जुड़ी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर सहमति बनी। प्रदेश में भोलबटी उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त वे चालू, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को संचालन नई व्यवस्था का तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण कर लू। राज्य में 4 जुलाई बिटी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान को दूसरो चरण शुरू होलू। और उत्तराखंड दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक, मौसम विभागन कई जिलों में भारी बरखा, गरज चमक और तेज बथौते लेके चेतावनी जारी करी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उत्तराखंड से जुड़िया विभिन्न सड़क और आधारभूत संरचना विकास प्रस्तावों पर चर्चा करी। बैठक में राज्य की सड़क अवसंरचना ते मजबूत कनकुणी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर सहमति बनी। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि का तहत वर्ष 2026-27 गुणे लगभग 750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की स्वीकृति देने पर सहमति व्यक्त करेगा। यहाँ के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का अंतर्गत लगभग 2966 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 प्रमुख परियोजनाओं तहत भी मंजूरी देगा। यहाँ श्रीनगर बाईपास, पुरकाजी लक्सर हरिद्वार मार्ग का 4 लेन विस्तार, लोहाघाट और पिथौरागढ़ बाईपास, मझोला खटीमा मार्ग का चौड़ीकरण और रामनगर रानीखेत मार्ग थे मजबूतीकरण शामिल छ। मुख्यमंत्री अर्धकुंभ 2027 से दिखद हरिद्वार बाईपास योजना थे समयबद्ध ढंग से पूरा करण और कोटद्वार बाईपास का कार्यो में तेजी लाना का भी अनुरोध कारी, जहाँ पर सहमति व्यक्त करेगा। उन राष्ट्रीय राजमार्गों तथा स्पर मार्गों से जुड़ने की लगभग 3,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं और अल्मोड़ा में टनल सहित मोटर मार्ग निर्माण का भी प्रस्ताव रखें, जहां पर केंद्रीय मंत्री सैद्धांतिक सहमति दे। बैठक में उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर का माध्यम से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का उपचार खुणे DPR तैयार करण और संबंधी समझौता थे भी मंजूरी दे गया। मुख्यमंत्री बोली कि यूं परियोजनाओं थे लागू करण से सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत वाली, पर्यटन थे बढ़ावा मिला लू और आपदा प्रबंधन क्षमता में भी सुधार वाल। आकाशवाणी देहरादून खून समाचार कक्ष बटे रुचि रावत।
0: राज्य में भोलबटी मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़ू बदलाव लागू हुए चालू, ये का तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त हुए चालू और राज्य का सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को संचालन नए व्यवस्था का तहत किए चालू। भोलबटी उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड और वे से जुड़िया संबंधित उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 2019 प्रभावहीन हुए जाला। राज्य सरकार ने एक ही जगह पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक संस्थान अधिनियम का तहत नई व्यवस्था लागू करी। नई व्यवस्था का तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों ते मान्यता प्रदान कन, उनकी निगरानी कन और शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित कन को कार्य कर लू। इन व्यवस्था में मुस्लिम समुदाय का दगड़ा दगड़ी सिख जैन ईसाई बौद्ध और पारसी समुदायों का शिक्षण संस्थान भी शामिल होला। सभी संस्थानों को निर्धारित मानकों को पालन कन और प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त कन अनिवार्य होलू। राज्य सरकार का अनुसार नई व्यवस्था को उद्देश्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर सुनिश्चित कन च। पिथौरागढ़ जिला का भूस्खलन प्रभावित देवल गांव में आज 130 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना इकोलॉजिकल कुमाऊं की तरफावटी 10,000 पौधों को विशेष वृक्षारोपण अभियान चलेगे। अभियान में वन विभाग, पूर्व सैनिकों, स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों भाग लेनी। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण

0: आपदा जोखिम न्यूनीकरण और मृदा संरक्षण का उद्देश्य से आयोजित किए गए। देवल गांव भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र च पिछला वर्ष भी यही क्षेत्र में 10,000 पौधा लगे गए छा जैका सकारात्मक परिणाम ते दिख दी ये बरस भी अभियान ते अग्नि बढ़ेगे। अल्मोड़ा जिला का जूला गांव का रजवार थोक स्थित गुरु गोरखनाथ मंदिर में आयोजित वैशी कार्यक्रम में आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्यन मुख्य अतिथि का रूप में प्रतिभाग कैरी कार्यक्रम ते संबोधित कर दी। कैबिनेट मंत्री बोली कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति और धार्मिक परंपराएं राज्य की पहचान छिन। उन बोली कि वैशी और जागर जन लोक परंपराएं हमारी सांस्कृतिक विरासत को महत्वपूर्ण हिस्सा च जैते औण वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुँचाउण सभ्यों की जिम्मेदारी च। श्रीमती आर्यन धार्मिक आयोजन का सफल संचालन का वास्ता मंदिर समिति और स्थानीय ग्रामीणों ते बधे दिंदी बोली कि इन आयोजन समाज ते अपने सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने को कार्य कर दिन।
1: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताज़ा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड ते फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: प्रदेश में 4 जुलाई बेटी जनजन की सरकार जनजन के द्वार अभियान को दूसरा चरण शुरू होलू। 15 दिन तक चरण वाला ये विशेष अभियान का तहत जिला ब्लॉक और तहसील स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाला जौमा विभिन्न विभागों का अधिकारी और कर्मचारी लोगों की शिकायतों को मौका पर ही निस्तारण करला और दगड़ा दगड़ी सरकारी योजनाओं को लाभ भी उपलब्ध करे जालू। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन बोली कि लुखु ते अपन समस्याओं का समाधान खुणी सरकारी ऑफिसों के चक्कर न लगाण पाड़ बल्कि अधिकारी स्वयं उक द्वार पहुँच की उक शिकायतों को निस्तारण करी। ये उद्देश्य से सेवा पखवाड़क तहत यो अभियान 4 जुलाई बड़े शुरू करे जाणु च। पिछला साल दिसंबर में आयोजित 45 दिनक जन जन की सरकार जन जनक द्वार अभियानक तहत प्रदेश भर में 681 शिविर लगे गिन जैमा 5,33,000 से अधिक लुखुन भागीदारी कह छे। ये दौरान लगभग 33,000 लुखु की शिकायतों को त्वरित समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में अभियानक सफल संचालनक वास्ता संबंधित अधिकारी और कर्मचारी थे शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित रह की जन समस्याओं को समय पर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया छिन। आकाशवाणी देहरादून खुणी समाचार कक्ष बेटी अमित सुंदरियाल।
0: उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दियाली। मानसून आज राज्य का ज्यादातर हिस्सों में पहुंची गए जैका दगड़ी ही देहरादून समेत कई जिलों में खूब बरखा हुए। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून का अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य का ज्यादातर भागों में पहुंची गए। विभाग को बंच के अगला 2 से 3 दिनों में मानसून का शेष क्षेत्रों में भी पहुंचने का आसार छिन। मौसम विभाग आज देहरादून टिहरी चंपावत पौड़ी पिथौरागढ़ ऊधम सिंह नगर नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कखी कखी भारी बरखा की संभावना जताई। ये कई दगड़ी सभी पहाड़ी जिलों में भी गरज चमक आकाशीय बिजली बरखा और तेज से तेज बथों का दगड़ी ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बथों चलन की चेतावनी जारी करी। मौसम विभाग का अनुसार 1 और 2 जुलाई ते भी राज्य का कई जिलों में भारी से बहुत भारी बरखा होने की संभावना च। विभागन लुखु से खराब मौसम का दौरान सतर्क रहन और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दीनी। सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय का बागेश्वर चंपावत और पिथौरागढ़ परिसरों कुणी शैक्षणिक और शिक्षणेतर संवर्ग में 244 नए पद सृजित किए गए नी। ये संबंध में शासन का आदेश जारी वेगी नी। राज्य सरकार का अनुसार यू पदों को सृजन से तीनी परिसरों ते पहली बार स्थायी शैक्षणिक और प्रशासनिक ढांचा मिललू जैसे कि शिक्षण शोध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूत वे सकली। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार बागेश्वर परिसर में 38 चंपावत में 31 और पिथौरागढ़ परिसर में 95 शैक्षणिक पद सृजित किए गए नी। ये के अलावा तीन परिसरों का वास्ता पुस्तकालय प्रशासन लेखा प्रयोगशाला सहित विभिन्न श्रेणियों का कुल 80 शिक्षणेतर पद भी स्वीकृत किए गए नी। विभागन बते कि जो पदों पर आउटसोर्स व्यवस्था लागू होली उन पर राज्य सरकार का निर्धारित नियमों का अनुसार अधिकृत एजेंसी का माध्यम से जल्द ही नियुक्तियां किए जाली। सरकार को वंच की नए पदों का सृजन से विद्यार्थियों ते बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिली सकलू और विश्वविद्यालय का तीनी परिसरों में शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियां ज्यादा असरदार ढंग से संचालित वे सकली। सीमांत चमोली जिला की नीति घाटी में आयोजित 6 दिवसीय वाइब्रेंट विलेज खेल प्रतियोगिता को आज मलारी का ब्रांच खेल मैदान में समापन हुए गए। प्रतियोगिता का विजेताओं ते खेल विभाग की तरफा बिटी सम्मानित किए गए। खेल विभाग और जिला प्रशासन की तरफा बिटी गमशाली और मलारी में 3-3 दिन की प्रतियोगिताएं आयोजित किए गए नी। यूं को उद्देश्य सीमांत गाँव में खेल प्रतिभाओं ते प्रोत्साहित करन और पारंपरिक खेलों ते बढ़ावा द्योण और पलायन ते रोकण की दिशा में सकारात्मक प्रयास कंच। जिला क्रीड़ा अधिकारी मोहित सिंगन बते की प्रतियोगिताओं में स्थानीय लखन बड़ी चढ़ी के भाग लीनी दगड़ा ही स्थानीय ग्रामीणों ई पहल को स्वागत कर दी। भविष्य में इन्हीं प्रतियोगिताएं आयोजित कन और नीति घाटी का अन्य गाँव ते भी वाइब्रेंट विलेज योजना में शामिल करने की मांग कैरी। अंत में मुख्य समाचार एक गाँव फिर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दगड़ी प्रदेश का सड़क परियोजनाओं पर चर्चा केरी। राज्य की सड़क अवसंरचना से जुड़ी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर सहमति बनी। प्रदेश में भोलबट्टी उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त हुए जालो। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को संचालन नए व्यवस्था का तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण कर लू। राज्य में 4 जुलाई बटी जनजन की सरकार जनजन के द्वार अभियान को दूसरा चरण शुरू हो लू और उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक। मौसम विभागन के जिलों में भारी बरखा गरज चमक और तेज बतौर का दगड़ी ही चेतावनी जारी करी। ये कई दगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे गढ़वाली प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान साथियों को संतोष फुलारा का नमस्कार। 100.5 मेगाहर्ज पर आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको नियमित रूप से मौसम के अनुसार बोए जाने वाली फसलों के अलावा कृषि और बागवानी सहित अन्य जानकारियाँ देते हैं। हमारा उद्देश्य किसान साथियों को सामाजिक गतिविधियों और अन्य जानकारियों से भी अवगत कराना है, इसलिए हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों को भी शामिल करते हैं। किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जल संरक्षण की विधियों पर, क्या हैं विधियां, और मेड़ों में खरपतवार प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं, इस पर हम विस्तार से जानकारी देंगे। किसान साथियों, कार्यक्रम में आज एक महत्वपूर्ण भेंटवार्ता भी है, जिसमें आज हम आपको घराट श्रृंखला और जीर्णोद्धार कार्यक्रम की जानकारी देंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जागरूकता संदेश के साथ।
1: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
2: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
3: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
4: सुनो, कस्टमर केयर का कॉल आया था, 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर होने वाले हैं, लिंक से APK डाउनलोड करना है।
5: रुको, ये सही नहीं, स्कैम हो सकता है।
6: APK

0: मेहनत की कमाई चुराए। अनजान लिंक पर ना करें क्लिक, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 याद रखें। SBI, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
1: किसान साथियों, संदेश के बाद हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जल संरक्षण की। जल संरक्षण का अर्थ है पानी की बर्बादी को रोकना और इसके उपलब्ध स्रोतों का उचित प्रबंधन करना। इसे मुख्य रूप से संचयन, कृषि में उन्नत सिंचाई तकनीकों, जल के पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग और दैनिक जीवन में जो हम पानी का उपयोग करते हैं, जो हमारी आदतें हैं उसमें सुधार

अगर हम इसमें जल संचयन की बात करें तो वर्षा जल संचयन यह पहले आता है। यह पानी बचाने की सबसे प्राकृतिक और प्रभावी विधियों में से एक है। आप अपने छतों पर जो सही तरीके से जो डाउन पाइप होते हैं उनको आप ठीक करा सकते हैं या उनको नहीं लगा सकते हैं। घरों की छतों पर गिरने वाली बारिश के पानी को पाइप के जरिए आप क्या करेंगे, आप भूमिगत टैंक बनाएंगे तो उसमें आप इकट्ठा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, भू जो संरक्षण है आपका, जो ज़मीन में वाटर लेवल है वो नियंत्रित रहेगा। और दूसरा आता है भू पुनर्भरण। इस तकनीक के जरिए बारिश के पानी को स्रोत या गड्ढों में डालकर उसका स्तर बढ़ाया जाता है। आप देखते होंगे कि इन दिनों वन विभाग की ओर से या फिर जिला प्रशासन के अन्य विभागों की ओर से जंगलों में चाल खाल बनाए जाते हैं, तो उसका उद्देश्य भी यही है कि पानी बहे ना अनावश्यक रूप से और वो गड्ढों में इकट्ठा हो जाए ताकि जो ज़मीन में जल की मात्रा है, भूमि में जल की मात्रा है, वो बनी रहे। कृषि में उन्नत सिंचाई तकनीक, इसमें जो है हमारे किसान साथी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पानी की हर लगभग जितने भी हम खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, उसमें पानी की आवश्यकता होती है। हम सिंचाई की पद्धतियों में सुधार कर सकते हैं, नई पद्धतियाँ अपना सकते हैं, जैसे जिसमें है ड्रिप सिंचाई पद्धति। इस विधि में किसान साथी क्या करेंगे, पानी सीधे पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद तक पहुँचाया जाता है। इससे लगभग अगर हम एक अनुमान के तौर पर माने तो 60% तक पानी की बचत होती है। फुव्वारा सिंचाई, इसमें पाइपों के माध्यम से फुव्वारा द्वारा बारिश के पानी का छिड़काव किया जाता है। उसी तरीके से छिड़काव जाता है जिससे से बारिश आती है और वो सीधे हमारे जो पौधे हैं, पेड़ हैं, उन पर गिरती है, तो हमारा जो अनावश्यक रूप से जो पानी होता है वो बर्बाद नहीं हो पाता है। जल कुशल फसलें का हम उपयोग कर सकते हैं, उनका उत्पादन कर सकते हैं, उनको लगा सकते हैं। कम पानी में पैदा होने वाली फसलें, जैसे जो मोटे अनाज हमारे खेतों में होते हैं, उसको आप जो है लगा सकते हैं। खेतों में मेड़बंदी करके आप मृदा की नमी को संरक्षित कर सकते हैं। इन दिनों आप रोपाई का काम कर रहे हैं, खेतों में रोपाई से पौधे लगा रहे हैं, तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपके मेड़ जो है मजबूत हों, पानी एक खेत से दूसरे खेत में जाए लेकिन बर्बाद ना हो, तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। घरेलू स्तर करके की अगर हम बात करें तो जल संरक्षण में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जो है अपने घरों में जो भी काम करते हैं, नल खुला छोड़ के काम करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा जो हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे बर्तन धोने में या हाथ मुँह धोने में या नहाने में, कुछ भी आप हम दैनिक दिनचर्या करते हैं, तो उसमें पानी बर्बाद होता है। आप पानी पहले इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद उसका उपयोग करेंगे तो पानी नालियों में बर्बाद नहीं होगा। तो इसमें ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बदलाव करके आप प्रतिदिन हजारों लीटर पानी को बचा सकते हैं। एरेटर और लो फ्लो फिक्चर आप लगा सकते हैं नलों में। इससे क्या होता है कि पानी जो तेज़ बहाव के कारण बहाव से आता है और हम करीब 80% पानी बर्बाद हो जाता है, तो इससे हम अगर आप लो फ्लो फिक्चर लगाएंगे तो उससे पानी की खपत कम हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है रिसाव को ठीक करना। कई बार क्या होता है कि हमारे नलों में अनावश्यक रूप से रिसाव होता है, बूंद बूंद पानी टपकता है। आप देखेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक अगर उसी गति से अगर रिसाव हो रहा है तो पानी काफ़ी मात्रा में खर्च हो जाता है। कभी आप इसको अंदाज़ा लगाइए कि आप कहीं पर पानी लीक हो रहा है तो उसमें नीचे कुछ बर्तन लगा लीजिए, देखेंगे कि 1-2 घंटे में वो बर्तन भर जाएगा, यानी कि आप बिना उपयोग करे उतना पानी बर्बाद कर रहे हैं। तो इसको आप कर सकते हैं। सरकार की ओर से जल संरक्षण को लेकर के कई योजनाएं भी चलाई जाती हैं, अभियान चलाए जाते हैं, जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं। बताएंगे कि आप जो है जो आपका फ्लश सिस्टम है, जो सिस्टम है उसको भी आप ठीक करा सकते हैं, अनावश्यक से पानी बर्बाद नहीं होगा। ग्रे वाटर का उपयोग आप उपयोग कर सकते हैं। सब्जी धोने या हाथ मुंह धोने के इस्तेमाल हुए पानी को दोबारा पौधों में डाल करके या फर्श की सफाई में उपयोग कर सकते हैं। और ये तो हमने आपको बताया कि आप जो है घर की दैनिक जो उपयोग दैनिक कार्यक्रम जो आपके होते हैं उसमें आप पानी का बचा सकते हैं। और इसके अलावा एक पारंपरिक जल संरक्षण विधियां हैं। भारत जैसे शुष्क देशों में ये तकनीक ऐसा नहीं है कि आज ही हम बता रहे हैं आपको, ये पहले से हमारे पारंपरिक रूप से हमारे बुजुर्ग, हमारे जो पुरानी पीढ़ी है वो इसका उपयोग करती है। वो बावड़ी बनाते थे, जैसे राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में अभी भी बनाए जाते हैं, वे इस पानी का महत्व को समझते हैं। हालांकि उत्तराखंड जैसे जनपद में पर्याप्त मात्रा में नदियां हैं, हर शहर को नदियां जोड़ती हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर हम इसी तरीके से पानी को बर्बाद करेंगे तो नुकसान तो होगा ही। तो इससे बचने के लिए हम अभी से जल संरक्षण की दिशा में काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो
इन दिनों क्या होता क्या है कि बरसात का सीजन है, कई बार तेज बहाव आता है, तो हम वन विभाग की ओर से जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, गाँव में जंगल में आप जो है चाल खाल बना सकते हैं, उससे दो फायदे होंगे, एक तो भूमि का जल स्तर बना रहेगा, और दूसरा एक महत्वपूर्ण योगी हमारे जो जंगली जानवर जो जंगलों में जाते हैं और चारा चरने के लिए जाते हैं, उन्हें पानी की प्यास लगती है, तो वो उसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं किसान साथियों, जो हम अपनी आदतों में इनको शामिल कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। तो ये तो थी जल संरक्षण को लेकर चर्चा, और इसमें हम कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ये हमें खुद तय करना होगा। चलिए कार्यक्रम में अब समय हो चुका है एक अल्प विराम का, आइए सुनते हैं रागिनी।

0: किसान साथियों, आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम आपके लिए लाए हैं, जो हम शुरू में भी आपको बता रहे थे कि हम आज के भेंटवार्ता में आपको सुनाएंगे घराट श्रृंखला और जीर्णोद्धार कार्यक्रम पर। इसमें जानकारी देंगे विश्वेश्वर प्रसाद, जो इस कार्यक्रम में जो को चला रहे हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं। जी कि जब हम घराट की बात करते हैं तो हम एक बात का खास तौर पर उल्लेख करना चाहेंगे कि बागेश्वर जिले के सुमटी एक गाँव है, कपकोट विकास खंड के दूरस्थ गांव है सुमटी। उस सुमटी गांव में करीब 800 से 850 महिलाएं, एग्जैक्ट अगर फिगर की बात करें 886 महिलाएं एक समूह से जुड़ी हैं, संकल्प महिला आजीविका स्वायत्त सहकारिता ग्रामोत्थान रीप परियोजना के तहत ये महिलाएं काम करती हैं। और इन्होंने एक अभिनय प्रयोग किया है। इनकी जीवटता आप देखिए कि पौसारी एक क्षेत्र है, वहाँ पर पिछले दिनों कुछ समय बाद पहले जो है एक आपदा आई थी, उसमें इनका घराट पूरा गिर टूट गया था। तो अभी उन्होंने महिलाओं ने एकत्रित होकर के उस घराट को ठीक किया है और इतनी ही महिलाएं प्रतिदिन 200 से 250 किलोग्राम गेहूं पीसती हैं घराट में। जबकि आज के समय में जब हम आटा चक्की और छोटी मिक्सी की बात करते हैं, सुविधाओं की बात करते हैं, तो ये महिलाएं पारंपरिक तौर पर मडुआ, मल्टीग्रेन आटा और गेहूं पीसती हैं और इससे उनकी अच्छी आमदनी भी हो रही है। राज्य सरकार की जो ग्रामोत्थान योजना है रीप परियोजना के तहत इसके संचालित की जाती है, तो ये उसको सहयोग कर रहा है अनुदान दे करके। और संकल्प महिला आजीविका स्वायत्त सहकारिता इसमें बेहतर काम कर रही है। तो हम सबको ये सीखने की आवश्यकता है इन महिलाओं से। तो जो 846 महिलाओं की जो आजीविका से सीधे तौर पर घराट परियोजना जुड़ी है और घराट से ही वे आटा बनाती हैं, आटा बना करके वे अच्छे दामों पर उसको बेचती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। तो ये हम सबको सीखने वाली बात है कि हम जो आधुनिक तौर पर हम बड़ी बड़ी मशीनों की बात कर रहे हैं या नई चीज़ों की बात करें, तकनीक की बात कर रहे हैं, तो वो महिलाएं घराट के माध्यम से पानी एकत्रित करके उसके बाद उसको एक फ्लो में चला करके, घराट चला करके काम कर रही हैं। क्योंकि इस बात का आज उल्लेख करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि जब हम घराट के पुनर्जीवन की जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं, घराट श्रृंखला को चला रहे हैं, हमारे जो उत्तरकाशी के विश्वेश्वर प्रसाद इस दिशा में बेहतर काम कर रहे हैं, तो ये आवश्यक है कि इस दिशा में जो लोग काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर महिला समूह जो काम कर रही है, उनका उल्लेख किया जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप इस भेंटवार्ता को सुनेंगे, घराट कैसे काम कर रहे हैं, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी है और घराट से प्राप्त जो सामान है, उत्पादन है, जो उत्पाद है, उसकी बाजार में क्या मांग है। अगर आप मशीन से पीस करके जो आटा बनाते हैं उसकी अलग कीमत मिलेगी और घराट की कीमत अलग मिलेगी। तो आइए सुनते हैं भेंटवार्ता विश्वेश्वर प्रसाद जी की।
1: नमस्कार किसान साथियों, कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डुंडा उत्तरकाशी से विजेश्वर प्रसाद डंगवाल जी। डंगवाल जी, मुख्य रूप से हम देखें तो घराट श्रृंखला पर काम कर रहे हैं, घराट को लेकर कार्य कर रहे हैं, तो जानेंगे कि किस तरह से कार्य का आरंभ होता है। सबसे पहले डंगवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: डंगवाल साहब। जैसे कि आप घराट श्रृंखला को लेकर काम कर रहे हैं, घराट के जीर्णोद्धार के लिए आपने काम किया है, थोड़ा बताएं कि ये घराट श्रृंखला कार्यक्रम क्या है।
2: घराट श्रृंखला बेसिकली जो है वो एक घराटों का एक समूह है, जैसे जो हमारे घराट संचालक हैं, तो उन्हीं का एक समूह बनाने की हमने कोशिश की है कि पहले तो घराट, क्योंकि ये तो हमारी पारंपरिक तकनीकी है और पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसे चलाते हैं। लगभग 80 के दशक तक
1: जी
2: हमारे जो भी अनाज पीसने का जो काम होता था पहाड़ी क्षेत्रों में, तो घराटों में होता था। तो घराट तो हमारे पास पहले से थे, लेकिन 80 के दशक के बाद जब डीजल इंजन और बिजली इस तरीके की चक्कियां आई, तो इन घराटों का ह्रास होने लगा और धीरे धीरे मतलब स्थिति ये आ गई कि ये विलुप्ति की कागार पे आ गई। तो घराट श्रृंखला बनाने का मुख्य उद्देश्य हुई था, एक श्रृंखला मतलब एक समूह है पूरे उत्तराखंड में या हिमालय राज्य में जहां पे भी घराट हैं, तो घराट श्रृंखला हमारा एक समूह है कि हम उसे मानते हैं कि हम जो भी लोग घराटी हैं, तो घराट श्रृंखला जो है एक घराटियों का एक समूह है।
1: जी, तो किस तरह से आपके मन में आया कि घराट को लेकर कुछ काम करना चाहिए?
2: सर 2014-15 में उत्तराखंड और भारतवर्ष में एक पर्यावरणविद हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, तो उनकी एक गांव बचाओ यात्रा का आरंभ होना था। तो मैं, मुझे भी सौभाग्य मिला उस कोर कमेटी में रहने का। तो दो तीन बार बातें चली हैं कि किस तरीके से ये जो प्रोग्राम था डिजाइन होगा, गांव कैसे बचेंगे। उसी समय मतलब घराट का तो जो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि गांव में जो, जहां पे मेरा गांव है वहां पे कभी हमारा घराट हुआ करता था, लेकिन मैंने वो कभी जीवित अवस्था में नहीं देखा। लेकिन वो जब वो खेत थे जहाँ पे हमारी रुपाई होती थी, कि आज तुम्हारी कहाँ की रुपाई, कि आज घट वाले खेत की रुपाई है,
1: जी जी
2: तो वहाँ पे कुछ वो पत्थर के अवशेष भी दिखते थे। तो वो मन में एक बालपन से वो चीज थी। और जब ये यात्रा निकली तो उस यात्रा का जो नाम था वो गांव बचाओ था। अब गांव कैसे बचेंगे, और गांव में कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री तो हम लगा नहीं सकते, बहुत बड़े कुछ रिसोर्सेज हमारे पास। तो इसलिए मेरे मन में आया कि अपने स्थानीय रिसोर्सेज के साथ जो हमारे हमारे पास वहाँ पे उपलब्ध चीजें हैं,
1: जी
2: तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिससे गांव भी बचे, आजीविका भी बचे, पर्यावरण संरक्षण भी हो, जैव विविधता का भी संरक्षण हो, और हमें कहीं रोजगार के लिए भटकना भी ना पड़े, और चार छह लोगों को हम रोजगार भी दे सकें। तो इस धारणा के साथ इस घराट की जो नाकुरी में स्थापित है, तो वहां पे उसकी नींव रखी गई।
1: तो इस तरह से कार्य करने की शुरुआत होती है। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण में अगर हम घराटों की बात करें, जैसे हम पहले भी देखते हैं कि पानी से ये चक्की चलती है, थोड़ा बताएं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ये घराट कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
2: सर, घराट की अगर बात करें तो वो अपने आप में समग्र है। वो आप चाहे पर्यावरण की बात करें, आप चाहे पोषण आहार की बात करें, आप जैव विविधता की बात करें, आप आजीविका की बात करें, घराट का एक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जल चलित है। और घराटी जो भी होंगे या घराट पे जिनकी निर्भरता, जो भी ग्रामीण होंगे, वो पर्यावरण और प्रकृति के प्रति जरूर संवेदनशील होंगे, जो जिनका घराट पे आना जाना है। मतलब जो लोग घराट पे आते हैं उनको यहाँ तक कि वो पानी का जो, वो बता देंगे कि कितना एलपीएम पानी, मतलब एलपीएम मतलब वैज्ञानिक भाषा में नहीं कहेंगे, लेकिन वो बता देंगे कि इस बार पानी जो है उसकी गति देख के कि यार इस बार बारिश कम हुई है। और घराट ना पिछले साल में इन्हीं दिनों ये थैला लाए थी, वो इतना थैला, इतना पाथा था, इतना था, लेकिन वो इतनी देर में हो गया था, इस बार इसने ज्यादा समय ले लिया है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं प्रकृति रूठी है, यानी बारिश नहीं हुई है, या जो भी चीजें हैं, आप समझ सकते हैं कि घराट का प्रकृति और पर्यावरण से कितना गहरा संबंध है।
1: किस किस तरह के उत्पाद आप घराट में तैयार करते हैं? जैसे गेहूं का तो हम देखते हैं कि पीसना, आटा बनाना तो है, इसके अलावा पहाड़ का जो मोटा अनाज है।
2: 2014-15 में जब मैंने घराट की शुरुआत की थी, तो उस समय हम देखते थे कि बड़े ऐसे छदम बेसी व्यापारी आते थे और किसानों को से लूट खसूट भी करते थे। सरकार की भी सराहना करूंगा कि उन्होंने जो एक, जो हमारे मोटे अनाज हैं उनका जो मूल्य निर्धारण किया है, तो तब से लोगों में जागरूकता भी आई है। इस समय उसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी बढ़ी है।
1: जी,
2: आप पूछ रहे थे कि हम किस तरह के, हम जैसे कोदे का आटा, जो मड़वा रागी है, उसका आटा बनाते हैं, गेहूं का आटा बनाते हैं, मल्टीग्रेन बनाते हैं, विशेष रूप से हम सत्तू भी बनाते हैं।
1: अच्छा।
2: सत्तू एक वाजौ होती है, एक प्रजाति होती है जौ और गेहूं के बीच की, उसका भी हम एक, वो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बहुत हाई होती है। और जब जो जैसे बकरी या घोड़ा, जो लोग बॉर्डर में जो काम करते थे, अपने चरैया टाइप के लोग जो होते थे, बकरी पालक, वो वहां पे बहुत ज्यादा रसद नहीं पहुंचा सकते थे, तो इसलिए वो सत्तू का उपयोग करते थे कि अगर एक मूट, दो मूट उन्होंने खा लिया, दो गिलास पानी पी लिया, तो पूरा दिन भर का
1: जी।
2: इतनी उसमें शक्ति होती थी। तो हम ये सत्तू भी बनाते हैं, इसके साथ हमने पारंपरिक कलर भी बनाए, जैसे हरड़ बहेड़ा से। बाकी हम बहुत सारी लोगों के लिए ऐसी चीजें भी बनाते, जैसे गिलोई का पाउडर हो गया, हरड़ हो गया, बहेड़ा, त्रिफला वगैरह में जो काम आता है। उसके साथ ही हमने घराट पे कुछ और मशीनें भी लगाई हैं, और उसमें हमने सहयोग लिया है IIT रुड़की का, तो उन्होंने कुछ मशीनें हमारे लिए डिजाइन की हैं, जो कूल प्रेसिंग मशीनें हैं।
1: अच्छा।
2: तो उससे भी मतलब घराट हमारे पास एक पारंपरिक घराट भी है, उससे थोड़ा अपग्रेड घराट, जिसमें कि 1-4 किलोवाट की टरबाइन भी लगी है, तो वहाँ पे कुछ पावर भी जनरेट हो रही है, जिससे कि हमारी सिलर वगैरह, छोटे छोटे जो उपकरण हैं, वो चल जाते हैं। और उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल कनेक्शन भी उस घराट पे लिया है, और उसमें बड़ी मशीनें भी लगाई हैं, क्योंकि घराट की क्या है, उसकी अपनी एक क्षमता है। घराट आपका 2-4 क्विंटल आटा पीसेगी जब वो पूरा उसमें होता है। हम लोग जुलाई में घराट पखवाड़ा और घराट दिवस मनाते हैं, उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि जुलाई में जो है प्रकृति अपने पूरे प्रखर पे होती है, बारिश होती है, और हमारा जो रुपाई वगैरह का काम भी निवृत्त हो जाता है, और उसके बाद पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। हमारे पास 3 प्रकार के घराट होते हैं, एक बहुत ही अल्पकालिक होते हैं, एक 6 मासी होते हैं, और एक 12 मासी होते हैं। तो उस समय तीनों घराट हमारे चलते हैं, तो इसलिए हम 14 से 27 जुलाई तक घराट पखवाड़ा मनाते हैं और 28 जुलाई को हम विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के दिन घराट दिवस भी मनाते हैं। ये विगत हम एक दशक से भी ज्यादा समय से इसको मना रहे हैं। स्वयं स्कूलों में और ग्रामीण समुदाय के साथ कार्यक्रम करते हैं, जिसका उद्देश्य एक घराट के प्रति एक जो सही उत्पाद हमें जो जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है, पूरे पोषक तत्व जिसमें रहते हैं, जिस अनाज में जो घराट द्वारा पीसा जाता है, तो उसकी जागरूकता और अपना जो पारंपरिक विज्ञान है उसको अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए हम ये कार्यक्रम भी चलाते हैं।
1: जी, निश्चित तौर पे घराट के प्रति जो हमारा भाव है वो देखा जा सकता है, क्योंकि जो हम पहले जो पीसने के लिए अनाज लेके जाते थे उसको हम घटवाड़ी भी कहा करते थे। अच्छा डंगवाल साहब, अगर हम बात करें घराट में किस तरह से हम आटा पीसते हैं कि इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है हाई मानी जाती है, वो आटा बहुत अच्छा माना जाता है सेहत के लिए।
2: घराट जो क्या है वो जल चलित है और वो कम आरपीएम पे चलता है, मतलब घराट की एक गति की जो है वो निश्चित सीमा है, तो इस वजह से फिर नीचे से पानी का फ्लो भी होता है, तो घराट में जो भी अनाज पीसे जाते हैं वो बिल्कुल ठंडे बाहर निकलते हैं। जबकि आप अगर बिजली इंजन, डीजल इंजन या बिजली की चक्की किसी छोटी में भी पीसोगे, आप उसे टच करोगे, आप उसमें हाथ डालोगे, तो आपका हाथ जल जाएगा, तो जिससे उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कहीं ना कहीं उसको हानि होती है जो अन्य चीजों से पीसी जाती है। जबकि घराट से जो अनाज पीसे जाते हैं उसमें जो पोषक तत्व विद्यमान होते हैं वो बरकरार रहते हैं, तो इस वजह से उसकी जो उसमें पोषक तत्व हैं वो ज्यादा होते हैं अन्य चीजों से पीसने के बजाय।
1: जी, ये घराट श्रृंखला कार्यक्रम में अगर हम स्वरोजगार के दृष्टिकोण से देखें डंगवाल साहब, तो कितने लोगों को इससे जुड़ने का मौका मिला है, कितने लोगों को आज घर में ही रोजगार मिला हुआ, जैसे आप डुंडा उत्तरकाशी क्षेत्र की हम बात करें।
2: इस घराट श्रृंखला का एक उद्देश्य रहा है कि घराट श्रृंखला का जो उद्देश्य है वो कभी भी ये नहीं रहा है कि अपने आप तक सीमित, मतलब घराट श्रृंखला इसीलिए वो किसानों का, मतलब घराट श्रृंखला केवल घराटियों का एक समूह नहीं है, उससे किसान जुड़े हुए हैं, उससे घराटी जुड़े हैं, उससे अन्य कामगार जुड़े हुए हैं जो छोटे किसान हैं या भूमिहीन लोग हैं, तो इस प्रकार के कई सारे लोग जुड़े हैं। हमने कोशिश की है कि बीज से और बाजार तक जाने की, हमने कई विभागों के उससे IIT रुड़की के माध्यम से ग्रामीणों को, जैसे हल्दी है, काली हल्दी है, और लगभग 1000 से अधिक किसानों को हमने बीज प्रोवाइड करवाया अपने डुंडा वाले क्षेत्र में, और आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे पहाड़ी हल्दी है जिसकी की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, उसकी जो करक्यूमिन वैल्यू है वो भी ज्यादा है। और पहाड़ी क्षेत्र में देखो जो चीज पैदा होती है वो विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के साथ संघर्ष करती है और उसके बाद जो चीज ग्रो करती है तो निश्चित रूप से उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, या सिंचाई के लिए हम जो पानी लेते हैं वो बड़ा शुद्ध और साफ हिमालय की धाराओं से जो हमारे गाड़ गधेरे आ रहे हैं तो उसका उपयोग होता है, इसलिए वो स्वच्छता के मामले में भी, पिलग्रिम के मामले में भी आप देख लें कि वो दैवीय स्वरूप है, और खाद्य पदार्थ के रूप में अगर उसे देखें तो उसकी गुणवत्ता जो है बाकी जो मार्केट में मिलते हैं उनसे कहीं अधिक है।
1: जी, तो डंगवाल साहब बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य ये आप कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण को लेकर ये काम है, ये सिर्फ एक घराट के जीर्णोद्धार को लेकर ही नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए आप काम कर रहे हैं। कई हमारे युवा साथी तो आज के ऐसे भी हैं शायद जिन्होंने घराट देखे भी ना हो, जिन्होंने घराट चलते हुए भी ना देखा हो, तो क्या कहेंगे हमारे उन तमाम साथियों को कि पर्यावरण के साथ और जो ये हमारे परंपरागत तौर तरीके थे इनके साथ किस तरह से हमें मेल बिठाकर चलते रहना चाहिए?
2: सर, अगर हम अपने पूर्वजों का ज्ञान, अपना आधुनिक विज्ञान और अपनी जो हमारी नई पीढ़ी है इसको अगर हम एक साथ जोड़ लें, इनको कोरिलेट करके अगर हम चलें, तो ये एक बहुत बड़ा घराट जो है एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन है, पर्यावरण संरक्षण का साधन है, जैव विविधता का साधन है। वर्तमान समय में सरकार की, भारत सरकार और राज्य सरकारों की भी मंशा है, अभी हमारे पास IIT रुड़की के डिजाइनिंग डिपार्टमेंट से लगभग 24 बच्चे आए थे जिन्होंने घराट, ग्रामीण पर्यटन, कृषि आदि अनेक चीजों पे वहाँ पे जो हमारे पारंपरिक चीजों से जुड़े लोग थे तो उनसे ज्ञान भी अर्जित किया। और इस तरीके का भी अब चल रहा है, तो इस मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि आप अपनी जड़ों से जुड़िए, घराट जैसे प्राकृतिक खेती, बागवानी और इन चीजों से भी हमें नई पीढ़ी को जुड़ना चाहिए।
1: जी, तो विजेश्वर प्रसाद डंगवाल साहब आज कार्यक्रम में आप जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी घराट के विषय में आपके साथ हुई, पर्यावरण संरक्षण पर आपके साथ बात हुई, आप स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: किसान साथियों, ये थे विश्वेश्वर प्रसाद जी और इनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी विकास चमोली। इसी जानकारी के साथ अब हमारे कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो चला है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है या कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें पत्र के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन है 248001। हम कल फिर नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपने और अपने का ख्याल रखिए और संतोष पुलारा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों का दगड़, मी गीता भंडारी।

0: पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दगड़ प्रदेशक सड़क परियोजनाओं पर चर्चा करी। राज्यक सड़क अवसंरचना से जुड़ी लगभग 7,000 करोड़ रुपए परियोजनाओं पर बनी सहमति। प्रदेश में भूलबट्टी उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त हैजल। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का संचालन नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण करल। राज्य में 4 जुलाई बटी जनजनक सरकार जनजनक द्वार अभियानक दूसर चरण शुरू होल। और उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक। मौसम विभागल कई जिलों में भारी द्यो गौड़ाट चाल चमकण और तेज बयाव के लेबे चेतावनी जारी करे। अब समाचार विस्तारल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उत्तराखंड है जुड़ी अलग अलग सड़क आधारभूत संरचना विकास प्रस्तावों पर चर्चा करी। बैठक में राज्यक सड़क अवसंरचना के मजबूतकरण के वास्ता लगभग 7,000 करोड़ रुपये परियोजनाओं पर सहमति बने। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में केंद्रीय अवसंरचना निधि के तहत साल 2026-27 तक लीजिए लगभग 750 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं के स्वीकृति देने पर सहमति व्यक्त करी है। यह के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 2,966 करोड़ रुपयों की लागत वाली 5 प्रमुख परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी गई। यह में श्रीनगर बाईपास, पुरकाजी, लक्सर, हरिद्वार, बाटक 4 लेन विस्तार, लोहाघाट और पिथौरगढ़ बाईपास, मझोला खटीमा मार्ग चौड़ीकरण और रामनगर रणखेत मार्ग के पक्कीकरण शामिल छू। मुख्यमंत्री अर्धकुंभ 2027 के देखबेर हरिद्वार बाईपास परियोजना के बखत पर ढंगलपुर करण और कोटद्वार बाईपास कामों में तेजी लूणक अनुरोध करो जमे सहमति व्यक्त करिए। उनल राष्ट्रीय राजमार्गों के इस पर मार्गों से जुड़नक लीजिए 3,000 करोड़ रुपयों की परियोजना और अलमाण में टनल सहित मोटर मार्ग निर्माणक प्रस्ताव ले रखो जनर पर केंद्रीय मंत्री सैद्धांतिक सहमति व्यक्त करी। बैठक में उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर के माध्यमल भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में उपचारक लीजिए DPR तैयार करण संबंधी समझौते के लिए मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री को की इन परियोजनाओं क्रियान्वयनल सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होली, ऊर्जन में आसानी होली, पर्यटन के बढ़ावा मिलो और आपदा प्रबंधन क्षमता में ले सुधार होल। आकाशवाणी देहरादून लीजिए समाचार कक्ष बैठे ममता पांडे।
0: राज्य में भूलबट्टी उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अरवे से संबंधित उत्तराखंड और फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 2019 प्रभावहीन है जल। राज्य सरकार एक जाग में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियमक भीतर नई व्यवस्था लागू करी हल। नई व्यवस्था के भीतर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों के मान्यता प्रदान करण उनर निगरानी और शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करण काम करी जल। व्यवस्था में मुस्लिम समुदायक दगड़ दगड़ सिख जैन ईसाई बौद्ध और पारसी समुदायों शिक्षण संस्थान ले शामिल होल। सब संस्थानों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करण और प्राधिकरण है मान्यता प्राप्त करण जरूरी होल। राज्य सरकार के अनुसार नई व्यवस्था का उद्देश्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान मौक सुनिश्चित करण होल। पिथौरगढ़ जिला भूस्खलन प्रभावित देवलगांव में आज 130 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना इकोलॉजिकल कुमाऊं तरफा बटी 10,000 पौधों का विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाए गए। अभियान में वन विभाग पूर्व सैनिकों स्थानीय गांव वालों जनप्रतिनिधियों और अलग अलग सामाजिक संगठनों भाग ले। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण आपदा जोखिम न्यूनीकरण और मृदा संरक्षण उद्देश्य आयोजित करी गई। देवलगांव भूस्खलन दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र छु। पिछले साल यह क्षेत्र में 10,000 पौध लगाई गई थी जैक भल परिणाम शामिल में उनक बाद यह साल अभियान अगिल बढ़ाई गई। अलमाड़ जिला जूला गोंक रजवार तोक स्थित गुरु गोरखनाथ मंदिर में आयोजित बैसी कार्यक्रम में आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्यल मुख्य अतिथि रूप में प्रतिभाग करो। कार्यक्रम के संबोधित करण भगत कैबिनेट मंत्री को की उत्तराखंडक लोक संस्कृति और धार्मिक परंपरा राज्यक पछाण छिन। उन्होंने को की बैसी और जागर जस लोक परंपराएं हमार सांस्कृतिक विरासत जरूरी हिस्से छिन जनु के आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पूछूण सबके जिम्मेदारी छू। श्रीमती आर्याल धार्मिक आयोजन के सफल संचालनक लिजी मंदिर समिति और स्थानीय गाँव वालों के बधाई दी। कहो कि यस आयोजन समाज के अपूर्ण सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना काम करें।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यो बुलेटिन अपुलोग आकाशवाणी देहरादून केंद्र बैठे सुनने लग रहा। इन समाचार हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड में ले उपलब्ध छन। ताजा समाचार नकलीजी अपन लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और Facebook पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता।
0: प्रदेश में 4 जुलाई बटी जनजनक सरकार जनजनक द्वार अभियानक दूसर चरण शुरू होल। 15 दिन तक चलने वाली विशेष अभियानक तहत जिला ब्लॉक और तहसील स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करी जल, जेमा अलग अलग विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मैसों शिकायतों के मौक पर निस्तारण करल और सरकारी योजनाओं के लाभ उपलब्ध कराई जल। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को लोगों के अपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए जी सरकारी कार्यालयों चक्कर नी लगून पड़ो, बल्कि अधिकारी अफी उन्नर द्वार जाने पूछ बीर शिकायतों के समाधान करो। यो उद्देश्य सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत यो अभियान 4 जुलाई बठे शुरू करी जानो। पिछले साल दिसंबर में आयोजित 45 दिवसीय जनजन की सरकार जनजनक द्वार अभियान के दौरान प्रदेश भर में 681 शिविर लगाई गई, जमें 5,33,000 है ज्यादा लोगों भागीदारी करी। यो दौरान लगभग 33,000 जन शिकायतों झट समाधान करी गयो छी। मुख्यमंत्री सपे जिलों में अभियानक सफल संचालन लीजी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के शिविर में अनिवार्य रूपल उपस्थित रहे जन समस्याओं समाधान सुनिश्चित करनक निर्देश ध्यान। आकाशवाणी देहरादून लीजी समाचार कक्ष बठे ममता पांडे।
0: उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसूनल दस्तक दी हाली। मानसून आज राज्य के अधिकांश भागों में पहुंच गए। जैक दगड़ ही देहरादून समेत कई जिलों में झमाझम द्यो लागो। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य के अधिकांश भागों में पहुंच गए। विभाग बोलन छो कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून और ले क्षेत्रों में पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल छिन। मौसम विभाग आज देहरादून टिहरी चंपावत पिथौरगढ़ पौड़ी उधम सिंह नगर नैनीताल और बागशेर जिलों में कै भारी द्योग संभावना जताई छू। एक दगड़ ही सभे पर्वतीय जिलों में गौड़ाट भोड़ाट चाल चमकण और द्योग भत्ते तेज दौर और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार झोंकदार बयाव चलनक चेतावनी जारी करी छू। मौसम विभाग के अनुसार 1 और 2 जुलाई के राज्य कई जिलों में भारी से भत्ते भारी द्योग होनक संभावना छू। विभाग मैसोते खराब मौसम के दौरान सतर्क रूण तथा जरूरी होने पर ही यात्रा कर सलाह दी। सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय बागशेर चंपावत और पिथौरगढ़ परिसरों के लिए शैक्षणिक और शिक्षणेतर संवर्ग में 244 नई पद सृजित करी गई छिन। यह बार में शासनादेश जारी कर दी गई छू। राज्य सरकार के अनुसार इन पदों में सृजनल तीनों परिसरों के पहली बारी स्थायी शैक्षणिक और प्रशासनिक ढांच मिलल, जेमा शिक्षण शोध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूत होल। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार बागशेर परिसर में 38, चंपावत में 31 और पिथौरगढ़ परिसर में 95 शैक्षणिक पद सृजित करी गई छिन। ये एक अलावा तीनों परिसरों के लिए पुस्तकालय प्रशासन लेखा और प्रयोगशाला सहित अलग अलग श्रेणियों में कुल 80 शिक्षणेतर पद स्वीकृत करी गई छिन। बिघा बगल बता कि जिन पदों में आउटसोर्स व्यवस्था लागू होने उनमें राज्य सरकार निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकृत एजेंसी के माध्यम जल्दी नियुक्ति करी जल। सरकार पूर्ण चुकी नई पदों के सृजन से विद्यार्थियों के भल शैक्षणिक वातावरण मिलल और विश्वविद्यालय तीनों परिसरों में शैक्षणिक तथा प्रशासनिक गतिविधियां ज्यादा प्रभावी ढंग से संचालित है सकल। सीमांत चमोई जिला नीति घाटी में आयोजित 6 दिनों वाइब्रेंट विलेज खेल प्रतियोगिता आज मलारी बुरांस खेल मैदान में समापन है गये। प्रतियोगिता विजेताओं के खेल विभाग तरफा बटी सम्मानित करी गये। खेल विभाग और जिला प्रशासन तरफा बटी गमसाली और मलारी में 3-3 दिनों प्रतियोगिताएं आयोजित करी गई थी। इन उद्देश्य सीमांत गांवों के खेल प्रतियोगिताओं के प्रोत्साहितकरण पारंपरिक खेलों के बढ़ावा देने और पलायन रोकने की दिशा में सकारात्मक कोशिश करण छू। जिला क्रीड़ा अधिकारी मोहित सिंगल बता के प्रतियोगिता में स्थानीय मैसोल बढ़ चढ़वे भाग ले वे स्थानीय गाँव वालों पहलक स्वागत करो और भविष्य में ले यस प्रतियोगिताएं आयोजित करण और नीति घाटी अन्य गाँवों के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना में शामिल करना मांग करो। अंत में मुख्य समाचार एक बारी फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दगड़ प्रदेशक सड़क परियोजनाओं पर चर्चा करे। राज्यक सड़क अवसंरचना है जुड़ी लगभग 7,000 करोड़ रुपए परियोजनाओं पर बने सहमति। प्रदेश में भोलबटी उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त है जाल। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं का संचालन नई व्यवस्था के भीतर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण करण। राज्य में 4 जुलाई बटी जन जनक सरकार जन जनक द्वार अभियानक दूसर चरण शुरू होल। और उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसूनक दस्तक। मौसम विभागल कई जिलों में भते भारी दियो गौड़ाट चाल चमकण और तेज बयावक चेतावनी जारी करी। यह कदगढ़ ही कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार समाप्त हुनी। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए किशोर कुमार की आवाज में शुरुआत करते हैं फिल्म संगीत की, नमक हराम फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100+ AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: चुपके चुपके फिल्म से आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में, एसडी बर्मन का मधुर संगीत, आनंद बख्शी के बेहतरीन बोल।

0: क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति सप्ताह सार।
1: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून से मैं योशिता पांडे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपके लिए लेकर आए हैं प्रत्येक मंगलवार को प्रसारित होने वाला हमारा विशेष कार्यक्रम सप्ताह सार, जिनमें हम बात करते हैं सप्ताह भर की उन तमाम खबरों की जो आपको जाननी जरूरी है और हमारे लिए भी महत्वपूर्ण रही। तो चलिए श्रोताओं, आपको लेके चलते हैं अब उन खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के लिए कुल 2355 करोड़ 54 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसमें पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष विकास सहायता योजना के तहत 2283 करोड़ 60 लाख रुपए तथा एक अन्य मद के अंतर्गत 71 करोड़ 94 लाख रुपए की सहायता शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास में निरंतर सहयोग प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य अब पूरे देश का साझा संकल्प बन चुका है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में अब हम काम कर सकते हैं और हम करेंगे की भावना विकसित हुई है, जिसने विकास और सुशासन को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। पहले जहां स्वास्थ्य व्यवस्था का मुख्य ध्यान केवल बीमारियों के उपचार पर केंद्रित था, वहीं अब उपचार के साथ साथ बीमारी की रोकथाम आधारित स्वास्थ्य प्रणाली को भी प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एम्स ऋषिकेश में 124 करोड़ रुपए की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक विकसित किया गया है। इसके अलावा अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 4 नए मेडिकल कॉलेज विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और मजबूत होगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना से जुड़े अस्पतालों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को 31 अगस्त 2026 तक सूचीबद्ध अस्पतालों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आधारित हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू कराने और मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन उत्तराखंड की स्टेट मिशन निदेशक रीना जोशी ने बताया कि 1 सितंबर 2026 से केवल उन्हीं अनुबंधित अस्पतालों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा, जिन्होंने निर्धारित समय सीमा तक सभी आवश्यक मानकों का पालन कर लिया होगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नई दिल्ली में इफको के अध्यक्ष दिलीप संघानी से मुलाकात कर उत्तराखंड में कृषि और सहकारिता क्षेत्र में इफको की भागीदारी बढ़ाने का आग्रह किया। मुलाकात के दौरान प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य सुधार, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने पर चर्चा हुई। साथ ही प्रदेश भर में खेत बचाओ जीवन बचाओ अभियान को व्यापक स्तर पर संचालित करने पर भी विचार विमर्श किया गया। डॉक्टर रावत ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। इफको अध्यक्ष ने उत्तराखंड में जल्द ही एक बड़े किसान सम्मेलन के आयोजन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में किसानों के हित से जुड़े विषयों और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कौशल विकास एवं सेवा योजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने देहरादून के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निरंजनपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कौशल विकास विभाग और एक निजी मोटर कंपनी के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री बहुगुणा ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की कौशल विकास को बढ़ावा देने की नीति के तहत स्थापित यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस युवाओं को आधुनिक ऑटोमोबाइल तकनीकों में प्रशिक्षित करेगा। इस आधुनिक केंद्र में छात्रों मैकेनिक मोटर व्हीकल, दोपहिया तिपहिया वाहन अनुरक्षण और ऑटो बॉडी रिपेयर जैसे क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्र प्रभात पांडे का कहना है कि अत्याधुनिक उपकरणों, ईवी तकनीक और आधुनिक सुविधाओं से उन्हें उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण मिलेगा। महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाओं पर संवेदनशीलता दिखाते हुए देहरादून जिला जिला प्रशासन ने सखी वन स्टॉप सेंटर को और अधिक प्रभावी व सक्रिय बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। समाधान दिवस के दौरान महिलाओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों का

0: बयान लेते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सखी वन स्टॉप को सक्रिय मोड में संचालित करने तथा हिंसा से पीड़ित महिलाओं को त्वरित व समुचित सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया है कि देहरादून में सर्वे चौक के निकट कामकाजी महिला छात्रावास परिसर में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं की सुरक्षा संरक्षण और पुनर्वास से संबंधित सभी सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, शोषण या किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं को बिना देरी के आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए। जिला प्रशासन ने महिलाओं से अपील की है कि किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या संकट की स्थिति में वे बिना संकोच के सखी वन स्टॉप सेंटर की सेवाओं का लाभ उठाएं। प्रशासन का कहना है कि प्रत्येक पीड़ित महिला को समयबद्ध, संवेदनशील और प्रभावी सहायता उपलब्ध कराई जा सके। हिमालय संरक्षण, स्वच्छता और जिम्मेदार पर्वतारोहण का संदेश लेकर उत्तरकाशी के पर्वतारोहियों ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। समुद्र तल से करीब 7,075 मीटर ऊंची माउंट सतोपंत चोटी पर 9 सदस्यीय दल ने सफल आरोहण कर तिरंगा फहराया। भीषण ठंड, बर्फीले तूफान और शून्य से नीचे तापमान जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए टीम ने शिखर फतह किया। पर्वतारोही प्रवीण राणा ने बताया कि 3 सप्ताह तक चले इस अभियान में दल ने कठिन हिमालयी मार्गों को पार करते हुए सफलता हासिल की। राज्य सरकार हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में भव्य मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान की स्थापना करेगी। यह संस्थान भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और प्राची विद्याओं के संरक्षण, संवर्धन तथा शोध का प्रमुख केंद्र होगा। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने कल ऋषिकुल मैदान का निरीक्षण कर प्रस्तावित परियोजना के लिए उपलब्ध भूमि और आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रमुख सचिव ने कहा कि संस्थान में योग, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और अन्य प्राची विद्याओं पर शोध की सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे भारतीय ज्ञान परंपराओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। श्री सुधांशु ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ परियोजना का कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शासन स्तर पर पर्यटन सचिव धीराज सिंह गब्रियाल को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उत्तराखंड के मत्स्य पालन क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। राज्य में पहली बार उत्पादित हिमालयन ट्राउट मछली का सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया गया है। इससे न केवल राज्य के मत्स्य पालकों को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि उत्तराखंड की ट्राउट मछली को वैश्विक पहचान भी मिलेगी। राज्य की 3 मत्स्यजीवी सहकारी समितियों ने उत्पादित ट्राउट मछली का निर्यात किया है। इन मछलियों को पहले गुजरात के वेरावल भेजा गया, जहां प्रोसेसिंग के बाद नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलतापूर्वक निर्यात किया गया। इस निर्यात से 33 मत्स्य पालकों को लगभग 23,50,000 रुपए की आय प्राप्त हुई है। निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए मत्स्य विभाग ने हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग और परिवहन पर 5,40,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई है। इसके अलावा मत्स्य विभाग ने दुबई में आयोजित गल्फ फूड एक्सपो के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से भी संपर्क स्थापित किया, जिससे भविष्य में निर्यात की संभावनाएं और मजबूत होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में 124 करोड़ रुपए की लागत से 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं चंपावत के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि ऐसी आधारभूत सुविधाएं विकसित करना है जो आने वाले दशकों तक चंपावत के विकास की मजबूत नींव बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार वोट बैंक की राजनीति नहीं, बल्कि उत्तराखंड के भविष्य की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि सरकार तुष्टिकरण नहीं, बल्कि संतुष्टिकरण की नीति पर कार्य करते हुए आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए निर्णय ले रही है। इसी क्रम में चंपावत जिला चिकित्सालय में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से 50 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया गया है। देहरादून की जीवनदायिनी रिस्पना नदी के संरक्षण, पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण के लिए जिला प्रशासन मिशन मोड में कार्य शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि विभिन्न विभागों के समन्वय से एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल नदी की सफाई करना नहीं, बल्कि रिस्पना को देहरादून की पर्यावरणीय धरोहर के रूप में विकसित करना है। जिलाधिकारी ने नगर निगम को रिस्पना नदी में गिरने वाले सभी नालों तथा कूड़ा निस्तारण स्थलों का चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए। डॉक्टर चौहान ने बताया कि प्रशासन ने इस दिशा में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों रणनीतियों पर कार्य शुरू कर दिया है। को बता दें कि राज्य में चार धाम यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है। अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु चार धाम के दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार के प्रभावी प्रबंधन के कारण यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की आस्था और पवित्रता को अक्षुण रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं से यात्रा की गरिमा बनाए रखने, स्वच्छता का ध्यान रखने तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। इसके साथ ही प्रत्येक मंगलवार को प्रसारित होने वाला सप्ताह सार का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। मुझे दीजिए अनुमति, सुनते रहिए आकाशवाणी देहरादून।
1: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति सप्ताह सार। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं श्रीमती दीपशिखा जैन की संस्कृत वार्ता। वार्ता का विषय है संस्कृत साहित्य वर्षा ऋतु वर्णनम।
2: वर्षा ऋतु, वर्षस्य सह समय यदा कस्यचित् प्रदेशस्य औसत वार्षिक वृष्टि अधिकांशः भवति। भारतवर्षेषु षट् ऋतवः सन्ति, तेषु वर्षाकालः द्वितीयः। प्रचंड मार्तन क्लिष्टा वसुधा वर्षागमे पुलकिता भवति। वर्षा ऋतुः न केवलं प्राकृतिक घटना अस्ति, अपितु जीवनस्य अनेकः वर्णः आनन्दः च समाविष्टः सन्ति। अस्य साहित्यिकं सांस्कृतिं च महत्त्वम् अमूल्यम् अस्ति। वर्षा ऋतुः जीवने नूतना ऊर्जा उत्साह च आनयति, साहित्ये च विशेष स्थानं प्राप्नोति। एवं वर्षा ऋतुः प्रकृतेः साहित्यस्य संस्कृतेः च सुन्दरं संगमं भवति, यत् जीवनाय नवीनतां सजीवतां च प्रदाति। वर्षागमनं प्रायशः मेघावृत्ते तिष्ठति, कदाचित् मेघ गंभीर घोषेण प्राणिनः सचकिता भवन्ति। अविरत वृष्टिपातेन नदी तड़ागादयः जलपूर्णः भवन्ति, तेषु कुमुदकमलानि प्रस्फुटन्ति। स्थले अपि कदम्बकेतकी प्रभृतीनि कुसुमानि विकसन्ति, जम्बूफलानि रसना तृप्तिं विदधति। भेकः सानन्द शब्दयन्तो, मयूरा मेघ दर्शनेन नृत्यन्ति। वनस्पतयः वृक्षः तृणः सस्यः शाकः इत्यादीनां सम्यक् वृद्धिं कर्तुं वर्षा साहाय्यम्। वर्षा ऋतौ परितः वातावरणं परिवर्तते, तापमानं न्यूनं भवति, वायुमण्डलं शीतलं भवति। वर्षाकारणात् नद्यः सरोवरेषु च जलस्तरः वर्धते, येन पशवः एतस्य जलस्य पेयस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। मृत्तिका वर्षाजलं शोषयति, यस्य उपयोगेन वनस्पतयः सौरशक्तिं पोषकरूपेण परिवर्तयन्ति। भारतीयसंस्कृतौ वर्षा ऋतोः विशेष महत्त्वम् अस्ति, न केवलं सस्यानां कृते अपितु विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अपि वर्षा महत्वपूर्णम् अस्ति। हरेला, हरियाली तीज, नागपंचमी इत्यादयः उत्सवः वर्षा ऋतौ आचर्यन्ते। रथयात्रा, जन्माष्टमी प्रवृत्त्यः उत्सवः भवन्ति। एते उत्सवः न केवलं धार्मिकविश्वासस्य अभिव्यक्तिं कुर्वन्ति, अपितु सामूहिकहर्षस्य सुखस्य च प्रतीकः भवन्ति। वर्षा ऋतुः संस्कृतसाहित्ये सुविस्तरेण सुन्दरतया च वर्णितः अस्ति। विभिन्नैः कविभिः लेखकैः च वर्षा ऋतोः सौन्दर्यं, तस्य प्रभावः, स्वाभाविकपरिवर्तनानि च अद्वितीयशब्दैः प्रकटितानि सन्ति। केचन प्रमुख उदाहरणानि यथा संस्कृत साहित्य से महान कवि कालिदासः मेघदूत ऋतुसंहार इति काव्ये वर्षा ऋतौ अद्वितीय वर्णनम अकरोत्। परम मेघदूत महत्वपूर्णम काव्यम यस्मिन् वर्षा ऋतुः अतीव सुंदरम सजीवम च वर्णनम कृतम अस्ति। अयम काव्यः द्विधा विभक्तः, पूर्वमेघ उत्तरमेघ च। अस्मिन् काव्ये मेघम दूत रूपेण प्रयुज्य यक्ष स्वप्रियं प्रति संदेशं प्रेषयति इति कथा साहित्य उत्कर्ष प्रतीकम् अस्ति। यक्ष प्रियभार्यां स्मरन् मेघम वदति, अस्मिन् यात्रायां यक्ष मेघाय वर्षा ऋतुः विविधानि प्राकृतिकदृश्यानि स्थानानि च वर्णयति। कालिदासः प्रकृतिं चेतनं भावुकं च पश्यति। पक्षिणः इत्यादयः चेतनतया वर्तन्ते, ते सर्वथा शाकाहारिणः सन्ति। प्रकृतिः अपि मनुष्यवत् वर्तन्ती दृश्यते। कालिदासस्य मेघदूतं वर्षाकालस्य वर्णनम् अतीव मार्मिकं सुन्दरं च कृतम्। वर्षा ऋतोः विशेषरूपेण वर्णनं कुर्वन्तः प्रसिद्धाः श्लोकाः निम्नलिखितरूपेण सन्ति। आसार प्रशमत गुरुभिः प्रावृषीणं नभोभिः स्निग्धच्छायं भवनं रुचो दूयमानेन धीरः, या वैरं संहत मनसां स्नेहविच्छेदहेतोः, सा दृश्यं त्वं शिखरी दृशदां दर्शनयास्यानयन्। अस्मिन् श्लोके यक्षः मेघं वदति यत् भवन्तः वर्षाकाले आकाशं परितः ये मेघा सन्ति, येन प्रेमविरेहो अन्तरं न्यूनीकरोति। त्वं कान्तसंयोगहेतु शैलशिलासमता भविष्यसि। अन्ये काव्येषु अपि कालिदासः प्रकृते सौन्दर्यं तस्या विविधानि कार्याणि च वर्णितवन्तः। अत्र केचन प्रमुखा बिन्दवः सन्ति। कवि वर्षाकाले लसत हरितपर्वतः, प्रवाहिताः नद्यः, पुष्पभारयुक्तः वृक्षः, जलप्रपातः च अतीव आकर्षकः इति वर्णितवन्तः। कविना मेघानां भिन्नरूपाणि तेषां गतिः च वर्णिता अस्ति। कदाचित् एते मेघाः आकाशे नृत्यन्तः दृश्यन्ते, कदाचित् पर्वतेषु स्थगितः। वर्षाकाले पशुपक्षिणां क्रियाकलापः अपि कविवर्णने सजीवः भवन्ति। तत्र मयूरनृत्यस्य, पपीहागानस्य, मत्स्यानां जले क्रीडानां च उल्लेखः अस्ति। कृषकाणां ग्राम्यजीवने च वर्षा ऋतोः प्रभावः अपि दर्शितः। यथा क्षेत्रेषु कार्यं कुर्वन्तः जनाः सस्यानि रोपयन्ति च। वर्षा ऋतोः सुन्दरं वर्णनं बाणभट्टस्य हर्षचरितम् इत्यत्र अपि प्राप्यते। अस्मिन् वर्षा ऋतोः प्रकृतेः विविधतायाः हरित्वस्य च वर्णनं कृतम् अस्ति। प्रवृत्त वरंत तरंग वाहिनी जगम मेघलयम अंबुवाहनः इति। अन्य संस्कृत कवयः अपि सन्ति, यथा बाणभट्टस्य कादंबरी इत्यस्मिन् वर्षा ऋतु वर्णनं विशेष आकर्षणेन सजीविताभिः च परिपूर्णम् अस्ति। सः कथयति, कांतार दुर्गम तराणि वनान्यल्प व्यालोल वनानि विषमाणि च दुर्बलस्य, न एतेन गन्तुम् उचितं भवता वियोगी तस्मान् विदर्भ नृपतिं शरणं प्रयाहि। अस्मिन् श्लोके बाणभट्टेन वने यात्रायां वर्षाकालस्य कष्टानि वर्णितानि। सः कथयति यत् वर्षाकाले वनानि दुर्गमः भवन्ति, बहवः शिकारी पशवः च सक्रियताम् आप्नुवन्ति, अतः अस्मिन् समये यात्रा न प्रशस्तम्। कवि जयदेवः स्वस्य गीत गोविंदम इति ग्रंथे अपि वर्षा ऋतो वर्णनम् श्रीकृष्ण राधायोः प्रेमनः संदर्भे कृतवान् अस्ति। सः कथयति, श्यामं तामधर कुञ्चलम् अब्जपत्र नेत्रं समाश्रितं अरुंधति हारिवामं, वामे तदंगम रुचि किंकिणी जालमाला लीलावलोकित घृतं मदनः पुनातु। अस्मिन् श्लोके श्रीकृष्णस्य वर्णनं भवति, यस्य नेत्रं कमलपत्रसदृशं मयूरपक्षसदृशं सौन्दर्यं च अस्ति। अत्र वर्षाकालस्य सौन्दर्यं श्रीकृष्णरूपेण चित्रितम् अस्ति। महाकविभवभूतेः अपि उत्तररामचरितम् इति काव्ये वर्षा ऋतौ अद्भुतवर्णनं प्राप्नोति। यथा क्वचित् घनः संध्या संध्यानुबद्धा, क्वचित् अरुसंपातः प्लवंगानां च गीतं, क्वचित् विरावोः दुन्दुभीनां प्रव्रतम् अब्धि कुसुमेषु यद्वा। अस्मिन् श्लोके कवि वर्षाकाले सायंकाले आकाश

0: वृक्षम् आच्छादयन्तः मेघा वायुवेगः वृक्षाणां पत्राणां फूत्कारः च वर्णितः। अन्ते निष्कर्षरूपेण वयं कथयितुं शक्नुमः वर्षा ऋतुः सर्वेषां निःश्वासः शान्तिः च प्राप्यते। कदाचित् आकाशः अतीव उज्ज्वलः स्पष्टः लघुनीलवर्णः च दृश्यते, कदाचित् सप्तवर्णस्य इन्द्रधनुषः अपि दृश्यते। समग्रं वातावरणं सुन्दरम् आकर्षं च दृश्यते। प्रायः अहं हरितवातावरणस्य इत्यादीनां चित्राणि गृह्णामि, येन ते मम केमरे स्मृतिरूपेण तिष्ठन्ति। धन्यवादः।
1: अभी आप सुन रहे थे श्रीमती दीपशिखा जैन की संस्कृत वार्ता। वार्ता का विषय था संस्कृत साहित्य वर्षा ऋतु वर्णनम। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर।
2: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
3: 8700014242।
2: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: श्रोताओं आपको एक बार पुनः याद दिला दे, रात्रि 9:30 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम परिचर्चा, भारत के निर्माण में संसदीय प्रक्रियाओं और संवाद की भूमिका। प्रतिभागी होंगे श्री अनूप वाजपेयी, श्री मुन्ना सिंह चौहान और कांजी निजामुद्दीन। प्रस्तुति होगी रमेश चंद्रा की। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत में सोनाली राठौर की गाई गजलें।

कार्यक्रम सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे सोनाली राठौर की गई गजलें। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। सिमरन फिल्म से फिल्म संगीत में पहला गीत है अरिजीत सिंह की आवाज में।

सिम्बा फिल्म से अगला गीत है राहत फतेह अली खान, आशीष कौर और तनिष्क बागची की आवाज़ में। रश्मि बिराग की शब्द रचना, तनिष्क बागची का संगीत।

इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से अगला गीत आप सभी तक पहुंच रहा है अमित त्रिवेदी की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल मधुर संगीत है अमित त्रिवेदी का।

फिल्म संगीत में कबीर सिंह फिल्म से आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत अखिल सचदेवा और तुलसी कुमार की आवाज में। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है अखिल सचदेवा ने।

0: फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण

0: अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने

0: डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
1: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल किया सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
5: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही।

0: का विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माही, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls.

0: 1.5 crore people, households having access to LPG. And this, to building this infrastructure for LPG, the distribution infrastructures, sourcing infrastructure, and also making it available across the country, I think is built for next 20 years minimum. And my sense is that it won't be that easy, for instance, to suddenly replace it. And then the question is, replace with what? You know, some people argue that we probably can replace it with electricity. I don't think that we are yet. Maybe 15 to 20 years from now, maybe when we go for cooking, which is based entirely on solar power, and solar power is produced on your rooftop. So basically, rooftop electricity is coming to your kitchen. I think it will happen. But it's going to take some time. I think the infrastructure we have built now is for LPG and is working very well. It has liberated our women who spend so much of their time in the kitchen, liberated in terms of emissions and pollution and their health and so on and so forth. What we need to work on is that make sure that if there is another energy shock like this one, that there is no disruption in LPG supply, which means that we diversify our supply and also we increase our own production. But even more importantly, that we kind of build strategic, you know, reserves for LPG for 3 months minimum. In case there is such a situation, for 3 months we don't need to worry, and in the meantime we can secure it from other sources. I think we need to work on at the same time as an alternative. Maybe in urban areas we can promote electricity for cooking. Maybe we can try to promote electricity and especially the solar based electricity and so on and so forth.
1: A while back, Mr. Taneja, you mentioned that the situation on the Strait of Hormuz is gradually returning to normal. So I would like to also understand from you, what is the impact on the aviation industry? Is there going to be a relief for the domestic as well as international travelers?
0: You see, the oil prices went up because of that war situation, because Iran weaponized oil, America weaponized oil in the entire area. Then the process, the oil got weaponized and the prices went up. So the issue, there is no shortage of oil in the world. No shortage. And if you go strictly by demand and supply fundamentals of oil, oil price should not be more than $62 or $63 per barrel. And if the oil was selling, you know, let's say in April for $120 per barrel for India, actually Indian basket price was even higher than $120 per barrel. That was all geopolitical premium. It was happening because thanks to that war. And so I think the other way, if you go by demand and supply, there is no reason the oil prices to be as high as they are even today. So I think turbine fuel for aeroplanes again come from the same source. It's the same oil. I mean, turbine fuel is a kind of kerosene, and we produce that. We base on import the oil that we import. The world over, there is no shortage of turbine fuel, or ATF as it is called. The disruption happened because the Strait of Hormuz was shut down. So I really, in terms of when you look at the demand for oil, in fact, you would be find it interesting. Today, demand for oil globally, incremental growth especially, is driven by India. All major exporters of oil look at India as their future. And I think that's something that we should be leveraging in order to cut better deals from all those exporters. But they need us. Probably they need us more than we need them. So no shortage of oil. And I personally think that, you know, once the situation in the Gulf region starts improving, turbine fuel prices will come down. And with that, the prices for flight tickets and all that would also start coming down.
1: Thank you so much, Mr. Taneja, for giving us such a deep insight into the subject. Thank you so much, Mr. Taneja, for joining us for Spotlight tonight.
0: Thank you.
2: You were listening to a discussion on India's energy security amidst global uncertainty. The participants were Narendra Taneja, energy expert, and Deeksha Saxena, Akashwani correspondent. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani.
3: Spotlight. FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम परिचर्चा, भारत के निर्माण में संसदीय प्रक्रियाओं और संवाद की भूमिका। प्रतिभागी है श्री अनूप वाजपेयी, श्री मुन्ना सिंह चौहान और काजी निजामुद्दीन, और प्रस्तुत करता है रमेश चंद्रा।
4: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने एक विशेष परिचर्चा का आयोजन किया है, भारत के निर्माण में संसदीय प्रक्रियाओं और संवाद की भूमिका। इस परिचर्चा में आज हमने तीन खास मेहमानों को आमंत्रित किया है, माननीय विधायक विकास नगर श्री मुन्ना सिंह चौहान, माननीय विधायक मंगलौर काजी निजामुद्दीन साहब और मुख्य संपादक अमर उजाला श्री अनूप वाजपेयी जी, आप तीनों मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।
5: थैंक यू।
4: माननीय विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान साहब, आजादी से लेकर आज तक भारत के एक आधुनिक राष्ट्र बनने की यात्रा में हमारी संसद का सबसे बड़ा योगदान आप क्या समझते हैं?
5: भारत के जब आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं या भारत में लोकतंत्र के उदय की बात करते हैं
4: जी,
5: तो कई बार मैं कंफ्लिक्ट में रहता हूँ लोगों की उस बात से सोचने से, जो बहुत लोग कहते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारी मदर पार्लियामेंट है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें हजारों वर्ष पुरानी है। हमारे यहाँ तो वैदिक कालखंड में भी गणराज्य का कंसेप्ट था और बाकायदा पाटलिपुत्र में दुनिया की सबसे पहली विश्व संसद हुई थी, वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट 1893, उससे बहुत पहले। लेकिन हम लोग यदि मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें तो हम आज़ादी के बाद से ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से निकल करके हमने, लेकिन दुनिया हैरान है, हैरान होना चाहिए कि जहां छोटे छोटे मुल्क अपनी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को इंटैक्ट नहीं रख पाए, उसको सेफगार्ड नहीं कर पाए, वहां भारत ने इतना बड़ा देश होने के बावजूद, इतनी सारी विविधता मूलक समाज होने के बावजूद, हमने निरंतर अपने जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन उसको एनरिच किया, उसको ताकतवर बनाया और निरंतर हम उसको इंक्लूसिव बनाते चले गए। ये सब मैं जोर देकर के कह रहा हूं कि जो अब्राहम लिंकन का लोकतंत्र के बारे में कहावत थी कि गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, तो वो जो गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, उस इंस्टीट्यूशन को हमें निरंतर मजबूत करने का काम किया और उसी की वजह से है कि आज ना केवल हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है बल्कि दुनिया की सबसे समृद्धशाली डेमोक्रेसी है। हमारे यहां जितनी हमारे यहाँ होती है, जितनी तमाम सारी खुलेपन के साथ बातें हमारे यहाँ होती है, दुनिया के कम देशों में होती है और इस लक्ष्य को हमने कम समय में हासिल किया है। और एक खास बात मैं और कहता हूँ, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत शानदार प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया आर्टिकल 118 का, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि लेजिस्लेचर इज द मास्टर ऑफ इट्स ओन बिजनेस। जो हमारी संसद है, जो हमारी राज्य की विधायिका है, लेजिस्लेचर है, वो अपने कामकाज की मालिक खुद है। तो आर्टिकल 118 ने वो प्रोविजन किया है जिसे कहते हैं कंडक्ट प्रोसीजर एंड रूल्स ऑफ बिजनेस, कि हाउस ही अपने आप अपने कामकाज के तरीकों का निर्धारण करता है और अपने आप ही उसके बारे में रूल्स फ्रेम करता है। ये बाकायदा एक प्रकार से फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे लेजिस्लेचर को है, वो दी गई है। ये अपने आप में बड़ा एक खूबसूरत वो है। और हम और काजी साहब, हम लोग विधायक होने के नाते या लेजिस्लेचर का पार्ट होने के नाते, हम उसी रूल बुक को लेकर के हाउस में कामकाज करते हैं, अपोजिशन में बैठे हुए उसी रूल बुक का इस्तेमाल करके सरकार को क्वेश्चन करते हैं, सरकार उसी रूल बुक का इस्तेमाल करके अपने चीजों को जस्टिफाई करता है। और उसमें से हम लोग कई बार निकलते हैं जब कहीं होता है कि किसी सदस्य के काम करने में या सरकार के काम करने में या मिनिस्टर के जवाब देने में या किसी सदस्य के कोई प्रश्न पूछने में या विपक्ष के द्वारा कोई मोशन मूव करने में यदि कहीं ये लगता है कि जो रूल बुक है इसका वायलेशन हो रहा है, तो उसे ही हम लोग पॉइंट ऑफ ऑर्डर के रूप में रेज करते हैं कि व्यवस्था का प्रश्न है, ये इसके अंदर चीजें हैं। तो ये बड़ा सुंदर चेक एंड बैलेंस है, इसके लिए हम सब भारतवासियों को गर्व होना चाहिए।
4: माननीय विधायक मंगलौर काजी निजामुद्दीन साहब, संसद की बात हो या विधानसभा की, इनको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। देश के विकास के लिए कानून बनाने में पक्ष विपक्ष के बीच संवाद और बहस कितनी जरूरी है, आपसे जानना चाहेंगे।
6: संवाद, विचारों का आदान प्रदान ही लोकतंत्र की आधार है और जो हमारे संविधान निर्माता हैं, उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा। और कुछ चीजें लिखित होती हैं संविधान में है, फिर उसके बाद कुछ चीजें रूल बुक में, उसकी रोशनी से रूल बुक बनती है, नियमावलियां बनती हैं, फिर कुछ चीजें नियमावलियों में भी नहीं आती, तो वो परंपराएं होती हैं, स्थापित परंपराएं होती हैं जो संसद से, उत्तर प्रदेश विधानसभा से, उत्तराखंड विधानसभा में आई, उन स्थापित परंपराओं का भी पालन किया जाता है। तो उनके चलते सभी जो चुने हुए विधायक या सांसद सदन में पहुंचते हैं, उनके विचारों का आदान प्रदान होता है और हर तरह का विचार वहां आता है, उन सभी विचारों को सम्मिलित करके फिर उस कानून में कमियां निकाली जाती हैं, उसकी अच्छाइयां बताई जाती हैं, उनकी आलोचना होती है। और आलोचना करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जनहित होता है, किसी के व्यक्तिगत कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं होते, कोई पर्सनल उसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं होनी चाहिए, और उन सभी बातों को देखते हुए फिर वो कानून बनते हैं और वही कानून कानून फिर आगे आकर जनहित में जनता के लिए सदुपयोग उनका हो सके। आदान प्रदान विचारों का यही उत्तराखंड के शहीदों के सपनों का भी उत्तराखंड की बात मैं करूं और यही संविधान निर्माताओं का भी सपना यही रहा होगा कि विचारों का आदान प्रदान हो और वही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है।
4: बादक महोदय अनुभव।

0: वाजपेयी जी, जैसा कि काजी साहब ने कहा कि जो विचारों का आदान प्रदान है उससे एक बेहतर लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है, लेकिन इसमें मीडिया, जैसे हम चौथा खंबा कहते हैं लोकतंत्र का, उसकी भी बड़ी भूमिका है। जो भारत के लोग हैं, जैसे हम कहते हैं हम भारत के लोग, वहां तक संदेश पहुंचे कि जो विधान परिषद है, विधानसभा है या हमारा संसद, उसमें हो क्या रहा है। इस सब में जो हमारी मीडिया है, और आज डिजिटल मीडिया का युग है, अगले ही पल सूचना लोगों के बीच में होती है, कह सकते हैं हम भारत के लोगों के बीच में होती है, तो इसमें मीडिया को किस तरह से देखते
1: कि
0: हैं?
1: मीडिया का काम एक मिरर की तरह, एक शीशा है, शीशे में जो दिखेगा वैसा ही दिखाएगा। दोनों पक्ष हैं, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, सबकी अपनी अपनी बाध्यताएं हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। मीडिया का काम उसमें एक ऐसी भूमिका का है कि जो दिख रहा है उसी को दिखाना। अब उसमें अच्छी चीजें भी दिखाई जाती है और बुरी चीजें भी दिखाई जाती है। अच्छी चीजों में क्या है कि सरकार किस दिशा में चल रही, सरकार क्या काम कर रही, जनता के हित से जुड़े हुए क्या काम है, जनता तक पहुंचेंगे कैसे, ये सारे पक्ष हो सकते हैं। लेकिन आप देखते होंगे अक्सर क्या होता है, वो रील दिखाई पड़ती है, वो उस तरीके के क्लिपिंग्स बाहर निकल के आते हैं, चाहे संसद हो विधानसभा से, कि किसी विधायक ने कुछ अपशब्द कहा, किसी ने कोई ऐसी टिप्पणी करी, या कोई ऊंग रहा है, या कोई सो रहा है। तो ये सब जिम्मेदारी भी मीडिया की है, ताकि उस जनता जाने कि उसका जो प्रतिनिधि जिसको उसने चुन के भेजा वो कितना गंभीर है, वो अपने क्षेत्र के प्रति, अपने लोगों के प्रति गंभीर है कि नहीं, ये भी काम मीडिया का है। अगर मान लिया कोई विधायक है वो अपनी विधानसभा की बात रखता है, या सांसद है वो उत्तराखंड की बात पार्लियामेंट के अंदर रखता है, तो हमको लगता है कि उसके क्षेत्र के लोगों के साथ साथ देश के लोग भी जानेंगे कि ये सांसद एक्टिव है, ये विधायक एक्टिव है, सकारात्मक ढंग से ये अपनी बात रखता है। कुछ लोग होते हैं, अपना अपना सबकी शैली होती है, तो उसमें कुछ नकारात्मकता भी लोगों की होती है, उनका भी एक अपना लहजा होता है बात करने का, बात कहने का। ऐसा नहीं है, वो भी चुन के आए हैं, उनकी जनता ने उनको चुन के भेजा, तो सबके अपने अपने तरीके हैं। एक सकारात्मक ढंग से भी अगर बात कही जा रही वो भी जनता तक पहुंचनी चाहिए। जो सरकार को हो सकता है नकारात्मक तो अच्छा ना लगे, लेकिन अच्छा बुरा जो कुछ भी है, जैसा भी है, मीडिया की भूमिका है, उसको दिखाना चाहिए। हमको लगता है वो स्पष्टता के साथ दिखाना चाहिए।
0: वाजपेयी साहब, अभी आपने कहा कि जो भूमिका है सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, लोगों को सकारात्मक ढंग से दिखानी चाहिए, लेकिन कभी कभी मीडिया पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि किसी एक को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है।
1: आरोप की बात आपने कही ना, ये सच्चाई भी बहुत सी चीजें होती है, बहुत से आरोप में होती है। मीडिया का फैलाव हुआ है, और हर व्यक्ति जिसके हाथ में मोबाइल है वो मीडिया हो गया है।
0: जी
1: पब्लिक के पास उसके मोबाइल पे कहां से क्या न्यूज जा रही है उसको पता नहीं है। जब आप पड़ताल करेंगे तो इसके लिए बहुत ऑथेंटिक भी आपको होना पड़ेगा कि उस मीडिया हाउस की, जिसकी एक लेगेसी है सालों से, जो अखबार निकल रहे हैं, या एक ऐसा मीडिया ग्रुप है जो बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, उसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी भी है, और वो तभी क्रेडिबिलिटी बनी है जो इतने साल से तो वो उसको मेंटेन करके चल रहा है। क्या हो रहा, कुछ नई नई चीजें एकदम से हमारे जीवन में इंक्लूड होती जा रही नई पीढ़ी पे। हमको लगता है कि मोबाइल पर चलने वाली हर खबर सच है, या हर कही हुई बात सच है, किसने क्या बात कही, कहाँ की कटिंग कहाँ पे चली गई, किसने किस आगे पीछे हो गया। विधानसभा से ही दो तरीके की क्लिपिंग निकली और उसमें दोनों को एक साथ जोड़ के चला दी गई। हो सकता है कि समाज में कोई विद्वेष पैदा कर दे, हो सकता है समाज में एक नई तरीके की कोई जागृति हो जाए, हो सकता है कि उसका संदर्भ कुछ और रहा हो, कटिंग काट के किसी ने कुछ दिखा दी तो पब्लिक के बीच में जाएगी, तो एक मैसेज गलत जाएगा। हमको ये भी बहुत ध्यान रखना होगा। मीडिया की भूमिका इसलिए और ज्यादा बढ़ गई है कि हर आदमी मीडिया के पता आरोप, जैसे आपने कहा आरोप लगाने की बात, कौन सी मीडिया पे, किस तरीके की मीडिया पे। हमको लगा अखबार में जो भी बात लिखी जाती है वो एक दस्तावेज होता है, प्रिंट मीडिया जो भी लिखता है वो डॉक्यूमेंट होता है, उसको आप कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं, उस पर हम लोग खंडन भी लिखते हैं। अगर मान लिया कोई गलत बात छपती है, एक शब्द भी छपता है, तो अखबार को इस बात की गुंजाइश रहती है, और अखबार का ये धर्म भी है कि अगर कोई गलत बात उसके अखबार में कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन गलत छपी है तो उस पर भूल सुधार होता है। आप टीवी पे देख लिए, सोशल मीडिया पे देख लिए, कहीं भूल सुधार को दिखता है, उसने दिखा दिया, कब दिखाया, किसने दिखाया, कहां दिखाया, क्या दिखाया, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मीडिया को एक पूरा समग्रता के साथ देखना है, तो हमको ये भी देखना होगा। दूरदर्शन है, दूरदर्शन के प्रति लोगों के, या आकाशवाणी के प्रति लोगों की क्यों आस्था है कि ठीक है यहाँ जो भी बात कही जाएगी या सुनाई जाएगी दिखाई जाएगी वो ठोक बजा कर होगी, चारों पक्षों से बात होगी। अगर किसी विधायक के खिलाफ कोई बात आई है निकल के तो उसका विपक्ष बहुत अनिवार्य है लेना। ये मीडिया की भूमिका है। सोशल मीडिया का एक अलग तरीके का विस्तार हो रहा है। हम जब घाल मेल करके एक साथ जोड़ के देखते हैं तो हमको उसका खराब स्वरूप दिखाई पड़ता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमको लगता है स्वरूप हमारा, मीडिया का जो है भूमिका है वो बिल्कुल स्पष्ट है। हमने आपसे कहा कि हम उस शीशे की तरह हैं, जो देखेगा वो दिखाएगा।
0: साहब माननीय विधायक विकास नगर, आप लोगों के बीच में जाते हैं, लोग भी कहते होंगे अखबारों में ये छपा है, टीवी में ये आया, रेडियो में ये सुना, समाचार में ये सुना, आप किस तरह की मीडिया की अपेक्षा करते हैं?
2: देखिए, अभी हमारे प्रबुद्ध साथियों ने, मेरे मित्र काजी साहब ने और बहुत प्रखर पत्रकार अनुप जी ने कहा, बेसिकली क्या है, जब हम इंडियन डेमोक्रेसी को देखते हैं, जैसा मैंने एक सब शुरू में ही कहा कि बहुत एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है, बहुत रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, और आपने भी खुद भी इस कार्यक्रम की भूमिका रखते हुए कहा था कि बहुत बार हम इसको देखते हैं जब लोग बात करते हैं तो मैं बहुत उनसे सवाल करता हूं। हम लोग महसूस करते होंगे कई बार बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि कौन सुपीरियर है, कई बार प्रश्न उठते हैं कि पार्लियामेंट्री सुपीरियर, सुप्रीम, कई बार कोई कहने लगता है सुप्रीम कोर्ट है, कोई कहने लगता है आई मीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है। तो देखिए कितनी शानदार बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो सॉवरेन सर्वशक्तिमान भारत के लोग है और हम जो कुछ है वो भारत के लोग जो जो काम हमें सौंपते हैं, जो जो अधिकार सौंपते हैं, हम उनके अथॉरिटी के अंडर उसको एक्सरसाइज करते हैं। मीडिया भी जो काम कर रहा है वो भी जो प्रीएम्बल के अंदर वो चार बातें हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, वो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फाइन प्रोविजन है, लेकिन अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर ये सबसे ज्यादा डिबेटेड सब्जेक्ट रहा है पूरे देश में, कोर्ट्स में भी सबसे ज्यादा डिबेटेड ये सब्जेक्ट रहा है। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर भी जब कभी भी डिबेट्स होती रही तो हमेशा ये बात करके निकाला गया कि जो जिस बात को वाजपेयी साहब ने कहा, जो बिल्कुल उस बात को सपोर्ट करता है कि इरिस्पॉन्सिबल तरीके से फ्रीडम का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक प्रकार से कहा जाता है, जैसे मैं अपने जीवन में भी कहता हूं, लोगों को जब अधिकार देने की बात आती है काजी साहब, तो अमूमन मैं कहता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स द पर्सन रिस्पॉन्सिबल। कई बार ये प्रश्न उठता था कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया, शुरू शुरू में युवा महिलाएं तो घर से बाहर नहीं निकलती है, वो तो परिवार के सदस्य के बिना नहीं निकलती है, पढ़ी लिखी कम है, इस तरह की बातें हुई। तो हमने धीरे धीरे शुरू में कहा कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, और धीरे धीरे हम ये नतीजा देख रहे हैं कि चंद वर्षों में पंचायतों वगैरह जो हमारा ग्रास रूट डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन थे उसमें प्रिवेल कर गई महिला, उन्होंने ओवरटेक कर लिया पुरुषों को, क्योंकि जिम्मेदारी उनको दी, वो जिम्मेदार बनती चली गई, उनका एम्पावरमेंट होता चला गया। इसी प्रकार से डेमोक्रेसी के बारे में भी हमारे संसद के जो पहले सेक्रेटरी जनरल रहे केएन कॉल साहब, जिनके हम किताब पढ़ते हैं कॉल एंड सकदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कमेंट्री भी है और हम लोग पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में भी उनकी किताबें पढ़ते हैं, क्यों काजी साहब, कश्यप साहब की एंड कॉल एंड सकदर की, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही, भले ही वो मेंबर नहीं हो, सेक्रेटरी जनरल, लेकिन सेक्रेटरी जनरल पूरे हाउस को प्रोसीडिंग को कवर करते रहे और कोडिफाई उसको करते थे। उन्होंने लिखा आम धारणा के विपरीत, आम धारणा क्या बनती है, आम धारणा ये बनती है लेजिस्लेचर मजबूत होगा तो सरकार कमजोर होगी, आम लोग ऐसे सोचते हैं, सरकार मजबूत होगा तो लेजिस्लेचर कमजोर होगा, उसको कोई, उन्होंने लिखा मजबूत लेजिस्लेचर ही मजबूत सरकार बनाते, सरकार मजबूत है लेजिस्लेचर मजबूत है, सरकार कमजोर है तो लेजिस्लेचर भी कमजोर है। और उन्होंने यहां तक कहा कि कभी भी लेजिस्लेचर को या सरकार को दे शुड नॉट ट्राई टू ओवरटेक ईच अदर। जिस प्रकार से अभी काजी साहब ने भी कहा, हम तो कई बार जब रूल बुक हमारी, कई बार हम कानून की बात करता हूं तो आई यूज द वर्ड कि एज फार एज द लॉ एक्सटेंड्स, जहां तक कानून की सीमा हो सकती है, हम हाउस के काम के बारे में कहते हैं एज फार एज द रूल एक्सटेंड्स, लेकिन जहां रूल्स की सीमाएं खत्म हो जाती है वहां, जैसे काजी साहब ने कहा, वो सुंदर परंपराएं हैं जो कन्वेंशन जिसको हम बोलते हैं, जो परंपराएं बनी हुई है, फिर हम उसका सारा लेते हैं, और सारा ही नहीं लेते, कई बार यदि रूल्स में और परंपरा में कंफ्लिक्ट है देन द परंपराएं विल प्रिवेल, फिर हम ये कहते हैं कि परंपराओं को हम रूल से भी ज्यादा महत्व देते हैं। तो इतनी चेक एंड बैलेंस और इतनी सुंदर, लेकिन उससे जो इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, इस बात पे थोड़ा सा हम सभी लोग अपने आप को चैलेंज करते हैं। कई बार हमें सबको अपने आप को चैलेंज भी करना चाहिए इस उसमें कि क्या वास्तव में जितनी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या वास्तव में हम उतना रिस्पॉन्सिबली काम करते हैं कि नहीं, क्या हम वास्तव में उतने रिस्पॉन्सिबल होकर के हाउस के अंदर काम कर पाते हैं कि नहीं। तो ये चैलेंजिंग प्रश्न अपने आप से भी हमें पूछना चाहिए। कई बार इस काउंट पे निराशा भी होती है और उस निराश होने वाले लोगों में से हम दो भी हो सकते हैं कि कई बार हम जो अपने आप को, अपने आप से जो सवाल पूछते हैं तो उसमें अपने आप को फेल होते हुए पाते हैं कई बार कि यस, जो एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन में पूरी तरीके से हम लोग खड़े नहीं उतरते।
0: काजी निजामुद्दीन साहब, सर्वदलीय बैठकों की एक लंबी परंपरा हमारे देश में रही है, इनको लेके क्या कहेंगे, ये जो संसदीय प्रक्रियाएं हैं इनके सुगम एवं सफल संचालन में जो हमारी संसदीय परंपराएं हैं किस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है।
3: हमारा डेमोक्रेसी इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है, आदरणीय मुन्ना सिंह जी बता ही रहे थे, और इसमें जनता ने जिसको चुनकर भेजा उन सबके विचार आने जरूरी हैं। ये अलग बात है कि ज्यादा लोग चुनकर जिसके आ गए वो सत्ता पक्ष हो गया और जो लोग कम चुनकर आए वो विपक्ष हो गया, लेकिन जो संविधान निर्माता हैं उनकी सोच रही है कि जो अल्पमत में लोग जीत कर आए हैं उनके भी विचारों को सुना जाए और उनके विचारों को भी सम्मिलित किया जाए। तो जो सर्वदलीय मीटिंग्स हैं वो कंसेंसस बनाने के लिए हैं, ब्रॉडर कंसेंसस हो जिसमें सभी लोगों की सोच, सभी क्षेत्रों की सोच, सभी लिंग्विस्टिक अप्रोच, हम कहीं तमिलनाडु का है तो उसकी भी बात आनी चाहिए, कश्मीर का उसकी भी बात आनी चाहिए, तो कहीं तमिलनाडु में दूसरा दल है, कर्नाटक में एक है, कश्मीर में एक है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में अलग अलग है, तो किन लोगों ने किन को चुनकर भेजा। एक बार तो दार्जिलिंग से अनअपोज्ड करके उन्हें भेज दिया, राजस्थान के जसवंत सिंह जी को, जसवंत सिंह जी को चुनकर भेजा, तो किस सोच के साथ भेजा, उन्होंने अपने वहां के लोकल इश्यूज पर चुनकर भेजा। अब दार्जिलिंग का जो इशू है वो पूरे देश से अलग हटकर था, तो संविधान निर्माताओं की जो सोच रही है वो ये रही है कि एक भी संसदीय क्षेत्र के लोगों ने जिसको चुनकर भेजा उनकी भी बात हर विषय पर सुनी जानी चाहिए। तो ये जो सर्वदलीय बैठकों का अलग अलग मंचों पर अलग अलग फोरम पर कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूसिव अप्रोच का ही है कि सब दलों की, सब क्षेत्रों की, सब जगहों की, सभी सोच रखने वाले लोगों की बात नीति निर्धारण के समय आ सके।
0: अनु बाजपेयी जी, आज के जो आधुनिक जनसंचार के साधन है, माध्यम है, क्या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे संसद के हों चाहे विधानसभा के हों, इनको पहले से ज्यादा जिम्मेदार जो हम भारत के लोग हैं उनके प्रति बना पा रहे हैं?
1: देखिए, दो चीजें हुई हैं, तो सेल्फ मीडिया भी हो गया है, हर जितना राजनेता है वो अपने साथ एक, चूंकि माध्यम इतने मिल गए हैं सोशल मीडिया पे, उसका फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सब तमाम चीजें, हर व्यक्ति आत्ममुग्ध सा हो गया है, हमको लगता है ये व्यवस्था होने से, उसको लगता है फोटो डाली जाएगी अच्छी, हो सकता है मीडिया में ना आए फोटो इस एंगल वाली, तो वो अपने एंगल की फोटो छांट के अपनी बात को जो नहीं है उसको उस तरीके से पेश करके वो अपनी बात रखता है मीडिया में, तो एक माध्यम हो सकता है, वो व्यक्तिगत उनका अपना है, इसमें कोई खराब भी नहीं, किसी को भी ये अधिकार है कि वो अपनी बात अपने ढंग से रख सके। लेकिन मीडिया की भूमिका बिल्कुल डिफरेंट है। अगर एक राजनेता ये कोशिश करने लगेगा मीडिया से कि साहब ये वाली शर्ट की, ये वाली रंग की, या ये वाली फोटो, या ये ऐसे हाथ उठाते हुए या उंगली करते हुए ऐसी फोटो ही आप अपने अखबार में, हाँ आप विज्ञापन देते हैं, आप उस पोस्टर बनाइए, पोस्टर में लगने लायक है, तो वैसी ही फोटो अपेक्षा कीजिए कि मीडिया में दिखाया जाए, या जो शब्द आपने बोले हैं या जो आप उसको दबा दिया जाए, छुपा दिया जाए, या ये वाला है इसको ज्यादा उभार के यही लाइन आनी चाहिए, वहां पे थोड़ी सी हमको लगता है दिक्कत महसूस होती है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। विपक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सत्ता पक्ष है। विपक्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि समाज का निर्माण ही इस तरीके से बना है, अगर बिल्कुल कोई चीज नहीं सुनी जाएगी या किसी तरीके की कोई बात नहीं होगी तो निरंकुशता आएगी समाज में। तो समाज की बात को, और हमको लगता है मीडिया की जिम्मेदारी न सत्ता पक्ष से है न विपक्ष से, हमारी अखबार के नाते या हमारी मीडिया के नाते हमारी जिम्मेदारी उस पब्लिक से है, जैसा बताया कि जनता के लिए उसकी जो समस्याएं हैं उनको ठीक ढंग से उठाया जा रहा कि नहीं, उनकी समस्याओं को ठीक ढंग से सोचा जा रहा कि नहीं, उस पर विचार हो रहा कि नहीं हो रहा, ये जिम्मेदारी मीडिया की बनती है। तो इसमें किसी को भी किसी तरीके का वो नहीं होना चाहिए कि सरकार को लगता है कि नहीं ठीक है खबरें छपेंगी या खबर दिखाई जाएगी, कहीं कोई किसी तरीके की परेशानी है लोगों की, तो क्या है लोग अगर परेशानी में है तो सरकार की भी जिम्मेदारी उतनी है कि उस परेशानी को दूर करे, और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उस परेशानी को ठीक ढंग से उठाए या उसको आत्मसात करे अपने साथ।
0: मुन्ना सिंह साहब, आपका बहुत लंबा अनुभव है विधायी कार्यों का, संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं और प्रक्रियाओं का, क्या परिवर्तन देखते हैं आप जब आप शुरू में विधायक बने थे तब से और अब तक?
2: देखिए, दो तीन चीजें मैं बहुत प्रमुखता से उसके ऊपर टिप्पणी करूंगा। अभी अनुप जी ने कहा, हम लोग भी ये बात सुनकर के ही बड़े हुए, और एक प्रकार से राजनीति के छात्र के नाते यही कि प्रेस एक फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का।
0: जी,
2: पहले हम देखते थे कि मीडिया खालिस तथ्यों को रिपोर्ट करता था, यूपी असेंबली में खालिस तथ्यों को रिपोर्ट करता था, क्वालिटी मटेरियल ऑफ द फैक्ट कि वो सत्ता पक्ष में विपक्ष में कौन है क्या खालिस, तो वो जबरदस्त उस रिपोर्टिंग की और उस कंटेंट का बड़ी विश्वसनीयता थी। आज की तारीख में दुर्भाग्य से बहुत सारी जगह तमाम सारे मीडिया ग्रुप्स का भी अपना एजेंडा रहता है। मैं क्षमा चाहूंगा वाजपेयी जी के साथ ये बात कहते हुए, उनका भी अपना एक एजेंडा रहता है। मीडिया यदि कवर कर रहा है हाउस को, तो मेंबर ने या मिनिस्टर ने या स्पीकर ने जो कहा है उसको रिपोर्ट करने का स्वतंत्र रूप से पूरा अधिकार है, लेकिन आप उसको कंप्लीटली डिस्टॉर्ट करके और अपने व्यू पॉइंट को उसमें सुपर इम्पोज करके और मेरी बात बना दें तो ये तो अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी कहा गया कि मैं ये मानता हूं कि हाउस के अंदर जो कुछ हम बात करते हैं, हाउस के बाहर भी प्राइवेटली एक हाउस चलता है जिससे हम लॉबी कहते हैं, वहां पे बैठ करके भी बहुत सारे कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइंस, बहुत सारी बड़ी सदा संहिता के साथ बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। और मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि पक्ष और विपक्ष के जब अनौपचारिक चर्चाएं होती है, अनौपचारिक चर्चाएं को भी केवल एक हास्य व्यंग से बाहर भी यदि निकल करके चलें, तो उससे भी कई बार कई सामाजिक विषयों पर एक दिशा देने का काम उसके अंदर होता है। इसलिए आपने जो एक प्रश्न किया था कि जो मल्टी पार्टी फोरम्स होते हैं या जो ऑल पार्टी कमिटीज होती है, उसके अंदर आपने देखा भी होगा कि कई बार आप सदन के अंदर देखते होंगे कि बड़े तीखी बहस होती है, बहुत कई बार चाहते हुए

0: प्रकार से कंसेंसस ड्रॉ करने की हमारी सबकी कोशिश होती है कि कमिटीज के अंदर जो चीजें निकल करके आए, जो प्रत्यावेदन कमेटी का बने, वो लगभग लगभग उसमें पूरे के पूरे सभी पार्टी के सदस्यों का कंसेंसस हो। सब में नहीं भी हो पाता है, लेकिन अधिकांश केसेज में वो कंसेंसस उभर करके उसके अंदर आता है। तो साथ ही साथ ये बात भी है कि हो सकता है कुछ चीजें जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टोइंग द पार्टी लाइंस, हाउस के अंदर सदस्य कुछ बात कहते हैं, बट वो जब स्मॉलर हाउस में जाता है, कमेटी को भी हम लोग एक्सटेंडेड हाउस कहते हैं, जो हाउस की जो कमेटीज होती है उसको भी हम मिनी हाउस कहते हैं, उसे भी एक्सटेंडेड हाउस कहते हैं, वहां जब बैठ के क्लोज रोड डिस्कशन करते हैं तो उसमें अधिकांश में कंसेंसस उभर करके आता है। कुल मिलाकर के ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है, लेजिस्लेचर की भी जिम्मेदारी है, आमजन की भी जिम्मेदारी है कि आमजन भी, जैसा अनुप जी ने कहा, आजकल समस्या ये हो गई है कि आप अपना ही कैमरा लगा लीजिए, कोई पूछ रहा है खुद ही अपने सामने रख करके अपने रिकॉर्ड कर दीजिए, जिसको जो मर्जी गाली दे दीजिए, जिसके बारे में जो मर्जी कुछ कह दीजिए, जो मनगढ़ंत कुछ आ रहा है वो आरोप लगा दीजिए, जो कुछ अपने आप को महान बता सकते हो अपने मुंह से अपने आप को बताते चले जाइए। तब इसमें बड़ा एक वास्तव में, और उसमें भी आग में घी का काम एक और हो गया जब से AI टूल्स आ गए। AI टूल्स में तो अब आपको ये भी 100 बार सोचना पड़ता है कि ये जो कहा जा रहा है ये आवाज आपकी तो है नहीं, ये जो चेहरा जो दिखाया जा रहा है ये चेहरा आपका है नहीं, ये तो डीप फेक है, ये तो आवाज डीप फेक है, ये तो AI से जनरेट किया गया है। तो अब तो चैलेंजेस कई तरीके के आ गए, मीडिया के सामने भी गंभीर चैलेंजेस है।
1: बिल्कुल ठीक है।
0: फिर अब आप उसमें कॉपीराइट वगैरह फलाना ढिमकाना कहां कहां उलझेंगे, क्या क्या करेंगे। तो हमें बहुत इसमें, जितना हम टैक्स सेवी होते चले जा रहे हैं उतने ही हमारी जो बहुत सारी चीजें हैं जिसे कहना चाहिए चुनौतियां भी बढ़ती चली जा रही है।
2: काजी निजामुद्दीन साहब, जैसे अभी मुन्ना सिंह साहब ने कहा जो हाउस होता है उसका शोर शराबा ये सब चीजें तो बाहर जो मीडिया है वो कवरेज कर देता है, आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही, कमेटीज हाउस का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है, वो वहां जो कंसेंसस होती है, हर व्यक्ति की बात बड़े कायदे से सुनी जाती है, ये चीजें प्रेस क्यों रिपोर्ट नहीं करती? इससे तो हमारे जो बाहर का जनमानस है, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, उनके मन में भी एक भाव आएगा, वाह हमारी परंपराएं कितनी शानदार है, ये चीजें क्यों नहीं लोग जान पाते हैं? संसद का शोर शराबा हंगामा, उसके बारे में ज्यादा पता चलता है हमारे लोगों को।
1: एक दिन पत्रकारिता दिवस पर मुझको बुलाया गया
2: जी,
1: देहरादून प्रेस क्लब की बात है, तो मैंने अपनी बात वहां रखी और मैंने उनके सामने अपनी सोच रखी। आम तौर पर संसद या विधानसभा की जो कार्रवाई होती है उसमें जो सामान्य रूप से देखने वाले लोग हैं, सुबह को अखबार पढ़ने वाले लोग हैं, वो यही पढ़ पाते हैं, कम फॉलो करने वाला व्यक्ति यही समझ पाता है कि हंगामा हुआ, हंगामे के बाद सदन स्थगित कर दिया गया। चौथे स्तंभ से सोच रखी मैंने वहाँ, क्या लोकसभा राज्यसभा और विधानसभाओं में सिर्फ हंगामा ही होता है? क्या वहाँ प्राइमरी एजुकेशन से लेकर मेडिकल एजुकेशन से लेकर न्यूक्लियर साइंस से लेकर नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर तमाम कृषि, युवा, बेरोजगार, किसान, खेती, विदेश नीति या उत्तराखंड में आए कानून व्यवस्था, भूमि या पलायन या इन पर चर्चा नहीं होती? बिल्कुल होती है। लेकिन मैं अगर किसी दिन पहाड़ की खेती पर, मंडुआ पर अगर मैं अपने विचार रखता हूँ, या मैं उत्तराखंड में हरिद्वार में गन्ने की फसल पर मैं अपने विचार रखता हूँ, या मैं पीरियोडिक लेबर फोर्स की आंकड़े रखकर उस पर मैं अपने विचार रखता हूँ, तो किसी एक अखबार के छठे पेज के सातवें कॉलम में 3 लाइनें मुझे भी मिल जाएंगी। 3 दिन 5 दिन सदन चलेगा तो 3 दिन मुझे यहाँ जगह मिलेगी। मैं अगर ये चाहूंगा कि मुझे फ्रंट पेज मिले सुबह को, तो मैं भी जाऊंगा किसी इशू को लूंगा और बीच वेल में जाकर अखबार लेकर एक कागज का टुकड़ा लेकर ऐसे मैं फाड़ कर फेंक दूंगा, मुझको फ्रंट पेज का फोटो मिलेगा। थोड़ा मेरा अपने चौथे स्तंभ से मेरे पत्रकार भाइयों से मेरा आग्रह है कि अखबार फाड़ने वाले, कागज फाड़ने वाले को, शोर मचाने वाले को 7वें पन्ने पर ले जाएं, 2 लाइन उसे दें, लेकिन जो अच्छी एक एकेडमिक बहस कर रहा है, इशू रेज कर रहा है, इशू बेस्ड कोई बात कर रहा है, आंकड़ों के तथ्यों के तहत कोई बात कर रहा है, उसको फ्रंट पेज दें, मेरा आग्रह है। तो कल को क्यों फाड़ता है साहब कागज आदमी, क्यों कुर्सी पर चढ़कर खड़ा होता है, क्यों बेंच पर खड़ा होता है, क्यों मेज पलटता है, क्यों माइक उखाड़ने की कोशिश करता है? वो इस वजह से उखाड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वो अपने इलेक्टोरेट जिससे वो चुन कर आ रहा है, जिन लोगों को वो दिखाना चाह रहा है कि उनका प्रतिनिधि कुछ कर रहा है, भले ही वो कंटेंटलेस हो, लेकिन उसको लोग देखेंगे भाई हमारा नेता, हमारा विधायक, हमारी की लड़ाई लड़ रहा है, भले ही वहाँ कंटेंट जीरो है, वो अगर फ्रंट पेज पर या मुख्य रूप से सोशल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में उसको दिखाया जाए, ये मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप वो तत्वों पर बोल रहा है उसको मेन स्ट्रीम में रखिएगा, और जो थोड़ा इस तरह की आचरण कर रहा है उसको पीछे रखेंगे, तो मुझे लगता है कि कागज

0: उखाड़ने वाला, माइक उखाड़ने वाला भी तथ्यों के आधार पर बोलना शुरू करेगा। कंपटीटिव अप्रोच आएगी, हमें तथ्यों के आधार पर बोलना पड़ेगा, जनहित के विषयों पर बोलना पड़ेगा, तो ही हमें मीडिया कवरेज मिलेगा, वरना हमको मीडिया कवरेज नहीं मिलेगा। तो ये एक जनप्रतिनिधियों में जो विधायक सांसद हैं उन लोगों में भी एक फीलिंग डेवलप होगी, क्योंकि जो कोई भी इस तरह की एक्टिविटी होती है बड़ी कैलकुलेटेड होती है, वो कैलकुलेशन के साथ करते हैं कि भाई आज क्या किया जाए। उसने कहा जी आज ये करते हैं, आज जो है ये विषय लाएंगे और हम जो है सदन में हंगामा शुरू हो जाएगा, और सदन में हंगामा शुरू होते ही हमारा कवरेज बढ़ जाएगा। मीडिया अगर अपनी अप्रोच को बदल दे, कवरेज उनको ज्यादा मिले और शोर शराबा करने वालों को कम मिले, तो आपको और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
1: अनूप वाजपेयी जी, जैसा कि काजी निजामुद्दीन साहब बोल रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि शोर शराबा करते हैं सदन के अंदर और तथ्यों की बातें कम करते हैं, खास तौर से कहें हम भारत के लोगों की जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा कम करते हैं, उन लोगों को तो आप फ्रंट पेज है, जो फर्स्ट पेज है वहां पर स्थान मिलेगा, और जो तथ्य परक बात करेंगे, जो हम भारत के लोगों की संवेदनशील बातों को बहुत ही संजीदगी से उठाएंगे, उनको तो आप पांचवें छठे और पता चला तीन लाइनों में समेट देते हैं। और कहीं कहीं हम बहुत ही काबिल जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको इतना ज्यादा हाइप नहीं मिलता, इतना ज्यादा अखबारों में कवरेज नहीं मिलता।
2: देखिए एक खंभा जो है दूसरे खंभे पर अपना बोझ डालना चाहता है, काजी भाई ने भी कहा करना इनको है सदन के अंदर, कौन लोग कर रहे हैं, मीडिया तो नहीं कर रहा है,
1: ठीक है तो
2: सदन के बाहर भी, सदन के बाहर मुन्ना भाई ने कहा कि कमेटियों की बैठक होती है उसमें बड़ा सौहार्द रहता है, तो जब वहाँ सौहार्द हो सकता है तो
0: मीडिया नहीं होती ना,
2: संसद
0: मीडिया नहीं हो, माफ कीजिए
2: यही कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ, संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर भी वही दृश्य हो सकता है जो कमेटियों में हो सकता है। हम कितना गंभीर हैं ये इम्पोर्टेंट है। फिर जहां तक बात हुई, अगर किसी विधानसभा के लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को भेजा ही है जो मसल मैन है या जो डील डॉल का दिखाने वाला है जो है, तो ये चयन उनका है, जनता का है, तो जैसा समाज का जो अंग चुन के जाएगा समाज वैसे ही दिखेगा। अगर वो दृश्य दिख रहा है तो क्यों नहीं दिखाना चाहिए, अगर कोई गाली गलौज अंदर कर रहा है तो उसको क्यों नहीं पब्लिक के सामने आना चाहिए, अगर वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो क्यों नहीं बाहर आना चाहिए, अगर वो गंभीर विषयों पर बात नहीं करना चाहता या सरकार या विपक्ष मिलकर कुछ आपस में तय कर लेते हैं किसी कमरे में बैठ के और फिर संसद नहीं चलती है या विधानसभा नहीं चलती है, तो उसमें भी मीडिया का दोष कहां से। दोष हमको एक दूसरे पर मढ़ना नहीं होगा, बदलने की बात है, सबको बदलना होगा, हम भी समाज के अंग हैं, हमारे लोग भी जो है सब समाज से आए हुए लोग हैं। तो जो दृश्य है, पहले तो कैमरे नहीं थे उस तरीके से, अब तो देखिए जगह जगह पे कैमरे लगाए गए, सब कुछ है, बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं संसद के अंदर भी और विधानसभाओं में, उसको कहते हैं कि नहीं इसको हटा दिया गया कार्रवाई से, मतलब इतना वो खराब चीज थी कि समाज में मैसेज नहीं जाए, इसलिए कहा जाता है ना। तो मीडिया उस बात का ध्यान रखती है, उन बातों को फिर हम लोग प्रिंट में या उसको नहीं दिखाते, उन चीजों को सेंसर कर देते हैं, ये नियम है जो हमारे साथ भी बंधा हुआ है। लेकिन वही बात हुई कि बदलने की बात सिर्फ मीडिया पे, तो अपने खंभे का बोझ आप हम पे डालेंगे तो ये भी खंभा इसीलिए
1: श्रोताओं, इसी नोट पर हम इस परिचर्चा को विराम देते हैं और हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे देश के लोकतंत्र में हर आवाज बहुत महत्वपूर्ण है। आप तीनों मेहमानों, माननीय विधायक विकास नगर श्री मुन्ना सिंह चौहान जी, माननीय विधायक मंगलौर काजी निजामुद्दीन साहब और माननीय संपादक अमर उजाला श्री अनूप वाजपेयी जी, आप तीनों मेहमानों को परिचर्चा में शामिल होने के लिए, और हमारे श्रोताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भारत के निर्माण में संसदीय प्रक्रिया और संवाद की भूमिका पर अपने विचार विस्तार से रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता निश्चय ही आप तीनों वक्ताओं की जो वाणी है, जो विचार हैं, उनसे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बहुत थैंक यू।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिचर्चा, भारत के निर्माण में संसदीय प्रक्रियाओं और संवाद की भूमिका। प्रतिभागी थे श्री अनूप वाजपेयी, श्री मुन्ना सिंह चौहान और काजी निजामुद्दीन, और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश चंद्रा। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम जिसे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रीतिका और आप सुन रहे हैं खेल दर्पण। खेल जगत में इन दिनों रोमांच अपने चरम पर है। फुटबॉल में फीफा विश्व कप की तैयारियां जोरों पर है और दावेदार टीमें अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। उधर क्रिकेट में बड़े मुकाबलों का उत्साह बना हुआ है, जबकि बैडमिंटन, शतरंज, एथलेटिक्स, हॉकी और शूटिंग में भारतीय खिलाड़ी लगातार अपने प्रदर्शन से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस अंक में बात करेंगे देश और दुनिया के खेल जगत की ऐसी ही तमाम बड़ी और ताजा खबरों की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं फीफा विश्व कप 2026 की।
3: कार्यक्रम के रिकॉर्ड होने तक मिली ताजा अपडेट्स कुछ इस प्रकार हैं। बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल महाकुंभ फीफा विश्व कप 2026 की। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हर मुकाबला भी और भी रोमांचक होता जा रहा है। अब जरा सी चूक भी किसी भी टीम का विश्व कप जीतने का सपना तोड़ सकती है। पिछले कई दिनों में देखा गया बहुत शानदार मुकाबले हमें मिले हैं। 28 जून को अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराकर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। वहीं इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से मात देकर अपने अभियान को मजबूत किया। इसके अलावा क्रोएशिया ने भी घाना के खिलाफ 2-1 से जीत दर्ज की। वहीं DR कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर सभी को चौंका दिया। दूसरी ओर पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच खेला गया मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ, जबकि अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया के बीच 3-3 का हाई स्कोरिंग मुकाबला दर्शकों के लिए किसी थ्रिलर से कम नहीं था। 30 जून को भारतीय समय अनुसार ब्राजील और जापान, जर्मनी और पैराग्वे आमने सामने रहेंगे। वहीं दिन का सबसे चर्चित मुकाबला रात 10:45 बजे नीदरलैंड्स और मोरक्को के बीच खेला जाएगा। इस मैच में सभी की निगाहें कोडी गाप्को और जेरेमी फ्रिम्पोंग जैसे नीदरलैंड्स के सितारों पर रहेंगी, जबकि मोरक्को की ओर से अशरफ हकीमी टीम की सबसे बड़ी ताकत माने जा रहे हैं। 1 जुलाई को भी दोस्तों रोमांच चरम पर होगा। इंग्लैंड और DR कांगो के मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन और युवा स्टार जूड बेलिंगहैम पर सभी की नजरें होंगी। वहीं फ्रांस के लिए किलियन एक बार फिर बड़ा आकर्षण रहने वाले हैं।
2: फीफा वर्ल्ड कप की खबरों के बाद अब समय एक खास बातचीत का। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय फुटबॉल की जानी मानी हस्ती श्री देवेंद्र सिंह जी। वे एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम के मैनेजर रह चुके हैं, साथ में संतोष ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश का 7 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड के शेफ डी मिशन रहे हैं और वर्तमान में उत्तराखण्ड फुटबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं।
3: देवेंद्र जी, सबसे पहले आप हमें बताइए कि इस बार फीफा विश्व कप में आपको कौन सी टीम सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और क्यों?
4: देखिए, जैसा कि अभी 11 जून से स्टार्ट हुआ है फीफा वर्ल्ड, तो टीमें तो देखिए वर्ल्ड कप में मतलब 19-20 का ही टीमों में अंतर होता है। अब इसमें आज जैसा कि अभी तक के मैचों में जहां तक हम देख रहे हैं, अभी जैसे फ्रांस का परफॉर्मेंस हर साइड से, अगर उनकी हर पोजीशन से अगर खिलाड़ियों को देखा जाए तो वहां पे खिलाड़ी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह से वहां पे अभी मजबूत जो उनके हर रक्षा पंक्ति से लेके आक्रामक जो फॉरवर्ड लाइन है और मिडफील्ड है, तो हर पोजीशन में कहीं ऐसा लग नहीं रहा है कि फ्रांस कहीं अभी किसी से कम है। मतलब आज की डेट में अगर मैं वर्ल्ड कप की टीमों की बात करूंगा तो फ्रांस मतलब अभी तक की मेरे को सबसे फेवरेट लगी। यहाँ पर एम्बापे ने अपना इतना अच्छा परफॉर्मेंस करा, अभी उसने मैच में उसने 4 गोल अभी किए भी हैं उसमें एम्बापे, उसमें और उस्माने डेम्बेले जो है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर। चेल ओलेस है, तो ये अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, दुए है जैसे ना, ये प्लेयरों का परफॉर्मेंस चल रहा है अपने हिसाब से बहुत अच्छा, ये लोग अपना कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने 3 मैच जैसे अपने खेल भी लिए हैं तो 3 मैच में इन लोग का अच्छे गोल एवरेज से इन लोगों ने जीत हासिल की है मैचों के दौरान। और उसके अलावा अर्जेंटीना भी टक्कर में है, वो भी अपने अभी तक के 3 मैच जीत चुकी है। और वहां पे भी अगर आप देखे जाए तो मैसी इस समय मुख्य लोगों की नजरों में है अर्जेंटीना से, और अभी तक के उनका अगर देखा जाए तो 5 गोल उन्होंने किए हैं अभी तक के मैच में है। वहीं एम्बाबे ने 4 गोल करके अभी उन्होंने भी अपना रिकॉर्ड अच्छा बना रखा है अभी तक के स्कोर लाइन अगर देखी जाए स्कोरिंग लाइन, तो डेमेविल भी जो उस्माने ने उसने भी हैट्रिक की है अपने मैच में। तो और भी टीमें हैं, स्पेन, इंग्लैंड है, तो ब्राजील है, तो मुकाबला ये होता है कि अभी इस राउंड से अपने पूल राउंड से क्वालिफाई करने के बाद आगे के राउंड पे ज्यादा टीमें जब आती हैं टक्कर में, जब मुकाबले में आती हैं, तो तब आकलन किया जाता है कि किस टीम का कौन सा प्रदर्शन कैसा चल रहा है। और दूसरी चीज ये भी है कि प्लेयर का भी डे होता है, लकी डे होता है, किसी दिन कोई बहुत बड़ा प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, कोई मतलब अननोन प्लेयर जैसा होता है कि बहुत अच्छा अपने आप को प्रूव करके दिखा देता है मैच में, तो ये भी अभी आगे को देखने को मिलेगा कि जैसा कि पहले भी वर्ल्ड कप में देखने को मिला है, तो कई ऐसे प्लेयर थे जो वर्ल्ड कप में ही पूरे विश्व में जिनके पहचान मिली थी वर्ल्ड कप खेलने से ही। फ्रांस अभी तक मुझे मजबूत स्थिति में दिख रहा है, बाकी आगे राउंड पे जब इनके मैच, अभी एक एक मैच इनके सबके बाकी हैं, पता चलेगा जब आगे राउंड के मैच होंगे तो कौन सी टीम अपना कैसा दम दिखाती है।
3: जी देवेंद्र जी, भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, तो युवा खिलाड़ियों के लिए आपका क्या संदेश होगा?
4: फुटबॉल देखिए एक ऐसा खेल है कि जहाँ पे एक गरीब बच्चा भी, मतलब जिसको ज्यादा जैसे साधन संसाधन ना हो अगर किसी के पास, और आर्थिक स्थिति जिसकी अच्छी ना हो, हर प्लेयर गांव देहात हर जगह खेलने वाला खेल है ये फुटबॉल। और इससे क्या है कि हमारे पास खेलने वाले खिलाड़ी तो बहुत है, लेकिन एक उचित प्लेटफॉर्म नहीं उन बेचारों को मिल पाता है, उन बच्चों को नहीं मिल पाता है जिसको हम आगे ला के मतलब इसको डेवलप कर सकें, बड़ा कर सकें। तो कई अपने बेचारे ग्राम स्तर में, मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे ही सीमित रह जाते हैं वो खिलाड़ी, तो उनको आगे की कोई ऐसी एक प्लेटफॉर्म जब नहीं मिल पाता है तो जो टैलेंट है उस टैलेंट को हम लोग भी खोते हैं और हमें देख नहीं पाते हैं। तो इसी तरह से आगे यही उम्मीद है कि हम लोग फुटबॉल को देखो ऊंचा स्थान हिंदुस्तान में, आज प्रोफेशनल लीग भी हो रही है, आईएसएल की अगर हम बात करें, तो खिलाड़ियों को फाइनेंशियली रूप से देखा जाए तो एक पैसा भी अच्छा मिलता है जिसमें विदेशी खिलाड़ी और हिंदुस्तान के खिलाड़ी खेलते हैं।
3: जी
4: उसके अलावा आई लीग होती है, तो आई लीग में भी खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है, जहाँ हमारे हिंदुस्तान में आज की डेट में कई प्रोफेशनल 15-15 प्रोफेशनल क्लब बन गए हैं फुटबॉल के, जहाँ पे उन खिलाड़ियों की भी बोली लगती है, उनको एक मंच मिलता है जहाँ पे उनको आर्थिक रूप से मजबूत होने का, तो जैसा प्रदर्शन खिलाड़ी करता है वैसे वैसे उसकी आगे योग्यता बढ़ती रहती है। आने वाले समय पे फुटबॉल और ऊंचाई में जाने की संभावना है, उसके लिए मेहनत करने की संभावना है हिंदुस्तान में।
3: और इसी क्रम में अगर आगे बढ़ने की मैं बात करूं तो अगर भारत को भविष्य में फीफा विश्व कप में जगह बनानी है तो सबसे ज्यादा किन क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है आपके हिसाब से?
4: देखिए ये तो एक रोड मैप की तरह काम करना पड़ेगा। देखिए वो देखिए वर्ल्ड कप की बात अगर हम करते हैं तो एक रोड मैप में जाना पड़ेगा हमें। उस रोड मैप में आप ये भी सोच सकते हैं कि 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं। और उसके लिए हम लोग को मतलब आप ये मान के चलिए 10 वर्ष के बच्चे, 8 से लेके 10 वर्ष के बच्चों से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि वो हमारे 15 साल का भविष्य जो है ना वो फीफा वर्ल्ड कप में आ जाए। तो उसके लिए हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, जैसे एकेडमीज के हम लोग को विश्व स्तरीय एकेडमीज बनाना पड़ेगा, नेशनल लेवल में रिप्यूट में बनाना पड़ेगा, स्कूल और कॉलेजेस में अपने फुटबॉल को लोकप्रियता बढ़ानी पड़ेगी। तो और जितने हमारे कोचेस वगैरह हैं उनके मतलब कोचिंग लेवल को, स्टैंडर्ड कोचिंग स्टैंडर्ड को हाई करना पड़ेगा, अच्छे कोचेस की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, अच्छे जो हमारे लाइसेंस कोच होते हैं उन कोचों के लिए काम करना पड़ेगा। जितना हमारी लीग्स होती हैं यहाँ देहरादून से लेके पूरे हिंदुस्तान से लेके लखनऊ, दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट लीग होती है डिस्ट्रिक्ट लीग, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, उस लीग से हमें खिलाड़ियों को उभारना पड़ेगा, और उनके अगर स्पोर्ट्स

0: साइंस और फिटनेस को लेकर भी हम लोग के उनको जैसे उनके फिजियो से फिजियो उनका पोस्टर डेटा एनालिटिक्स मानसिक प्रशिक्षण ये सारी चीजों में हमें काम करके आगे लंबी अवधि के लिए हमें इसे काम करना पड़ेगा ताकि हम ये सारी चीजों को लेके हम आगे बढ़ सकें। आने वाले समय में हमारा फुटबॉल फीफा के उस मानचित्र पे पहुंच सके, लेकिन उसके लिए हमें एक लंबा एक गोल सेट ऐसा एक तैयार करना पड़ेगा कि एक टाइम हमें रखना पड़ेगा कि जो हम नीचे लेवल से ग्रास रूट से काम करके उन बच्चों को और ऊपर लाते हैं वही बच्चे हमारा आने वाला भविष्य बने इस देश का और हम लोग फीफा वर्ल्ड कप तक जाएं। लेकिन हमें नीचे से अगर जब तक हम काम नहीं करेंगे और तो हम लोग का मतलब ये है कि हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा अगर नीचे से नहीं।
1: बिल्कुल, हमें अपनी बेस
0: जी
1: लाइन को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा।
0: जी जी
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल नीचे हमें उसी लेवल से अगर हम बढ़ेंगे लेकिन उसका एक रोड मैप भी हमारा होगा कि हम कितने साल में हम उसको जो हमारा टारगेट है उसको अचीव कर सकें। अगर हम फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो उस गोल को भी अचीव करने के लिए हमें अपना रोड मैप किस तरह से तैयार करना पड़ेगा और कितने साल की योजना में हम उस चीज को तैयार कर सकते हैं उन खिलाड़ियों को तैयार कर सकते हैं। जहाँ आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जहाँ फुटसल और उस फुटबॉल की बात कर रहे थे मन की बात में मैंने सुना भी था, तो ये वास्तव में देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी चिंता है कि हमारा भारत का फुटबॉल हमारा आज जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात हुई जैसे प्रधानमंत्री जी ने कही तो आज लोकप्रियता देखिए वहां से भी बढ़ती है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो वो लोकप्रियता को और ऊपर उठा देते हैं खेल की फुटबॉल की लोकप्रियता को, तो उससे लोगों का मनोबल भी बढ़ता है लोगों में आत्मविश्वास भी जगता है। आज की डेट में सरकारें भी निश्चित तौर पर काम कर रही है खेलों को बढ़ाने के लिए, खेलों को आगे की जो प्लानिंग को देखते हुए ओलंपिक को देखते हुए 36 ओलंपिक की जहां बात हो रही है हिंदुस्तान में अभी कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं ना गुजरात में, इन सारी चीजों को देखते हुए काम हो रहा है और इसी तरह से फुटबॉल को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं और काम करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए पूरा एकदम मतलब जो भी अगर मैनेजमेंट टीम काम करे कोई भी अगर लगे इसमें तो इसके लिए हमें तन मन से लग के उसका पूरा रोड मैप तैयार करके आगे लंबा इसका वो बनाना पड़ेगा रोड मैप।
1: जी,
0: जी
1: आपसे देवेंद्र जी एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आपका बतौर कोच कैसा अनुभव रहा है? किस तरह के नए युवा आपको बीते वर्षों में देखने मिले?
0: देखिए मेरा तो कोचिंग लाइन के साथ साथ मैनेजमेंट लाइन भी मेरी साथ रही है। मैंने कई मतलब मेरा कई मेरा उद्देश्य क्या रहा है हमेशा मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि जहां मैं रहता हूं मैं उस क्षेत्र से उन बच्चों को कैसे ऊपर उठाऊं उनको कैसे आगे बढ़ाऊं। अगर जिस बच्चे में अगर पोटेंशियल है ये बच्चे के अंदर टैलेंट 7-8 साल में उसके टैलेंट का भी पता चल जाता है अगर एक अच्छा कोच होगा ना तो वो कोच को समझ में आ जाएगा ये बच्चा आगे इन फ्यूचर कुछ कर सकता है। तो इस तरह से कई मतलब स्पोर्ट्स इवेंट और स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना ये करना छोटे लेवल से लेके ग्रास रूट से बच्चों के लिए काम करना और उनको आगे बढ़ाने को लेके, और हमने जहाँ तक कोचिंग की बात है कोचिंग में बेसिकली मैं जब इंडिया टीम के साथ था अंडर 19 SGFI का उस समय एशियन चैंपियनशिप में मैं एज ए मैनेजर भी रहा टीम के साथ, तो तब मैंने उस समय के दौरान मैं पूरा कोचिंग जो लेवल था पूरा हमारे टीम मैनेजमेंट जो कर रही थी पूरा तो मैं साथ में ही रहा पूरा। मैं तो उस चीज को देखा कि किस तरह से मतलब खिलाड़ियों के लिए बेस्ट से बेस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं बेस्ट क्या दे सकते हैं, तो ये सारी चीजें बड़ी डिपेंड करती है और बच्चों को प्लेटफॉर्म देना भी बहुत जरूरी है। अब कोचिंग हम कराते रहे और बच्चे को आगे अगर कोई हम खेलने का एक्सपोजर ना दें उसको आगे खेलने के लिए कहीं एक प्लेटफॉर्म ना दें तो बच्चा क्या है ना जब हम उसको खिलाते हैं तो खेलता तो बहुत अच्छा है, कोई बच्चा खेलता अच्छा है लेकिन मैच खिलाओ तो मैच में नहीं खेल पाता है क्योंकि हम उसको वो एक्सपोजर दे नहीं पाते हैं मैच का। हम उसको खिलाते हैं तो हमें लगता है कि यार ये खेलता तो अच्छा है लेकिन ये मैच में नहीं खेल पा रहा है। तो इस तरह से छोटे बच्चों को आने वाले टाइम पे कुछ जैसे अकादमी बना अकादमी के साथ मैच करना ये करना उधर खिलाना ये खिलाना बच्चों को अपने आप में उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आने उनका परफॉर्मेंस लेवल भी अप होता है। तो प्रयास ये रहा कि बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो कोचिंग के लेवल से और अच्छे स्तर की कोचिंग मिले तो यही हमारी प्राथमिकता भी रही है हमेशा।
1: दोस्तों, अब बात करते हैं एक युवा खिलाड़ी से जिनका नाम है शाश्वत पवार, जिन्होंने भारत का अंडर 17 में प्रतिनिधित्व किया है। शाश्वत, आपका यहाँ तक का सफर कैसा रहा और आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे?
2: मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, काफी हर्ट

0: आज वर्क करा है, आज मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है। जिनसे मैंने खेलना सीखा है, जिनको देख के मैंने खेलना सीखा है, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। वो मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं जब से मैं छोटा हूँ। उन्हीं को मैंने देख देख देख के खेलना स्टार्ट करा है। एंड हाफ वर्ल्ड कप में भी मैं उन्हें ही सपोर्ट कर रहा हूँ।
1: अगर मैं
0: हाँ
1: पूछूं कि अगर रोनाल्डो के अलावा आपको किसी को चुनना पड़े तो कौन सा खिलाड़ी आपका फेवरेट होगा और क्यों?
0: आई वुड चूज मेसी, क्योंकि वो बहुत ही मतलब वो गॉड गिफ्टेड है। एंड उनमें सारी क्वालिटी, रोनाल्डो हार्डवर्क से बने एंड उनपे मेसी पे ऑलरेडी टैलेंट था।
1: तो किस मैच का शाश्वत आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो फीफा वर्ल्ड कप में?
0: अगर ऐसा होता है तो मैं पोर्चुगल और फ्रांस को देखना चाहता हूँ फाइनल।
1: ओके, तो आपके अभी आपको क्या लगता है कि जो फीफा वर्ल्ड कप इस बार 2026 का चल रहा है,
0: हाँ
1: इसमें
0: जी,
1: कौन से नए उभरते सितारे आपको दिख रहे हैं? इनमें वो बात है, ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
0: इस बार बहुत छोटी छोटी जो कंट्रीज हैं वो बहुत अच्छा कर रही है। एंड जो टॉप की जो कंट्रीज है जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है तो उनको काफी टक्कर दे रही है। इस बार काफी अच्छा है, देखने को मिल रहा है इस बार वर्ल्ड कप।
1: अगर कोई यूथ, कोई बच्चा आपको अभी सुन रहा है जो जिसकी उम्र अभी 10-12 साल है, तो
0: हाँ जी,
1: क्या सलाह आप उसे देना चाहेंगे कि वो भी अंडर 17 खेले, वो भी और आगे जाए?
0: मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में अप एंड डाउन बहुत सारे आते हैं। कभी कभी तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुम थक जाते हो कि हार्डवर्क नहीं करना है क्योंकि तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं। बट हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उनको फेस करना चाहिए स्ट्रांगली एंड हमें सही टाइम का वेट करना चाहिए और हार्डवर्क करते रहना चाहिए हमेशा। क्योंकि जब तक आप हार्डवर्क कर रहे हो और आप सही से काम कर रहे हो, आप कभी हार नहीं सकते हो।
2: और अब बात करें हॉकी की, तो FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम शानदार फॉर्म में है। 24 जून को भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया, जबकि 26 जून को वापस 7-1 की जीत भारत ने दर्ज की। और इसके बाद 28 जून को इंग्लैंड के खिलाफ मैच निर्धारित समय तक 0-0 से बराबर रहा, लेकिन शूट आउट में भारत ने 3-2 से जीत हासिल कर एक अतिरिक्त अंक अपने नाम कर लिया है। बैडमिंटन की बात करें तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में खेले जा रहे यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के अनुभवी शटलर किदांबी श्रीकांत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष एकल फाइनल में प्रवेश कर लिया था। सेमीफाइनल में श्रीकांत ने जापान के युदायो की मोटो को 1 घंटे 12 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। और खिताबी मुकाबले में उनका सामना चीनी ताइपे के सुलियांग से हुआ, जहाँ पे वे मुकाबले से बाहर हो गए। वहीं भारत के रौनक चौहान का अभियान सेमीफाइनल में समाप्त हो गया और महिला एकल में भारत की देविका सिहाग डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन से हारकर बाहर हो गई। वहीं एथलेटिक्स में भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में 2.30 मीटर की छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया और साथ ही वे 2.30 मीटर की ऊंचाई पार करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। वहीं महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजन ने 6.71 मीटर की छलांग लगाकर अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। टेनिस जगत की खबर है कि लंदन में वर्ष के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का शानदार आगाज हो चुका है। भारत की यूपी भाभरी पुरुष युगल स्पर्धा में अपने अमेरिकी जोड़ीदार रॉबर्ट गैलोवे के साथ 1 जुलाई को पहले दौर का मुकाबला खेलेंगे। शतरंज की बात करें तो ग्लोबल चेस लीग के चौथे सत्र के लिए मुंबई में खिलाड़ियों का ड्राफ्ट आयोजित किया गया। इस बार पूर्व विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन की लीग में वापसी हुई है, जबकि भारत की युवा स्टार दिव्या देशमुख पहली बार इस प्रतिष्ठित लीग का हिस्सा बनी है। ड्राफ्ट के बाद सभी 6 फ्रेंचाइजियों ने अपनी अपनी टीमों का चयन पूरा कर लिया है। ग्लोबल चेस लीग का चौथा सत्र 3 से 13 सितम्बर तक बेंगलोर में खेला जाएगा। शूटिंग से खबर है कि जर्मनी के सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 24 पदक अपने नाम किए। भारतीय निशानेबाजों ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया है। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के 2026 एशियाई खेलों में भाग लेने की पुष्टि हो गई है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को उम्मीद है कि नीरज एक बार फिर पदक जीतकर अपना खिताब बरकरार रखेंगे। वहीं खेल प्रेमियों की निगाहें आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स पर भी टिकी हैं। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होंगे। इसके बाद वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत के अहमदाबाद शहर को मिली है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है और 2036

0: ओलंपिक की तैयारियों की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और अब बात करते हैं क्रिकेट जगत की ताजा हलचल की। महिला T20 विश्व कप 2026 में भारत का सफर यहीं समाप्त हो गया। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। उसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार अर्धशतक लगाया, जबकि स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने भी टीम को तेज शुरुआत दिलाई। लेकिन जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अनुभवी एलिस पेरी और एश की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत लक्ष्य हासिल कर लिया। के साथ ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 5वीं जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। अब महिला T20 विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले कुछ इस प्रकार होंगे। ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका। इन चारों टीमों के बीच अब फाइनल का टिकट पाने की रोमांचक जंग देखने को हम सभी को मिलेगी। भले ही दोस्तों भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा, लेकिन भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और ग्रेट ब्रिटेन ने LA 2028 ओलंपिक के महिला क्रिकेट इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं अब बात करें पुरुष क्रिकेट की, तो भारतीय पुरुष टीम इन दिनों आयरलैंड के दौरे पर 2 T20 मैचों की सीरीज खेल रही है। इस सीरीज के दूसरे और अंतिम मुकाबले के बाद आयरलैंड ने भारत को 2-0 से सीरीज हराकर इतिहास रच दिया। ये पहली बार है कि जब आयरलैंड ने किसी द्विपक्षीय T20 सीरीज में भारत को हराया है। अब भारतीय टीम की अगली चुनौती इंग्लैंड दौरा होगी, जहां 1 जुलाई से दोनों टीमों के बीच 5 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं हरप्रीत सिंह जी। आप एक अनुभवी क्रिकेट कोच हैं, आपके द्वारा प्रशिक्षित युवा रणजी ट्रॉफी अंडर 16, अंडर 19 भी खेले हुए हैं। हरप्रीत जी, आज भारतीय क्रिकेट दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती है, आपके अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है?
1: सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगता है कि हमारी जो BCCI बॉडी है, ये खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा वर्क कर रही है, उनको हर एक टाइप की फैसिलिटीज अवेलेबल करा रही है, अच्छे कोचेस, अच्छे स्पोर्ट स्टाफ, उनको फिजियो, डॉक्टर, एनालिस्ट वगैरह। और मेन है कि उनकी फिटनेस पे भी बहुत काम हो रहा है, हर टाइप के अच्छे ग्राउंड उनको दिए जा रहे हैं, उनका आना जाना, रहना, खाना पीना सब बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रॉपर अवेलेबल कराया जा रहा है, जिससे खिलाड़ी भी अपने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैच फीस अच्छी मिल रही है खिलाड़ियों को, जिससे वो और मोटिवेट होकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम लगातार काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं को क्रिकेट की ओर अगर और आगे हमें बढ़ाना है तो किन चीजों पर काम करने की जरूरत है?
1: मेन तो ये है कि उनका जो मैच फीस वगैरह है वो जरा हमारे पुरुष टीम को मिलती है उसके थोड़ा बराबर मिलनी चाहिए। दूसरा, उनको फैसिलिटीज पूरी दी जाए ग्राउंड्स की, उनके प्रॉपर उनके मैच कराए जाएं, कंपटीशन कराया जाए, और उनके ट्रेनिंग कैंप अलग अलग एज ग्रुप में कराए जाने चाहिए। हालांकि प्रयास किया जा रहा है और काफी अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है उसका, लेकिन मुझे लगता है कि और अच्छा हो सकता है अगर उनको मैच फीस वगैरह और अच्छी उनको दी जाए, क्योंकि मेन जो हमारी महिला क्रिकेट में मुझे लगता है जो है थोड़ा फिटनेस का इशू है, थोड़ा सा फिटनेस पे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। उनके बगैर ट्रेनिंग कैंप वगैरह इस टाइप के ऑफ सीजन में भी लगाए जाने चाहिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट से, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उसमें।
0: और आजकल हम देखते हैं कि IPL की भी बड़ी धूम है, वो हमेशा से रही है, तो IPL की वजह से छोटे शहरों और गांव के खिलाड़ियों को कितना फायदा मिला है?
1: काफी फायदा हुआ है बच्चों को, जो गांव के हैं, जो दूर दराज के हैं। पहले उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी पर लेवल तक क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन अब जो IPL के ओनर्स हैं उनकी नजर रहती है डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर कि वहाँ कौन बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है, तो अगर कोई बच्चा अच्छा है, मेहनती है, टैलेंटेड है और वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो एक तो IPL के जो ओनर हैं उनकी नजर रहेगी उस पर, वो पिक कर लेते हैं, और दूसरा यह है कि वो बगैर ट्रेनिंग कैंप वगैरह लगाते रहते हैं वहाँ पे, इन खिलाड़ियों को बुलाया जाता है, तो जो दूर दराज के लड़के हैं, गांव देहात के हैं, तो उनको एक अच्छा वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है इससे। दूसरा, उनकी फीस भी बहुत अच्छी खासी है, उनकी मैच फीस अच्छी है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मौका है, जो टेस्ट में नहीं आ सकता खिलाड़ी या वनडे नहीं खेल सकता, कि वो IPL में भी अपना को दिखाए, शो करे, और अच्छी खासी मैच फीस उसे मिल जाती है वहाँ भी।
0: अगर हरप्रीत जी आपको एक मौका मिला जाए कि आप भारतीय क्रिकेट में एक बदलाव कर सकते हैं, तो आप वो कौन सा बदलाव करना चाहेंगे?
1: मेन तो खैर सब चीजें वहाँ अच्छी हैं, मेन मैं यही कहूंगा कि जो महिला क्रिकेट है उसको पुरुष क्रिकेट के बराबर दर्जा दिया जाए, उसको मतलब उतनी ही उसकी मैच फीस दी जाए उनको, उनको खूब। बाकी तो मेल क्रिकेट हमारी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत सब फैसिलिटी भी मिल रही है, तो जरूरत है महिला क्रिकेट पे काम करने की, उनको अच्छे ग्राउंड्स वगैरह, अच्छी फैसिलिटीज, ताकि जहाँ भी उनके मैच हों थोड़ा उनका प्रचार भी अच्छा किया जाए, ताकि पब्लिक भी देखने जाए, और मेन है उनकी फिटनेस पे काम किया जाए, उनके कैंप लगाए जाएं, और उनके कंपटीशन मैचेस बहुत ज़्यादा होने चाहिए, तो उस दिशा में थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। बाकी मेल क्रिकेट में तो खैर बहुत अच्छा हो रहा है, बाकी सब वो उसमें रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, और BCCI बहुत अच्छा काम कर रहा है उसमें, हमारी जो रिच बॉडी है काफ़ी, और वो अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसमें।
0: और अगर मैं बात करूं सर टेस्ट वन डे और T20 जैसे फॉर्मेट्स की, तो तीनों फॉर्मेट में सफल होने के लिए किसी एक खिलाड़ी में कौन कौन सी गुणों की आवश्यकता है?
1: मैम टेस्ट का तो समझ लीजिए कि वो तो एक अलग वो क्राइटेरिया है, उसमें तो खिलाड़ी को अपना पेशेंस, टेम्परामेंट और स्ट्रेंथ सारी दिखानी पड़ती है, और मेन क्रिकेट वही टेस्ट क्रिकेट ही है। वनडे में थोड़ा ये होता है कि आपको वनडे ले लीजिए या T20 ले लीजिए, कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ के साथ टेम्परामेंट तो खैर चाहिए चाहिए खिलाड़ी में, थोड़ा वेरिएशन पे भी होता है, वेरिएशन भी अच्छा खिलाड़ी अच्छा होना चाहिए वेरिएशन वगैरह अपना। मेन है कि आप हर कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सके वनडे में और T20 में। और जो T20 फॉर्मेट है मैम वो तो यंग लड़के के लिए बहुत अच्छा है, जो यंग है जिसे हर बॉल पे हिट ही करना है या फिर बॉलर्स को वेरिएशन करने हैं, जो इन चीजों में दक्ष होगा वो अच्छा कर परफॉर्म कर पाएगा। T20 का अलग फॉर्मेट हो गया, टेस्ट का अलग हो गया, वनडे का अलग हो गया, मेन है कि कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना। ओके खिलाड़ी इसमें महारत भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट थोड़ा अलग है, वनडे और T20 का फॉर्मेट अलग है।
0: हम अक्सर कहते हैं ना कि अगला विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी किसी भी राज्य से आ सकता है। अभी हमें कई सारे युवा साथी सुन रहे होंगे, तो आपके अनुसार ऐसा खिलाड़ी हमें उत्तराखंड से कब देखने को मिल सकता है?
1: थोड़ा अगर समय मिलेगा तो ये कोई ना कोई विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी यहाँ से भी निकलेगा। मेन चीज होती है खिलाड़ियों को समझना चाहिए कि एकदम से रिजल्ट जल्दी नहीं आता, एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, एक लंबा अनुभव चाहिए होता है, पेशेंस, टेम्परामेंट, अपनी फिटनेस, टेक्निक पे काम करें। और दूसरा है कि ये दोनों खिलाड़ी इतने अच्छे हैं, इनका मेंटली जो टफ है, ये लोग का मुकाबला करने के लिए खिलाड़ियों को काफी लंबा टाइम चाहिए, और अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। जैसे लास्ट टाइम हमारी उत्तराखंड की टीम रणजी में भी सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, और इसमें दो तीन खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन फिर भी हम रणजी में सेमीफाइनल तक पहुंच रहे हैं। थोड़ा उनको मौका मिलेगा, थोड़ा टाइम मिलेगा, तो अपने आप को साबित करेंगे हमारे लिए जो प्लेयर्स हैं। जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर यहीं पे ये खेलते सेमीफाइनल अपने उत्तराखंड में खेलते तो शायद मुझे लगता है अच्छा रिजल्ट दे सकते थे। और दूसरा ये कि इनका मैच कर्नाटक जैसी मजबूत टीम से था, इसमें बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, वहां तक पहुंच रहे हैं। एक 2 साल पहले ये क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंचे थे, पहली बार ऐसा हुआ कि ये सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है खिलाड़ियों के लिए, और आने वाले टाइम में खिलाड़ियों को मोटिवेट करेगा और अच्छा करने के लिए।
0: जैसे हमने IPL में देखा वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छे हिट ये करते हैं, तो
1: जी
0: आपको
1: जी
0: क्या लगता है कि क्या चीजें हैं जो इनसे हर एक युवा को सीखनी चाहिए, एक क्रिकेटर को खासकर सीखनी चाहिए?
1: मेन है कि उसका फोकस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी बैकलिफ्ट और उसका बहुत एक्सपीरियंस, जितना उसने वर्कआउट किया है अपने गेम के ऊपर, उसका जो मैंने बोला ना मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छी है उस बच्चे की, बॉल को पिक करना, जो पावर मुझे लगती है वो है उसकी बैकलिफ्ट, ठीक है ना, एक स्मूथ बैकलिफ्ट है उसकी, और हर बॉल पे वो अटैक करने की कोशिश करता है। और T20 का फॉर्मेट भी ऐसा है कि आपको हर बॉल पे हिट ही करना होता है, तो खिलाड़ियों की जरूरत है उसे सीखने की कि ऐसे इतनी छोटी सी एज है उसकी, इस छोटी सी एज में भी उसने कितना अपने पे काम किया होगा, अपनी फिटनेस पे कितना काम किया होगा। और मेन है उसका जो सिलेक्शन शॉट खेलने का बहुत अच्छा है, वो खिलाड़ी में डर नहीं होना चाहिए, वो बिना डरे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसको ये नहीं लगता कि बॉलर सामने कौन सा है, जितना अच्छे से अच्छा बॉलर आ जाए उसे अपने गेम पे विश्वास है, अपने गेम के अकॉर्डिंग ही वो उनको खेलता है।
0: अभी हरप्रीत जी हमें काफी अभिभावक भी सुन रहे होंगे, चाहेंगे कि उनका बच्चा या बच्ची क्रिकेट में अपना भविष्य बनाए, तो आप क्या सलाह देंगे कि किस उम्र में इसकी प्रशिक्षण शुरू कर देना चाहिए किसी बच्चे का?
1: मेन तो खैर ये है कि 10 से कम से कम बच्चे को स्टार्ट कर देना चाहिए, अपना बेसिक पे काम करे पहले 10-12 साल तक, तो एज की बात कर रहा हूँ मैं, 8 से 12 साल तक अपना बेसिक, अच्छे कोच के पास जाए, अच्छे अकेडमी में जाए, अपने बेसिक चीजें ठीक रखे, प्रॉपर डिसिप्लिन से काम करे, अनुशासन से काम करे, ग्राउंड में जाए प्रॉपर करे, और 8 से 8 साल की एज ठीक है, 8 से स्टार्टिंग करे, 10-12 साल में थोड़ा सा और मैच्योर हो जाएगा ताकि वो अंडर 14 को फेस कर सके। और एकदम से गार्जियन को तो ये सलाह कि एकदम से रिजल्ट की वो एक्सपेक्ट ना करें, ये चीज ऐसी है कि धीरे धीरे आती है, एक्सपीरियंस से आती है। मेन क्रिकेट जो होती है वो स्टार्ट होती है अंडर 16 से, पूरा टाइम देना पड़ेगा बच्चे को, 3-4 साल तो देने ही पड़ेंगे ताकि वो अपने आप को निखारे, फिर जो रिजल्ट की आप उम्मीद करेंगे वो अंडर 16 के बाद ही वो बच्चा रिजल्ट दे पाता है। मैम क्रिकेट में भविष्य बहुत अच्छा है, और बस जरूरत समर्पण की है, आप अनुशासन में रहते हुए अपना काम करें। बच्चों को तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप खूब मेहनत करें, मैं देखिए मेन चीज है मेहनत, हार्ड वर्क। आज अगर आपको एक कोई चीज नहीं आ रही है तो आप कंटिन्यू करते रहेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे, प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, एक बना के अपने मतलब कि आज हमने क्या करना है, कल क्या करना है, एक प्रोसेस से काम करेंगे तो धीरे धीरे सफलता आपको मिलेगी। मेन चीज है आप कंफर्ट जोन में ना जाए, ठीक है ना, कि आराम तलबी में ना जाए, जैसे आजकल का युवा है वो मोबाइल में और इन चीजों में ज्यादा घुसा हुआ है, तो उसे उससे बाहर निकलने की जरूरत है। एक हद तक उसका उपयोग ठीक है, लेकिन आपको मेन काम ग्राउंड में ही आके करना पड़ेगा, तो वहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपने कोच की बात माननी पड़ेगी, प्रॉपर आपको मेन है अनुशासन में रहते हुए हर चीज प्लानिंग के साथ आपको करने की आवश्यकता है। अपने बेस पे काम कीजिए।

0: ठीक है ना, और कंफर्ट जोन में मत रहिए, आराम तले भी मत रहिए, आपको मेहनत पसीना बहाना ही पड़ेगा ग्राउंड में आके, बिना उसके कोई शॉर्टकट है ही नहीं है इसमें सक्सेस के लिए। आप किसी भी खिलाड़ी का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसने पता नहीं कितनी मेहनत की होगी, कितने घंटे रोज उसने वर्क किया होगा, तब जाके उसको सफलता मिलती है।
1: इसी के साथ खेल दर्पण कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। खेल जगत की ऐसी ही रोचक खबरें, उपलब्धियां और खास बातचीत हम आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं रितिका आपसे अनुमति चाहूंगी। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून की प्रस्तुति कार्यक्रम खेल दर्पण। प्रस्तुतकर्ता थे संकल्प मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किया गया। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। 7088000731 यही है हमारा व्हाट्सएप नंबर। रोजाना की तरह इस नंबर पर भेज दीजिए अपनी फरमाइश। नंबर एक बार पुनः सुन ले, 7088000731। श्रोताओं, आप सभी के स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना करते हुए फरमाइशी गीतों का ये सिलसिला शुरू करते हैं।

कार्यक्रम में ये फरमाइश हमें लिख भेजी है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज हुसैन सिद्दीकी और रिफाकत हुसैन सिद्दीकी। ये अगली फरमाइश है दुर्गेश नागनपुरे, वंदना बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। इन्होंने हमें फरमाइश लिख भेजी है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से। ये अगली फरमाइश हम तक पहुंची है राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और इनका पूरा ही रामेकर परिवार। ये अगली फरमाइश है, ये फरमाइश हमें लिख भेजी है कुशेश्वर कांति गुप्ता, राजनगर कांति निकेतन से। मास्टर रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता, कोमल गुप्ता, ऐशबाग लखनऊ से आप हैं। रानी मुकेश गुप्ता, रश्मि, नीलम, कुसुम और रूपा इलाहाबादी। ये अगली फरमाइश है अनारकली बाजार जगराहो से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और इनके साथी। ये अगली फरमाइश जो हम तक पहुंची है आप हैं शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत, विष्णु अग्रवाल जी। हमें फरमाइश लिख भेजी है रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से किशन बंजानी, नीलम, स्वाति, संगीता, सरिता, सुमन, महाजन और किशु। ये अगली फरमाइश है जो हम तक पहुंची है व्हाइट फील्ड बेंगलोर से भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव, दिव्यंदी भूषण, संस्कृति और पौरुष। हमारे अगले फरमाइश करता है बिलासपुर टाडा हरमत नगर से अब्दुल वहीद अंसारी, आमना अंसारी, सराबे साजिब अंसारी, नामेश अंसारी, सादिया अंसारी, जाहिद अंसारी और शमशुल अंसारी। हमें फरमाइश लिख भेजी है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और सोएब खान। इसी के साथ ही हमारे फरमाइश करता है सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी।

हमें फरमाइश लिख भेजी है गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मशरूर, साइना हसन, अक्षा, नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम और अदीब। ये अगली फरमाइश है जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। हमें फरमाइश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं लक्सर रोड गांव सुवाहिडी कस्बा पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद सोएब, कहकशा और इनका पूरा ही परिवार। ये अगली फरमाइश है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। हमें फरमाइश लिख भेजी है शांति निवास लेहे गांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े और दीपक कुरहाड़े। ये अगली फरमाइश है वेडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा। फरमाइश लिखने वाले हमारे अगले श्रोता है वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यमतमौल से जयराम सिंघड़कर, दिशांत कुमार सिंघड़कर और अर्पिता जी। ये अगली फरमाइश है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। ये अगली फरमाइश है मारहरा दरवाजा ईटा से नबी हसन अब्बाजी, शहनाज अब्बाजी, नवीद हसन अब्बाजी, अनम यसफ अब्बाजी, सुहेल हसन अब्बाजी और रशीद वारसी। अगली फरमाइश है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। हमें फरमाइश लिख भेजी है आप है मोहल्ला बारादरी महमूद खा रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान और अफजर अली नगमा नाज मंसूरी। हमें फरमाइश लिख भेजी है जलालाबाद शामली यूपी से राशिद मंसूरी, आयान मंसूरी और जिशान मंसूरी। हमारे अगले फरमाइश करता है मनकरा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगेना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शुगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह। आइए सुनवाते हैं आपको आप सभी की फरमाइश पर जूली फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में ये फरमाइश हमें लिख भेजी है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा। हमें फरमाइश आई है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां। अगली फरमाइश हम तक पहुंची है सनावत से शेख मूसा मोहसिन। हमारी अगली फरमाइश करता है आप हैं MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्य आरव खुराना और SK पप्पी। आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में अपने नामों को लिख भेजा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। आप हैं इनकी अभी अभी एक फरमाइश हम शाम

मिल कर चुके हैं, लेकिन अपने नाम के साथ इन्होंने और भी फरमाइश हमें भेजी है। तो आप हैं सनाबत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना। हमें फरमाइश लिख भेजी है खाला पार मुजफ्फरनगर से साहिना प्रवीण, फातिमा खुशबू, आयजा मोहम्मद अदीब और मशरूर अली। हमें फरमाइश लिख भेजी है गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमरजीत कौर। हमारे अगले फरमाइश करता है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुमना अंसारी और आलिया अंसारी। हमें फरमाइश लिख भेजी है नेपा नगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा बसंती बाई और गणेश शिवदे। इसी के साथ खंडवा से प्रोग्राम में हमसे जुड़े हैं शायमा बाई रायकवार। और ये अगली फरमाइश है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। इसी के साथ प्रोग्राम में हमें फरमाइश लिख भेजी है बहादुर गंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। अगली फरमाइश करता है हमारे कोली जिला नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। हमें फरमाइश भेजने वाले हमारे अगले श्रोता हैं पटेल नगर मौलाउड से डॉक्टर रमेश कुमार जजूरिया, गीता रानी जजूरिया, गगनदीप जजूरिया, आरजू जजूरिया और गुड्डू। ये अगली फरमाइश है शाही मार्केट स्योहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी। ये अगली फरमाइश है नूर नगर गंज डुंडवारा से उज्मा शेख, शिफा शेख और रिफा शेख। हमें फरमाइश लिख भेजी है नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासिन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। हमें फरमाइश लिख भेजी है धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। ये अगली फरमाइश है सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग और सोलंकी पाठिक। ये अगली फरमाइश है जो हमें लिख भेजी है गांव ग्राम करेली बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, नसरीन अंसारी, शमा अंसारी, शमीम अंसारी, माहे नूर अंसारी। हमें फरमाइश लिख भेजी है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। ये अगली फरमाइश है गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा यूपी से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान। ये अगली फरमाइश है जो हमें लिख भेजी है आप हैं हमारे अगले फरमाइश करता है जिन्होंने हमें अपनी फरमाइश लिख भेजी है तेलपुरा से सुमित, रोहित और सुमिता। आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं प्रोग्राम में ये अगला गीत, गाइड फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के आवाज में।

जी हाँ, कार्यक्रम में ये फरमाइश हमें लिख भेजी है राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और इनका पूरा ही रामेकर परिवार। ये अगली फरमाइश है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। हमें फरमाइश लिख भेजी है आपने सिर्फ अपनी फरमाइश ही लिखी है। आप हैं अधिकारी निवास मिलन विहार जेमिस रोड देहरादून से। आपने अपना नाम इसमें लिखा नहीं है, तो चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। ये फरमाइश अगली जो हम तक पहुंची है गांव चोहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। ये अगली फरमाइश है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। कस्बा चिलकाना जिला सहारनपुर से हमें फरमाइश भेजी है जारिफ अंसारी, नईम अंसारी और डॉक्टर आमिर मुन्ना नजीम। ये अगली फरमाइश है परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एस असलम शैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा और सराय बदायू से आप हैं आफरीन खान, जमीर खान। हमें फरमाइश लिख भेजी है राजेश्वरी सागर अधिकारी निवास मिलन विहार जेमिस रोड देहरादून से। जी हाँ, आपके मैसेज के साथ आपका नाम भी हमें प्राप्त हुआ है और हमने शामिल भी कर लिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। ये फरमाइश लिखने वाले हमारे श्रोता है कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी, अंजलि और भाई आफताब अंसारी। हमारे अगले फरमाइश करता है जिन्होंने हमें फरमाइश लिख भेजी है, आप हैं गांव फ्रांसी हिसर से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। अगली फरमाइश है नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, अशद अरहाम और साथ में है मोहम्मद आलम हाशमी। ये अगली फरमाइश है जो हमें लिख भेजी है बिजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान। हमें फरमाइश लिख भेजी है यमत मॉल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से। हमारे अगले फरमाइश करता है पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। ये अगली फरमाइश है बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम नेताम। हमें फरमाइश लिख भेजी है सेवली से दीपशिखा, मनोहर और दीपाली। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम में ये अंतिम गीत।

0: इसी गीत के साथ ही आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम बस यहीं तक। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमेरिका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
2: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साड़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen BG Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow, on the eve of the nationwide rollout of BG Ramji Act 2025. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added that the enhanced guarantee of the 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth shouldn't work only for their own progress but also strive to uplift the weaker section and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. The president urged a student to become agent of the social transformation, saying education should go beyond securing employment and to strengthen society, culture, tradition and economic progress. The Indian Railways will launch three projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. The Railways has approved the doubling of over 44-kilometre Mansi-Saharsa section of East Central Railway at a cost of 499 crore rupees. It will augment line capacity, improve operational efficiency and cater to the growing demand for passenger and freight movement in this important route. The Railways has also sanctioned a project for the replacement of relay-based interlocking with electronic interlocking at 27 station or cabin on the high-density network and highly utilized network route of Asansol Division of Eastern Railway. The special intensive revision of electoral rolls has begun in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra today. As part of the exercise in Delhi, over 13,000 booth level officers will visit every household till the 29th of next month to distribute a pre-printed enumeration form in duplicate to all existing electors for verification and updation of the electoral rolls.
3: The U.S. Supreme Court has struck down President Donald Trump's executive order aimed at ending birthright citizenship, reaffirming the long-standing interpretation that nearly everyone born in the United States is automatically granted U.S. citizenship. In the FIFA World Cup 2026, the match began Ivory Coast and Norway in Texas, United States. And that's the end of the news bulletin.